शुभ सवेरा, नमस्कार। नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज रविवार है। विक्रम संवत 2083 के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि और शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 15वीं तिथि। तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। इस समय 7:04 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं के लिए आज का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, यही कामना हमारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अंधेरे की चादर हटाकर सूरज की किरणें झांक उठी हैं और एक नया दिन धरती पर उतर आया है। अंधेरा समाप्त हो गया है, बात रोशनी की है, दिन एक रोशनी की बात करता है। इस दिन के साथ, इस नई भोर के साथ एक संदेश और हमें मिलता है, वो ये कि जिस तरह अंधकार हटा है धरती के आंगन से, उसी तरह अपने भीतर से भी हम अंधकार को हटाएं। और ये होता है हमारे चिंतन से, हमारी विचारधारा से। कोशिश कीजिए कि आप अपने भीतर से अहंकार के अंधकार को हटा सकें। अहंकार जो किसी दूसरे मनुष्य को जगह नहीं देता, आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न करता है। अहंकार क्रोध का, क्रोध एक ऐसा भाव है जो लोगों के बीच प्रेम को पनपने नहीं देता। इस अंधकार से भी दूर रहिए। अंधकार लोभ का, लोभ एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को हमेशा अतृप्त रखता है। जीवन में कितना भी उसे प्राप्त हो जाए, कितना कुछ वो प्राप्त कर ले, लेकिन भीतर संतोष नहीं आता, ये लोभ का अंधकार है। तो इन सारे अंधकारों से आप मुक्ति पाएं, ये हमारी कामना है। और इस मुक्ति के लिए चिंतन आवश्यक है। चिंतन करके आप देखें कि क्या ये जो दुर्गुण हैं वो आपके भीतर हैं, क्या ऐसा अंधकार आपके भीतर है। अगर आप इसे महसूस करते हैं और स्वीकार करते हैं, तभी आप इससे उबर पाएंगे। तो आज का यही सार्थक सा संदेश, और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर आप उपस्थित हुए हैं हम आपके लिए। रोज की तरह जीवन सौरभ कार्यक्रम होगा सबसे पहले, उसके बाद अक्षय निधि, और फिर आप आनंद ले सकते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वदन का राग कार्यक्रम होगा, इसमें आज हम बात करेंगे वीओ चिदंबरम पिल्लई की। बाल सभा कार्यक्रम में कृष्ण की बाल लीला पर चर्चा सुबह 8:30 बजे। 9 बजे टेक गुरु कार्यक्रम होगा। 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, देश के संस्थान, ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रसारित होगा। आज का ये कार्यक्रम ADA पर केंद्रित होगा। आज़ाद हिंद कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्वामी कुमार नंद की, प्रसारण का समय सुबह 10:30 बजे। 11 बजे आप सुनेंगे नगर की सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा, और 11:30 बजे काव्य गुंजन के अंतर्गत सुनिएगा रश्मि रथी का भाग 12। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे आज की पहली प्रस्तुति, कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: एक व्यक्ति अपने काम में लगातार असफल हो रहा था। हर प्रयास के बाद निराशा ही हाथ लगती और उसकी मेहनत बेकार जाती। धीरे धीरे निराशा उसके ऊपर हावी होने लगी और वो सोचने लगा कि मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक दिन थकावट और हताशा के कारण उसने काम करना ही छोड़ दिया। उसी दिनों उसके गांव में एक संत आए हुए थे। संत बहुत विद्वान थे। निराश व्यक्ति ने संत से मिलने का विचार किया और वो संत के पास पहुंच गया। दुखी व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानियां संत को बता दी। संत ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और कहा कि तुम असफलताओं से डरकर प्रयास क्यों छोड़ रहे हो? जीवन में सफलता केवल लगातार प्रयास करने से ही मिलती है। निराश व्यक्ति ने कहा कि मैं तो हार चुका हूँ, अब मेरे लिए कुछ भी करना व्यर्थ है। संत ने उसकी स्थिति समझी और उसे एक कहानी सुनाई। संत ने कहा, एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने बांस और कैक्टस के पौधे लगाए। वो रोज दोनों पौधों की देखभाल करता। समय बीतता गया, कैक्टस का पौधा तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन बांस के पौधे में कई महीनों तक कोई उन्नति नहीं दिखी। बच्चा निराश नहीं हुआ, उसने दोनों पौधों को बराबर ध्यान दिया। अंततः बांस का पौधा पनपा और जल्दी ही कैक्टस से भी ऊंचा हो गया। संत ने समझाया कि बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और जब उसकी जड़ें मजबूत हो गईं, तब वो तेजी से बढ़ने लगा। जीवन में भी संघर्ष को समय की जरूरत होती है। यदि हम धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहें, तो हमारी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाती है। इस कहानी से निराश व्यक्ति समझ गया कि असफलता अस्थायी है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे वो सफलता मिली जिसकी उसे तलाश थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हर प्रयास तुरंत परिणाम नहीं देता। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो समय और मेहनत के साथ धैर्य बनाए रखते हैं। एक बार असफल होने के बाद प्रयास बंद कर देना असफलता को स्थायी बना देता है। रोजाना छोटे कदम उठाते रहना बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता खोलता है।
1: जीवन सौरभ।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: श्रोताओं कहते हैं वही मनुष्य जीवन में ऊपर उठ सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो आइए हम भी अपनी जड़ों की ओर चलें, वेदों उपनिषदों के ज्ञान को सुनें। कार्यक्रम का नाम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
1: यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युतस्य जनास इन्द्रः। हे मनुष्यो, जिनकी सहायता के बिना शूरवीर युद्ध में विजयी नहीं होते, युद्धरत वीर पुरुष अपने संरक्षण के लिए जिन्हें पुकारते हैं, जो समस्त संसार को यथाविधि जानते हुए अपरिमित शक्ति वाले शत्रुओं का संहार कर देते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह शश्वतो महियेनो दधानान मन्यमाना छर्वा जघान, यह शर्धते नानु ददाति श्रद्ध्याम यो दस्योर्हंता स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनने अपने वज्र से महान पापी शत्रुओं का हनन किया, जो अहंकारी मनुष्यों का गर्व नष्ट कर देते हैं, जो दूसरे के पदार्थों का हरण करने वाले दुष्टों के नाशक हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह शंबरम पर्वतेषु क्षियंतम चत्वारिश्याम शरद्यन ववविन्दत ओजायमानम यो अहिम जघान दानुम शयानम स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनने 40वें वर्ष में पर्वत में छिपे हुए शंबर राक्षस को ढूंढ निकाला, जिनने जल को रोककर रखने वाले सोए हुए असुर वृत्र को मारा, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सप्तरश्मिर वृषभस्तु विष्मान वासृजत्सर तवे सप्तसिंधून यो रौहिणमस्फुरद वज्रबाहुर द्यामारोहंतम स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनने 7 नदियों को सूर्य की 7 किरणों की भांति बलशाली और ओजस्वी रूप में प्रभावित किया, जिनने द्युलोक की ओर चढ़ती रोहिणी को अपने हाथ के वज्र से रोक लिया, वे ही इंद्रदेव हैं। द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते शुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनके प्रति द्युलोक तथा पृथ्वीलोक नमनशील हैं, जिनके बल से पर्वत भयभीत रहते हैं, जो सोमपान करने वाले वज्र के समान भुजाओं वाले तथा शरीर से महान बलशाली हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सुनवंत मवति यह पचंतम यह शंसंतम यह शशमानमूति यस्य ब्रह्मा वर्धनम् यस्य सोमो यस्येदम् राधः स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जो सोमरस निकालने वाले, शोधित करने वाले, स्तोत्रों के द्वारा स्तुतियां करने वाले को अपने रक्षा साधनों से संरक्षण प्रदान करते हैं, जिनके स्तोत्र एवं सोम हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सुन्वते पचते दुध्र आचिद्वाजम दरदर्शी स केलासी सत्यः वयम् त इंद्र विश्ववः प्रियासः सुवीरासो विदथमा विदेम। जो सोमयज्ञ करने वाले तथा सोमरस को शोधित करने वाले याजक को धन प्रदान करते हैं, वे निश्चित रूप से सत्य रूप इंद्रदेव हैं। हे इंद्रदेव, हम संतति युक्त प्रियजनों के साथ सदैव आपका यशोगान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: ये था आपको आपकी जड़ों से जोड़ता कार्यक्रम अक्षय निधि। रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में बहुत कुछ है खास आगे आपके लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, चलिए हम और आप मिलकर चलें आज की इस भजन यात्रा पर। इस भजन यात्रा पर साथ साथ चलते हुए पहला प्रश्न मन में यही उठ रहा है कि आखिर भक्ति है क्या। सुबह शाम हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो प्रश्न यही मन में बार बार आता है कि आखिर भक्ति क्या है। श्रोताओं, दरअसल भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम, या कहें ऊर्ध्वमुखी प्रेम, व्यक्ति और समष्टि के बीच का प्रेम। भक्ति यानी सर्व के साथ प्रेम में डूब जाना, समस्त जड़ चेतन के प्रति प्रेम ही भक्ति है। भक्ति का कोई शास्त्र नहीं है, ये एक यात्रा है। भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं, ये तो बस एक जीवन रस है। भक्ति को समझने का प्रयास व्यर्थ है, इस जीवन रस में डूबकर ही इसे समझा जा सकता है। तो आइए इसी प्रेम में डूबे हुए हम और आप चलें आज की भजन यात्रा पर।

श्रोताओं, भक्ति की जिज्ञासा का अर्थ ही ये है कि हे ईश्वर, मैं टूटा फूटा हूं, अभी मुझे जुड़ना है। मैं अधूरा हूं अभी कि मुझे पूरा होना है। कमियां हैं मुझ में, सीमाएं हैं हजार, सब सीमाओं को तोड़कर बहना है बूंद बूंद और सागर हो जाना है। ये हृदय की पुकार ही वंदना है, प्रार्थना है।

भक्ति शास्त्रों में लिखी नहीं मिलेगी, भक्ति भक्त के हृदय में लिखी मिलेगी। भक्ति शास्त्र शब्द सिद्धांत से परे एक जीवंत सत्य है। भक्त जहां मिले उसे वहीं पढ़ लेना होगा, कहीं और पढ़ने का उपाय है ही नहीं। भक्ति भाव समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं है। भक्ति बहुत सुगम है, लेकिन केवल उनके लिए जिनकी आंखें प्रेम को सोचते ही भर भर आती हैं, अपने ईश्वर का नाम लेते ही नम हो जाती हैं।

श्रोताओं, मनुष्य का अस्तित्व तीन तलों में विभाजित है, शरीर, बुद्धि और हृदय। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म, विचार और भाव। कर्मवाद की यात्रा, कर्मकांड की यात्रा स्थूल प्रक्रिया है। दूसरा द्वार पहले से कुछ सूक्ष्म है, ज्ञान का द्वार, जिसमें चिंतन मनन है, इसका नाम है ज्ञान योग। और तीसरा द्वार अति सूक्ष्म है, भाव का, प्रीति का, प्रार्थना का, और इसी का नाम है भक्ति योग। और भक्ति का मार्ग बेहद सुगम है।

श्रोताओं, ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। कर्म से भी लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी है। ज्ञान से भी उस तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये यात्रा भी संक्षिप्त नहीं है। बहुत सी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। लेकिन भक्ति, भक्ति एक छलांग है। इसमें सीढ़ियां भी नहीं है और दूरी भी नहीं है। भक्ति एक क्षण में घट सकती है, तत्क्षण घट सकती है। ये केवल भाव की बात है, इधर भाव और उधर रूपांतरण। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है विशुद्ध प्रेम की।

तो श्रोताओं, आज की इस भजन यात्रा में हम और आप साथ साथ चले ईश्वर की आराधना करते हुए, उसकी वंदना करते हुए। उस परमेश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे, सर्व कल्याण की इसी कामना के साथ अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और तमिल भाषा के विद्वान चिदंबरम पिल्लई का।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

वो अनुभूति जो अपनी जन्मभूमि को मां तुल्य सम्मान दे धन्य है। वो भावना जो मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए कंटक पथ पर चलना स्वीकार करे प्रणम्य है। ऐसी ही भावना मन में लिए अनगिनत भारतवासी अपनी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरा भारत इस स्वाधीनता समर में संलग्न था। दक्षिण भारत के एक ऐसे ही स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और तमिल भाषा के विद्वान थे चिदंबरम पिल्लई। चिदंबरम पिल्लई का जन्म 5 सितंबर सन 1872 को तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के ओट्टपिडारम नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता उलगनाथन पिल्लई एक वकील थे तथा माता परमाई अम्माल एक धार्मिक आस्था से संपन्न महिला थीं। 6 वर्ष की उम्र में चिदंबरम पिल्लई ने तमिल भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। घर पर उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी। खेलों के प्रति भी उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने कबड्डी, घुड़सवारी, तैराकी, धनुर्विद्या, कुश्ती और शतरंज खेलना सीखा। इस तरह उनका एक समृद्ध बचपन रहा। उनकी स्कूली शिक्षा तिरुनेलवेली में हुई तथा पिता की ही तरह वकील बनने का सपना लिए तिरुचिरापल्ली से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो ओट्टपिडारम लौट आए और वकालत शुरू की। संत रामकृष्णांतर से चेन्नई में हुई उनकी मुलाकात ने उन्हें देश हित में कार्य करने हेतु प्रेरित किया। संत रामकृष्णांतर स्वामी विवेकानंद आश्रम से संबंधित थे। उनसे प्रभावित होकर ही चिदंबरम पिल्लई का रुझान देश और उसकी राजनीति की तरफ हुआ। तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती से वो चेन्नई में मिले। साहित्य के प्रति उनके भीतर सदा से प्रेम था, इसलिए दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ती चली गई। सुब्रमण्यम भारती के विचारों और शब्द संपदा से वो इतना प्रभावित हुए कि दोनों अभिन्न मित्र बन गए।

दरअसल चिदंबरम पिल्लई शुरू से ही शैव सभा से जुड़े हुए थे और उनका रुझान साहित्य और संस्कृति की ओर रहा। तत्कालीन लेखकों और साहित्यकारों से उनका मिलना जुलना युवावस्था से ही आरंभ हो गया था। एक दिन उनके किसी साथी ने बाल गंगाधर तिलक का लेख उन्हें पढ़ने के लिए दिया। चिदंबरम पिल्लई पर तिलक जी के लेख का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनके भीतर देश को आजाद कराने की तड़प पैदा हो गई। इस बीच अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, जिसके विरोध में तीखी प्रतिक्रिया हुई। देश भर में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सिलसिला आरंभ हो गया। चिदंबरम पिल्लई ने भी विदेशी वस्तुओं और अंग्रेजों के स्कूलों और संस्थानों के बहिष्कार की अपील की। लोगों ने पानी में खड़े होकर मां काली की शपथ ली। विदेशी वस्तुओं और अंग्रेजों की संस्थाओं का प्रबल बहिष्कार आरंभ हुआ। तूतुकुड़ी और आसपास के इलाकों में इतना जबरदस्त असर हुआ कि चिदंबरम पिल्लई ब्रिटिश पुलिस की नजर में आ गए। लाल, बाल और पाल की तिकड़ी द्वारा पोषित स्वदेशी आंदोलन ने दक्षिण के लोगों को भी जगा दिया था। चिदंबरम पिल्लई ने तिलक जी को अपना गुरु माना। उनके भीतर प्रतिकार की ये भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। वो जिस क्षेत्र में रहते थे वो व्यापार का बड़ा केंद्र था। वहां के समुद्री तटों पर ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाजों का कब्जा था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश कंपनियां भारत के उत्पादों को विदेशों में बेचकर लाभ कमाया करती थीं। चिदंबरम पिल्लई चाहते थे कि एक देसी जहाज कंपनी हो ताकि उत्पादों का लाभ भारतीयों को मिले। दिसंबर सन 1906 में चिदंबरम पिल्लई ने एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई और इसका एक जहाज पानी में उतार दिया। उनकी कंपनी का दाम कम होने के कारण उन्हें अधिक यात्री और कारोबारी मिलने लगे। ब्रिटिश कंपनी को अब एक सशक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इस बात से वो बौखला गई। समुद्र पर उनके एकाधिकार को चिदंबरम पिल्लई ने कड़ी चुनौती दे दी थी, इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने कानूनी अड़चनें लगवाकर देसी कंपनी के रास्ते में अवरोध पैदा करने का भरपूर प्रयास किया, क्योंकि पुलिस और प्रशासन उनके साथ थे। लेकिन चिदंबरम पिल्लई ने हार नहीं मानी। उन्होंने पैसे जुटाए तथा दो और जहाज खरीद लिए, जो पहले जहाज से भी बड़े थे। इन दोनों जहाजों पर चिदंबरम पिल्लई ने हरा, पीला और लाल झंडा पेंट करवाकर बड़े बड़े अक्षरों में वंदे मातरम लिखवा दिया। उनका ये प्रयोग बहुत सफल रहा। लोग उन्हें स्वदेशी पिल्लई कहने लगे। एक जहाज कंपनी के जरिए स्वदेशी का ऐसा प्रचार अनुपम था। स्वदेशी के माध्यम से विद्रोह का ये प्रबल शंखनाद था और जनमानस ने उन्हें कहा कप्पलोट्टिय तमिलन, यानी तमिल खेवनहार।

तूतुकुड़ी के मिल मजदूरों की दशा भी बहुत दयनीय थी। सख्त काम की शर्तों के साथ उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। मजदूरों को जागरूक करने के लिए चिदंबरम पिल्लई ने 23 फरवरी सन 1908 को ज्वलंत भाषण दिया। उनके साथ थे सुब्रमण्यम शिवा। भाषण का प्रभाव ऐसा रहा कि मिल मजदूर हड़ताल पर चले गए। चिदंबरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा ने इस हड़ताल का नेतृत्व किया। इस हड़ताल का ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि लोगों का भी अपार सहयोग इसे प्राप्त हुआ। अंततः मजदूरों की मांगे मान ली गईं। विपिन चंद्र पाल जब जेल से रिहा हुए तब उनकी जेल मुक्ति समारोह का आयोजन हुआ था। इस समारोह में चिदंबरम पिल्लई ने जो भाषण दिया उसने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए। पुलिस ने उन्हें बुलाया और राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की सलाह दी, लेकिन चिदंबरम पिल्लई ने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया। अंततः वो अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी का प्रबल विरोध हुआ, ब्रिटिश राज के साथ संघर्ष चला और अंततः चिदंबरम पिल्लई पर देशद्रोह का अभियोग लगाया गया तथा उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चिदंबरम पिल्लई सेंट्रल जेल कोयम्बटूर में बंदी बनाकर रखे गए थे। इस फैसले के विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की तथा उनकी सजा कम हो गई। ये सजा घटाकर 4 वर्ष कारावास और 6 वर्ष नजरबंदी कर दी गई। चिदंबरम पिल्लई ने कोयम्बटूर और कन्नूर की जेलों में ये सजा पूरी की। जेल में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। उन्हें कोल्हू में बैल की जगह जोता गया, ठीक वैसे ही जैसे आजीवन कारावास प्राप्त कैदी को जोता जाता था। 24 दिसंबर सन 1912 को वो जेल से रिहा हुए। इस बीच उनकी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का दिवाला निकल चुका था तथा उनकी वकालत का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। इस तरह अब आर्थिक संकट से जूझते हुए उनका जीवन आगे बढ़ने लगा, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन में वो लगातार सक्रिय रहे। सन 1920 में गांधी जी से सैद्धांतिक मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दिया था। चिदंबरम पिल्लई ने आजीवन देश की सेवा की। उन्होंने स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म संघ, नेसवुसालई, मद्रास एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड और देशाभिमान संगम जैसी संस्थाओं की स्थापना की थी। अपनी जीवन संध्या में उन्होंने तूतुकुड़ी में रहते हुए साहित्य साधना की, अनेक पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया। वीओसी के नाम से विख्यात चिदंबरम पिल्लई ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवनी तमिल भाषा में लिखी। ये अपने गुरु के प्रति उनकी आदरांजलि थी। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुकुरल पर उनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध हुआ। आजीवन साधनारत रहते हुए चिदंबरम पिल्लई ने 18 नवंबर सन 1936 को अंतिम सांस ली। ऐसी महान विभूति को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, बच्चों की महफिल तैयार है जगमगाती हुई, खिलखिलाती हुई और गुनगुनाती हुई। तो चलिए, एक छोटे से अंतराल के बाद आपको हम लिए चलते हैं उनके बीच और सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा।
1: हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
2: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है कान्हा की बाल लीलाएं।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम बाल सभा। अब नाम ही बाल सभा है तो फिर बाल सभा में बातें भी तो वही होनी चाहिए जो आपके मन को भाएं। तो आज हम आपको एक ऐसे बाल सखा से मिलवा रहे हैं जो आपकी हर उम्र में, जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपके बुजुर्ग हो जाने तक, हमेशा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। उनकी कही बातें, उनकी लीलाएं, उनका दिया गया ज्ञान हम सबको पल पल पर ध्यान भी आता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे आज। क्योंकि नन्हे से कृष्ण सिर पर मोर पंख, हाथ में मुरली, पैरों में छोटी छोटी पायल, गले में वैजंती माला और चेहरे पर ऐसी प्यारी सी मुस्कान कि जिसे देखकर यशोदा मैया भी अपनी सारी नाराजगी भूल जाती थी। इसीलिए तो कान्हा कैसे कैसे प्रश्न कर लेते थे, याद है आपको? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। अब बताइए, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कभी किसी से? लेकिन जो बाल कान्हा है वो कुछ भी पूछ लेते थे अपनी मैया से। कभी माखन की मटकी के पीछे भागते कान्हा, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते कान्हा, कभी जमुना जी के किनारे गायों के बीच घूमते कान्हा, तो कभी अपनी मुरली की धुन से पूरे वृंदावन को मोहित करने वाले कान्हा। और इसलिए ही तो आज मैं आपको ऐसी ही कान्हा की बाल लीलाएं बता बता के उनकी शरारतों में छुपे प्रेम को सुनाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि कैसे हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक हैं ये सारी लीलाएं। आज हम ज़रूर कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी हम सबको उनका दिया ज्ञान कैसे कैसे अपने साथ समाहित कर लेता है। अब देखिए, कृष्ण जी का जन्म तो अंधकार में ही हुआ था, कहानी यहीं से शुरू होती है। भगवान विष्णु ने देवकी को सूचित किया कि वो शीघ्र ही आठवीं संतान के रूप में उनकी कोख से जन्म लेने वाले हैं। वे वासुदेव से बोले, मेरे जन्म लेते ही आप मुझे लेकर अपने मित्र गोकुलवासी नंद बाबा के घर जाएं। वहां उनकी पत्नी यशोदा एक बालिका को जन्म दे चुकी होंगी, मुझे उन्हें सौंप कर आप उनकी नवजात बालिका को ले आएं तथा माता देवकी की गोद में डाल दें, किसी प्रकार का भय ना करें। ऐसा कह विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अर्धरात्रि के समय देवकी ने बालक को जन्म दिया। बालक रोया नहीं। वासुदेव ने नवजात शिशु के लिए कंस द्वारा रखवाई गई टोकरी में बालक को रखा, फिर कई पल तक वात्सल्य भरे सजल नेत्रों से अपलक उसे निहारते रहे। तभी वासुदेव के मस्तिष्क में प्रश्न कौंधा, जंजीरों से बंधा एक कैदी नवजात शिशु को कैसे सुरक्षित गोकुल पहुंचा सकता है? इसका उत्तर तुरंत मिला। उनकी जंजीरें खुलकर नीचे गिर पड़ी। वासुदेव समझ गए कि ईश्वर की लीला शुरू हो चुकी है। बस फिर क्या था, उन्होंने टोकरी उठाई और बाहर की ओर चल दिए। कारागार का द्वार खुला और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी के मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो चुकी थीं। बस यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की लीला। कितनी कठिन परिस्थिति थी, और वही आधी रात का समय, चारों तरफ घोर अंधकार, लेकिन उसी अंधकार के बीच जब जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, तो कितनी अद्भुत रात होगी वो। उसके बाद यमुना जी ने कैसे चरण पखारे हैं, आप सुनकर देखिए। बाहर बादल अभी गरज ही रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, मूसलाधार बरसात होने लगी, पर वासुदेव निर्भय निर्विरोध आगे बढ़ते रहे। इस बात से अनभिज्ञ कि भगवान विष्णु के 1000 फनों वाले सेवक शेषनाग उनके ऊपर अपने फनों का विशाल छत्र ताने अदृश्य रूप से साथ साथ चल रहे हैं। यमुना तट पर जाकर वासुदेव ठिठके, लहरें उफन रही थीं, गोकुल यमुना नदी के उस पार था। वासुदेव भगवान का नाम लेकर लहरों में उतर गए। अचानक लहरें ऐसे ऊपर उठीं जैसे वासुदेव को टोकरी समेत लील जाना चाहती हों। शिशु कृष्ण ने यमुना की इच्छा को जानकर अपने पांव नीचे लटका दिए। यमुना चरणों को स्पर्श कर शांत हो गई। चमत्कारिक रूप से वासुदेव के लिए एक शुष्क धरातल वाला गलियारा बन गया। वासुदेव तेजी से आगे बढ़ने लगे। देखिए किस तरह से पवित्र नदी यमुना भी कृष्ण जी के पांव पखार कर शांत हो गई। कैसी है अद्भुत कृष्ण लीला। इसीलिए कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी गहरा हो बच्चों, प्रकाश आने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। यहीं से हमें प्रभु श्री कृष्ण सीख देते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब आगे पहुंचे, अब गोकुल पहुंचे पालनहार। गोकुल की गलियां सुनसान थीं। नंद बाबा के घर पहुंचकर वासुदेव ने द्वार खटखटाए, द्वार तुरंत खुल गए। मानो नंद बाबा द्वार के पीछे इसी प्रतीक्षा में तो खड़े हों कि कब वासुदेव आए और वे द्वार खोले। नंद बाबा अपने मित्र को देखकर आश्चर्य से बोले, मित्र वासुदेव, तुम यहां इस समय? तुम तो कंस के कारागार में थे। वासुदेव ने उनकी बात काटते हुए कहा, प्रिय मित्र, इस टोकरी में देवकी की 8वीं संतान है। पापी कंस का काल है। भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ। अपनी सुरक्षा के साए में तुम इसे पालो। भगवान की यह भी आज्ञा है कि इसके बदले अपनी नवजात कन्या तुम मुझे दे दो। नंद बाबा मुस्कुराए, मैं समझ गया मित्र, जरा प्रतीक्षा करो। उन्होंने टोकरी से नवजात शिशु को उठाया और भीतर गए, जहां पलंग पर उनकी पत्नी यशोदा अपनी नवजात बालिका के साथ सो रही थीं। नंद बाबा ने वासुदेव के बालक को यशोदा के बगल में लिटाकर अपनी बालिका को वासुदेव की टोकरी में रख दिया। दोनों मित्र केवल एक दूसरे को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते रहे। वासुदेव ने बालिका को टोकरी से उठाकर देवकी की गोद में रख दिया। देख रहे हैं आप कैसे यशोदा मैया के आंगन में आ गए, कैसे गोकुल की गलियों को हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने ठिठोलियां करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन गलियों में दौड़ते हुए नन्हे कान्हा कभी घुटनों के बल चलते, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश करते, कभी ऐसी शरारत करते कि बस पूरा घर उनके पीछे दौड़ता रहता। कल्पना कीजिए कि मैया ने घर में माखन रखा है और कान्हा की नजर उस माखन पर पड़ गई। अब कान्हा सोच रहे हैं कि इसे कैसे पाया जाए, मटकी इतनी ऊपर है, अकेले कैसे पहुंचेंगे। तो कान्हा अपने दोस्तों को बुलाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर माखन की मटकी तक पहुंचते हैं। और माखन मिल गया तो सिर्फ खुद तोड़ी खाएंगे, अपने दोस्तों को भी तो खिलाएंगे। और यहीं से कान्हा की शरारत में छिपी खूबसूरती है कि उनकी खुशी अकेले की खुशी नहीं है बच्चों। ये है हमारा आज का दूसरा ज्ञान कि कान्हा ने कभी किसी भी चीज का उत्सव अकेले नहीं मनाया। माखन मिला तो बांट के खाया, और जब मटकी फूटी तब डांट भी मिल बांट कर खाई। तो बच्चों, जो भी करना है मिल बांट कर करना है। खुश होना है तब भी, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तब भी सबके साथ शेयर करनी है। तो बस ये जो शरारत है ना, कई बार आपने सुना होगा माखन चोर कहते हैं कृष्ण को। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कृष्ण की माखन चोरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? इन छोटी छोटी शरारतों में वो कितने लोगों से एक साथ जुड़ते हैं, कितने लोगों के बाल कान्हा बन जाते हैं वो। अपनी इन बाल सुलभ चेष्टाओं से कितने लोगों का दिल हर लेते हैं कान्हा, है ना। इसीलिए तो कृष्ण का गोकुल हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी रिश्तों में है, तो रिश्ते बनाइए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह कान्हा ने अपनी छोटी छोटी सी बाल लीलाओं से कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। तो अब आते हैं पूतनावत पर। कंस को ये विश्वास हो गया था कि उनके विरुद्ध कोई दैवीय षड्यंत्र रचा गया है। तभी तो देवकी की आठवीं संतान को किसी और के गर्भ में भेज दिया गया। इसलिए अपने काल को समाप्त करने के लिए कंस ने भयानक राक्षसी को बुलाकर आज्ञा दी। पूतना मथुरा या उसके आसपास के क्षेत्र में सावन माह में किसी स्त्री ने मेरे काल रूप को जन्म दिया है। तुम इस समूचे क्षेत्र में सावन में जन्मे बच्चों को समाप्त कर दो। फिर क्या था, पूतना ने विष का लेप किया और गोकुल जा पहुंची। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धर के नंद बाबा के घर गई और अन्य स्त्रियों की भांति कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दुलारने लगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया अंदर गई, पूतना ने अवसर ताड़कर कृष्ण जी को अपना दूध पिलाना चाहा। लेकिन फिर क्या था, बाल कान्हा ने उनके प्राण ही खींच लिए और मायावी पूतना मृत होकर जमीन पर आ गिरी। देखा आपने किस इरादे से भेजा गया था पूतना को कंस के द्वारा। लेकिन बच्चों, यहीं से बाल कान्हा की छोटी छोटी सी दैवीय शक्तियों से लोग ताकते रह गए कि ये क्या है। पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा के आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। इसके बाद क्या था, पूतना की मृत्यु ने कंस के सभी संदेह मिटा दिए। सिद्ध हो गया कि नंद बाबा का बालक कृष्ण ही उनका काल है। इसलिए इस बार कृष्ण को मारने के लिए बच्चों, कंस ने तृणावर्त नामक मायाधारी राक्षस को भेजा। उसने क्या किया पता है, वो वायु का झोंका बनकर गोकुल पहुंचा। उस समय कृष्ण को गोद में लिए यशोदा घर के बाहर बैठी हुई थी। तृणावर्त की माया से यशोदा को एकाएक कृष्ण का भार बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अचानक होने वाले इस बदलाव को देखकर वो घबरा गईं और उन्हें पालने में लिटाकर नंद बाबा को बुलाने भीतर भागी। इसी बीच अवसर पाकर तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया, अपने कंधे पर बैठाकर बवंडर बनकर आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंच तृणावर्त ने बालक कृष्ण को मारने के लिए अपने शरीर को खूब झटके दिए, टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन कृष्ण तो जोंक की तरह उसकी गर्दन से चिपक गए और बाज के पंजों की तरह उनकी उंगलियां दुष्ट राक्षस की गर्दन में गढ़ती जा रही थीं। तृणावर्त उनके बोझ तले दबकर धड़ाम से धरती पर आ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब माता यशोदा, नंद बाबा और दूसरे ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक कृष्ण को पर्वताकार दानव के मृत शरीर के पास अपना अंगूठा चूसते देखा। सुना बच्चों, कैसे छोटे से नन्हे से बालक बनकर कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटा दी, और इसके बाद फिर धीरे धीरे लीलाएं और चमत्कारों का क्रम आगे बढ़ता गया। एक दिन माँ यशोदा ने बालक कृष्ण को मिट्टी फांकते हुए देखा, चिल्लाती हुई कृष्ण की ओर दौड़ी और आकर उनके कान पकड़ लिए। कृष्ण ने सिर हिलाकर मिट्टी खाने के आरोप को नकार दिया। यशोदा ने बालक को मुंह खोलने पर मजबूर किया ताकि वो उंगली से मिट्टी बाहर निकाल सके। नन्हे कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ठगी रह गई। कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का विहंगम दृश्य नजर आ रहा था। वात्सल्य और भक्ति से विभोर होकर यशोदा ने कृष्ण को अपने अंक में भर लिया। ऐसे ही एक दिन फल बेचने वाले की पुकार सुनकर बालक कृष्ण फल खरीदने मुट्ठी भर चावल लेकर बाहर की ओर दौड़े। जब फल वाली तक पहुंचे तब सारे चावल उंगलियों के बीच से होकर दाना दाना गिर गए। फल वाली ने बालक के भोलेपन पर न्योछावर होकर काफी सारे फल वैसे ही दे दिए। फल वाली जब घर पहुंची तो अपनी टोकरी देखकर विस्मित रह गई। टोकरी में उसके बचे फल मूल्यवान रत्नों की ढेरियों में परिवर्तित हो गए थे। तो बच्चों, ये कान्हा की बाल लीलाएं आखिर मैं आपको सुना क्यों रही हूं? पहले तो ये बताइए कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, गीत गोविंद सुनती हूँ और फिर मैं बहुत सुंदर सुंदर पद सुनती हूँ जो कान्हा के लिए लिखे गए हैं, मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चे को कान्हा की बाल लीलाएं जाननी चाहिए। बच्चों, जब उन्हें सुनो तो जीवन का मार्ग दिखाई देता है, जब उनके बारे में पढ़ो तो जीवन की कठिनाइयां ऐसे लगती हैं जैसे वो दानव थे ना। आते तो थे कभी बवंडर का रूप लेकर, कभी मायावी राक्षस तरह तरह की माया रच कर आते थे, लेकिन कृष्ण के सामने बहुत बौने नजर आते थे। तो ऐसे कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस रूप में कृष्ण को देखते हैं वो आपको उसी रूप में नजर आते हैं। कभी वो द्रौपदी का चीर बन जाते हैं, कभी वो पूतना को जमीन पर गिराने वाला बालक बनकर अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसे कान्हा की कहानी मैं आपको सुनाकर आज सच मायने में बच्चों खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य ही तो है जब आप जैसे नन्हे मुन्हे अगर रेडियो कान से लगाए सुनना चाह रहे हैं कि कुछ और कहानियाँ बताइए। आ रही है ना आपके मन में ये बात? तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको और बहुत सारी कहानियां सुनाने का दिल कर रहा है, लेकिन समय की ये थोड़ी सी मांग है कि आज थोड़ी कम कहानियां सुनाओ, अगली बार थोड़ी और सुना देना। तो मैंने सोचा है कि ये कान्हा की बाल लीला है ना बच्चों, अगली बाल सभा में भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन अभी एक बात और बता देती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि माँ यशोदा का ध्यान आकर्षित करने के लिए ना कृष्ण हर तिकड़म का सहारा लेते थे। एक दिन यशोदा माँ दही बिलो रही थी तो कृष्ण ने दूध पीने के लिए रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। उसके बाद क्या था, यशोदा अपनी गोदी में बिठाकर दही पिलोते हुए दूध पिलाना पड़ा। तभी यशोदा को याद आया कि रसोई में वो चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रख आई हैं। बदहवासी में वो कृष्ण जी को वहीं छोड़कर भीतर भागी। बालक कृष्ण को अपनी उपेक्षा पर अत्यंत क्रोध आया और बालक कृष्ण ने दही वाला घड़ा मथनी मारकर फोड़ दिया। सारा दही फर्श पर फैल गया। अब कृष्ण ने उस कोठरी की ओर कदम बढ़ाए जहां छत से लटकते घड़ों में मक्खन रखा था। नटखट बालक ने वहां रखी बड़ी सी ओखली पर चढ़कर कुछ घड़े नीचे पटक दिए। घड़े गिरने की आवाज सुनकर कुछ बंदर और नन्हे कान्हा के दोस्त कूद कर अंदर आ गए और माखन की दावत उड़ाने लगे। कृष्ण स्वयं एक घड़ा लेकर ओखली पर बैठ मुट्ठी भर भर कर माखन फांकने लगे। आधा मक्खन मुंह में जा रहा था और आधा शरीर पर और आधा कपड़ों पर। जब यशोदा मैया बाहर आई तो सारी दही फर्श पर फैली देखकर सन्न रह गई। उन्हें कृष्ण के दही में लिथड़े नन्हे पैरों के निशान दिखे तो मक्खन की कोठरी की ओर गए थे। वो बस दौड़कर कोठरी के द्वार पर पहुंची और वहां उड़ रही मक्खन की दावत का नजारा देखकर संयम खो बैठी। और क्रोधित स्वर में कृष्ण पर चीखी। माता यशोदा का तमतमाया मुखड़ा देखकर कृष्ण को आभास हो गया कि आज खैर नहीं। कृष्ण ओखली पर से कूदकर खिड़की से बाहर भागे। एक डंडा लेकर यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ी और माँ बेटे की दौड़ कमरों बरामदों आंगन को नापती हुई काफी देर तक जारी रही। अंत में यशोदा ने जब कृष्ण को पकड़ लिया तो नटखट ने ऐसा प्यारा सा मुखड़ा बनाया और रोना शुरू कर दिया कि यशोदा माँ भी नरम पड़ गई। बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं दंड दूंगी, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा दंड तो दूंगी। तो यशोदा ने कृष्ण को कुछ समय के लिए उसी बड़ी ओखल से बांधने का प्रयास किया, पर रस्सी जरा छोटी पड़ गई। यशोदा ने और रस्सी जोड़ी, वो भी छोटी रह गई। कई रस्सियां जोड़ी, पर हर बार रस्सी जो थी वो रहस्यमय ढंग से छोटी पड़ती रही। अंत में हताश होकर यशोदा रो पड़ी और बोली कि अरे दुष्ट, क्यों सताता है, क्या मिलता है मुझे सताकर। तब कृष्ण को यशोदा माँ पे तरस आया और वो स्वयं स्नेह पाश में बंध गए। अब आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जब नटखट बालक के रूप में आते हैं तो माँ की डांट खाते हैं। तो आप जैसे बच्चे मुझे कभी कभी मिलने पर जब ये बताते हैं कि मम्मी डांटती बहुत है, तो उन सब बच्चों के लिए आज मुझे ये कहना है कि देखिए ना, कान्हा भी तो जब बचपन में बच्चा बनकर आए थे तो माँ यशोदा की कितनी डांट खाई थी। और तो और, प्रभु श्री कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता, वो माता यशोदा ही थी जिन्होंने उन्हें स्नेह पाश में बांध लिया। तो ऐसी ऐसी बाल लीलाओं को जबकि मैं आपको सुना रही हूँ और फिर घड़ी भी देख रही हूँ तो लग रहा है कि आज थोड़ी और बात करनी चाहिए थी, पर नहीं, आज इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी मैंने आपको बाल लीलाएं सुनाई हैं। और यकीन मानिए बच्चों, मैं यहाँ अभी ख़त्म नहीं करूँगी। मैं बाल सभा में जब अगली बार आपसे मिलूँगी तो थोड़ी और कृष्ण लीलाएँ बताऊँगी। इसलिए बच्चों, क्योंकि हमें कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें हर दिन कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ों का सम्मान, दोस्तों की दोस्ती का मान और दुनिया में जो लोग राक्षस समान हैं, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई गंदी आदत भी हो सकती है, क्योंकि अब तो राक्षस होते नहीं, तो आपकी गंदी आदतें, आपका आलस, आपका बिल्कुल भी डिसिप्लिन में ना होना, ये सब क्या बोलते हैं इनको, राक्षसी प्रवृत्तियां, है ना। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब बच्चे देर से उठते हैं तो क्या बेटा तुम्हारे अंदर बहुत राक्षसी प्रवृत्ति आ रही है। तो ये प्रवृत्तियां ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा इंसान बना देती हैं। एक दिन मैंने आपको एक कविता सुनाई थी कि बूंदों का आखिर क्या था दोष, एक बूंद सीप पर गिरेगी और मोती बन जाएगी, दूसरी बूंद नाली में गिरेगी और कीचड़ कहलाएगी। तो बच्चों, आज की ये कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी संगत का भी ख्याल रखिएगा, और अगर आपको बाल लीलाएं और सुननी है तो अगले हफ्ते तक मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते चलते वो समय आ गया है जब हम और आप छोटे छोटे से कुछ संकल्प लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ये जो मुरली की धुन बज रही है इसमें शांति से बैठने का प्रयास कीजिए। कृष्ण को समझने के लिए बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है बच्चों, कभी कभी उन्हें समझने के लिए हमें आप जैसा बच्चा बनना पड़ता है। तो बस आज इस बाल सभा में पहला संकल्प यही है कि थोड़ा थोड़ा पूरे दिन मुस्कुराएंगे। आज पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेलेंगे भी, किसी दोस्त को गले लगाएंगे, माता पिता का बहुत सम्मान करेंगे, और हाँ, प्रकृति के करीब जरूर जाएंगे, क्योंकि कान्हा कभी गैया को चराने के बहाने, कभी गोपियों को छेड़ने के बहाने, कभी पेड़ पर बांसुरी बजाने के बहाने, प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। और ये स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मैं वृक्षों की बात करूं तो वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बहुत ख्याल रखेंगे। तो अब इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ आज बाल सभा को समाप्त करें। उससे पहले आप सब आंखें खोल लीजिए, अपनी दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से आंख पर लगाइए और इसी मुरली की धुन पर शांति से अब मुझे यानी अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए। ठीक है बच्चों, अगली बार बाल सभा में फिर ऐसी ही बातें लेकर जल्द ही मुलाकात होगी। चलूँ अभी, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह। बच्चों मिलते हैं अगली बार बाल सभा में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था कान्हा की बाल लीलाएं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंधानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: तो श्रोताओं, ये थी बच्चों की खूबसूरत सी महफिल जिसे आप कहते हैं बाल सभा। आगे बहुत कुछ खास आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम टेक गुरु।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। टेक गुरु के संग में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने एआई विषय पर पहले बात की थी, बात आज भी करेंगे एआई पर, लेकिन आज जानेंगे एआई से क्या कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट कंप्यूटर ही है, या कंप्यूटर के बाद ये रिप्लेसमेंट मानव को भी करेगा, और ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस विषय की जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर अनुग्रह नगाइज। आप मैनिट यानी MNIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: अगर अपन फायदे की बात करें तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मसलन धीरे धीरे अभी लोगों तक पहुंचेगी, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि कंप्यूटर आया था तो एक डर था कि कंप्यूटर आया तो अब तो ये तो सारे काम कर लेता है, टाइपराइटर हटा तो मशीनरी चेंज हुई, ये बात तो समझ में आती है, मतलब मशीन का रिप्लेसमेंट मशीन हुआ, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक तो मशीन से मानव का रिप्लेसमेंट होगा नहीं होगा, कितना होगा, इस पर आपने कहा भी था कि आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ भूलना पड़ेगा, ये निरंतर चलते रहने वाला क्रिया है, ये कहें तो उसी का हिस्सा कहीं ना कहीं AI है। AI से अभी जो लोग हैं वो AI को केवल सुना सुना है, एक ChatGPT तक कुछ लोगों की पहुंच पहुंची है। इसे एप्लीकेशन की बात करें, हर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी पहली एप्लीकेशन किसी क्लास में सीखता है, फोर्थ क्लास हो सकती है, फिफ्थ क्लास हो सकती है, पांचवी, छठी, सातवीं, कोई भी हो सकती है। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रह गई है, अब वो ChatGPT में अगर तुरंत कोई एप्लीकेशन डालता तो उस एप्लीकेशन तुरंत मिल जाएगी, अदरवाइज उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए उसे क्लास में सिखाई जाती थी, वो उसको सीखता था, शायद संभव था, कई तो ऐसे भी होते थे कि उसमें वो इसी एप्लीकेशन में छोटे मोटे सुधार करके शायद 10वीं या 12वीं के आगे तक वो एप्लीकेशन चलती रहती थी। अब AI के पास ये जानकारी इस तरह की, वो पांचवीं तक के बच्चे को अलग तरह की एप्लीकेशन समझाएगा और 10वीं या कॉलेज के लेवल को, क्या ये सही बात है?
2: देखिए, AI एक ऐसा मान लीजिए कि वो एक सर्व सुविधा युक्त जिन है, पॉपुलर कल्चर के एक उदाहरण में दे रहा हूँ। अब उससे आप वरदान में कंघा भी मांग सकते हैं और बाल भी मांग सकते हैं, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा वो जवाब देगा। इंटरनेट के बारे में भी यही कहा जा सकता है, आप एंटरटेन भी हो सकते हैं और उसकी मदद से कुछ सीख सकते हैं। तो AI भी ऐसे ही है, अगर सही तरीके से प्रॉम्प्ट किया जाए तो यकीनन वो मतलब बहुत अच्छा टीचर बनाया जा सकता है, बशर्ते उसके ट्रेनिंग डेटा सेट, मतलब कौन से डेटा से ट्रेन किया हो, इस बारे में हमको ट्रांसपेरेंसी हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, हाँ इसका ट्रेनिंग डेटा सेट कहीं बायस नहीं है। तो AI के हर आउटपुट पे और ट्रेनिंग डेटा सेट पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हो रहा है तो AI की मदद से फर्स्ट क्लास का लड़का, उसके लिए उसके हिसाब से, उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से एक अलग कोर्स तैयार किया जा सकता है सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट के द्वारा, और पांचवी कक्षा के लिए अलग किया जा सकता है, 10वीं के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग। मैंने बताया ना, ये हर किसी को उपयोग करके देखना चाहिए ChatGPT की। इमेजिन यू आर अ टीचर, एक्सप्लेन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ले लीजिए, कोई भी जियोपॉलिटिकल विषय ले लीजिए, एनी टॉपिक टू मी लाइक आई एम अ क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, और वो बड़े अच्छे से क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट के लेवल के आधार पर। अब उसके डेटाबेस में, ट्रेनिंग डेटाबेस में क्लास फिफ्थ के बच्चे का लेवल क्या है वो डिपेंड करता है कि वो क्लास फिफ्थ के बच्चे को कैसे परसीव करेगा, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है।
1: आपने ChatGPT का नाम लिया, एक सामान्य आदमी के लिए अपन बात करते हैं, जो लोग इससे रूबरू हो गए हैं मान लेते हैं और जो नहीं हुए, एक ChatGPT एक ऐप है, इसको डाउनलोड करना है और फिर वो संभवतः टेक्स्ट को लेकर, ऑडियो को लेकर या वीडियो को लेकर अलग अलग जानकारी दे पा रहे हैं, ये मान लेते हैं अपन। इसके अतिरिक्त कोई और ऐप या कौन से टूल्स?
2: बहुत सारी हैं। देखिए, ChatGPT तो सबसे ज्यादा फेमस हो गई, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जो कहते हैं अपन, 2022 के एंड में आया और बस वो पूरे दुनिया में छा गया। फिर ये इस साल की शुरुआत में वो गिबली आर्ट, इमेजेस से कार्टून बनाना, जितने लोग उस टाइम नहीं सीख पाए थे वो उन्होंने गिबली आर्ट के टाइम पे सीख लिया। लेकिन ऐसे कई टूल्स हैं। मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ और मेरी कोशिश रहती है साल भर में 50 किताब पढ़ पाऊँ, लेकिन करना 50 किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। गूगल आपका जीमेल अकाउंट है, या अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल का भी ChatGPT के समतुल्य इक्विवेलेंट एक अपना मॉडल है, जिसको बोलते हैं Gemini। तो अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो आप Gemini भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ChatGPT से काम कर सकते हैं। Gemini में एक नैनो बनाना करके उसका एक इमेज जनरेशन मॉडल है, वो मतलब फ्लॉलेस है, जबरदस्त है। तो इमेज जनरेशन के लिए मैं Gemini का नैनो बनाना यूज करता हूँ। Gemini कोर मॉडल और ChatGPT दोनों मोर और लेस वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिससे टेक्स्ट जनरेट किया जा सकता है। गूगल का एक बहुत उपयोगी फीचर जो है नोटबुक LM, देखिए मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि इसका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है ये अपन को नहीं पता। नोटबुक LM बेसिकली एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो केवल उसी आधार पे जानकारी देता है जो आप उसे बताते हो। उदाहरण के लिए आपने एक पुस्तक किया, एक रिपोर्ट किया, एक कोर्ट के केस की समरी डाल दी। अब कोर्ट के जजमेंट जो रहते हैं वो आप और मैं शायद उतने आसानी से नहीं समझ पाए। तो आपने पीडीएफ दो तीन निकाली और वो पीडीएफ किसी भी तकनीकी विषय रिसर्च पेपर हो सकती है, कोर्ट के जजमेंट की हो सकती है, या एक सामान्य किताब का, मैंने शुरुआत किया था किताब का हो सकता है, और वो नोटबुक एलएम पे आप अपलोड करते हो, है ना, और या फिर आप एक ढाई घंटे का पॉडकास्ट है यूट्यूब पे उसकी लिंक आपने अपलोड कर दी। नोटबुक एलएम सिर्फ केवल जो पीडीएफ आपने डाली है, जो लिंक आपने शेयर किया है, केवल उसी आधार पे उस कंटेंट की समरी जनरेट करता है। तो नोटबुक एलएम की मदद से जो साल की 50 किताबें मैं पढ़ पा रहा था, अब वो मैंने 200-250 तक

0: नहीं और चैट जीपीटी, ये कई बार गलत जानकारी भी देते हैं
1: जी।
0: तो उन गलत जानकारियां जिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में सबसे कम ऐसे मानी जाती हैं वो है एंथ्रोपिक का परप्लेक्सिटी।
1: अच्छा,
0: तो परप्लेक्सिटी में किसी किसी विषय के बारे में आपको सर्च करना है तो आमतौर पे तो ये बिल्कुल सही देंगे, परप्लेक्सिटी हो गया या चैट जीपीटी हो गया या जेमिनाई हो गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परप्लेक्सिटी के रिजल्ट ज्यादा रेफरेंस रहते हैं। तो जब अपन किसी विषय की गहराई में जाएंगे तो वो जो रेफरेंसेज है वो काम आ जाते हैं। मतलब हो सकता है चैट जीपीटी और जेमिनाई काफी एक स्टेज के बाद हेलुसिनेट करने लगे, डीप में जाते जाते उनको जानकारी नहीं और वो कॉन्फिडेंटली झूठ, हो सकता है, संभावना है कि वो दे रहे। लेकिन चूंकि ये रिलेवेंट रहता है तो एंथ्रोपिक का टेक्निकल शोध के विषय में काफी अच्छा माना जाता है परप्लेक्सिटी। इसके अलावा अगर क्रिएटिव राइटिंग है तो क्लॉड करके एक अलग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अगर क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग इसकी बात करें तो उसके लिए वो सबसे अच्छा है। अगर आप ट्विटर में बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, नैरेटिव कैसे बढ़ रहे हैं, तो ग्रोक करके एक मॉडल है अपना, एक्स का है, एक्स के मतलब पुराना नाम जिसका ट्विटर था, एलन मस्क की कंपनी, उसके डेटा पे रिजल्ट देता है। तो ये सारे ट्रेनिंग डेटा से चूंकि पास्ट के किसी डेट पे है तो हो सकता है तत्कालिक कंटेम्प्रेरी जानकारी उतनी अच्छे से ना दे पाए, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड जानकारी चाहिए तो ग्रोक इज अ गुड एआई मॉडल।
1: जितनी बात अभी आपने और हमने करी उससे एक बात जो समझ में आ रही है मोटी मोटी वो ये कि जब भी आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका प्रश्न क्या है उस
0: जी,
1: है ना, जैसा आपका प्रश्न होगा उसी तरह का उत्तर वहां से आएगा। दूसरा, जो जानकारी वो दे रहा है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में कोई बीमार है और आप उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन या वो जो पर्चा होता है डॉक्टर ने या कोई रिपोर्ट आप उस पर अपलोड कर रहे हैं तो वो उसके हिसाब से भी जो आप प्रश्न पूछेंगे वो आपको उत्तर दे देगा। मैं ठीक कह रहा हूं?
0: जी। इसमें केवियट है, मैंने कहा ना चैट जीपीटी से आप बीमारी का इलाज नहीं पूछ रहे
1: जी,
0: उसमें संभावना है कि हो सकता है गलत दे। लेकिन जो नोटबुक एलएम है, जो एक टूल मैंने बताया था, वहां पे आप जो पीडीएफ अपलोड करोगे वो उन पीडीएफ से ही अपना जवाब देगा, वो इंटरनेट में नहीं जाएगा सर्च करने या वो अपने डेटाबेस से खुद का ज्ञान नहीं प्रस्तुत करेगा, वो उसी पीडीएफ के आधार पर जवाब देगा जो आपने अपलोड किया, तो इस आधार पर वो बता सकता है।
1: कहने का मतलब एक ही कम्युनिकेशन है जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, एक जो व्यक्ति इधर बैठा है जो प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा एआई टूल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा और फिर एआई ने जो उसका जवाब दिया, दोनों सूरत में महत्वता ये आ रही है कि प्रश्न आपका उतना सटीक हो जैसा आपका प्रश्न वैसा उत्तर वाली बात होगी
0: जी।
1: और दूसरी अति महत्वपूर्ण बात यह कि वो आपको जो भी उत्तर देता है
0: जी,
1: आपको अपने विवेक के साथ उसको क्रॉस चेक भी करना है, जो का तो मतलब जैसे कि आपने कहा कि वो कोई आपको इलाज तो बता नहीं रहा बीमारी का, वो आपको आपकी रिपोर्ट का एनालाइज करके दे रहा है
0: जी।
1: क्या ठीक कह रहा हूं?
0: हाँ, नोटबुक एलएम से जो हम लोड कर रहे हैं वो हमारी रिपोर्ट को एनालाइज करके हमको दे रहा है। चैट जीपीटी से जो पूछ रहे हैं वो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट पे बेसिस पे जवाब दे रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग क्षमता है। तो जहां पे इंटरनेट से या उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में, वहां पे हमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग डेटा सेट क्या था, कैसा था, उसमें बायस तो नहीं थे या उसके आउटपुट को चेक करना पड़ता है कि ये कितने सही दे रहा है कितने गलत दे रहा है, इससे कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा। आपने केसेस सुने होंगे कि वहां पे लोग जो है उनको सुसाइड के लिए इनकरेज कर लिया या किसी ने ऐसे लार्ज लैंग्वेज, चूंकि उनका ट्रेनिंग डेटा सेट तो वास्ट है, अब कोई इनसे उदाहरण के लिए ये भी पूछ सकता है कि बम कैसे बनाना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ऐसे फिल्टर लगाने पड़ते हैं इन सोशल,
1: मतलब हर चीज का उपयोग गलत भी हो रहा है।
0: लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली कंपनियों ये बार बार ऐसे फिल्टर लगाती है ताकि उन मॉडल्स का गलत उपयोग ना हो सके। लेकिन इस चीज पे हमें भी एज ए यूजर और हमें भी एज ए गवर्नमेंट भी चेक करना पड़ेगा कि इनका ट्रेनिंग डेटा सेट और इनका अप्लाइड यूजर केसेस सिनेरियो ये सही दृष्टि से हो। लेकिन जहां पे ट्रेनिंग डेटा सेट सीमित है, मतलब जैसे नोटबुक एलएम किया या आपने बोला कि भाई मेरे को लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए लेकिन मैं अपना डेटा किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो ऐसे ओपन सोर्स मॉडल है, फेसबुक का लामा एक ओपन सोर्स मॉडल है, आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए और इंटरनेट बंद करके लैपटॉप के ही लोकल डेटा पे आपने ट्रेन किया है तो उसमें डेटा बाहर का डेटा का सवाल ही नहीं उठता। जो आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देंगे वो उस पर अपना जवाब देगा। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पास एक अलग मॉडल है। होता यह है कि जैसे मैंने बोला, मैं बार बार क्लेरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमें केस नहीं पता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, तो हो सकता है कोई अपने मेडिकल रिपोर्ट चैट जीपीटी पे जाके अपलोड करे और अपने मेडिकल हिस्ट्री के आधार पे उपाय मांगे, वो गलत हो जाएगा। वो एक एग्जांपल था, वो सिर्फ नोटबुक एलएम के केस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आना जरूरी है।
1: मतलब अपन ने ये बात कही थी कि एक तो प्रश्न आपका क्या है, दूसरा फिर उत्तर वो आपको क्या दे रहा है, दोनों बातों में जो इंसान इस पे काम कर रहा है उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है
0: और एआई के बारे में जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा उद्देश्य रहता है, जो मैं अलग अलग जगह वो यही बताता हूँ कि भाई ये टूल बहुत जबरदस्त है, इससे आप जो प्रश्न पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। लेकिन हर टूल की एक सीमाएं रहती है, वो सीमाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो लिमिटेशंस, वो चैलेंज, वो वर्स्ट केस सिनेरियो, सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम जिस उद्देश्य से यूज करना चाह रहे हैं ठीक उसी उद्देश्य से उसका उपयोग कर पाए, अन्यथा वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
1: एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अभी सबसे बड़ा वो कौन सा सेक्टर है जहां आईटी का यूज हो रहा है और अगले 5 या 10 साल में उसमें ज्यादा होने वाला है क्या?
0: देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब एआई के बारे में रिसर्च चालू हुई थी तो आपको पता है एआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को ऑब्सोलीट करना है, मतलब बिफोर द टेक्नोलॉजी बिकेम मेन स्ट्रीम 2022 के पहले।
1: से मतलब क्या है, ऑब्सोलीट? हाँ, करना है।
0: मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हर किसी ने जब स्कूल में कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा तो बड़ा सिंपल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जब एक्सप्लेन करते हैं स्कूल में तो ये रहता है कि एक सीपीयू रहता है डब्बा, कुछ इनपुट डिवाइसेस रहते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं। इनपुट डिवाइस से एरो जाता था सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वहां से वो एरो जाता था आउटपुट डिवाइसेस में। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस हो गए, आउटपुट में स्क्रीन और स्पीकर हो गए। तो ये बेसिक डायग्राम ऑलमोस्ट हर किसी ने जिसने आईटी या कंप्यूटर साइंस स्कूल में पढ़ा है सबको पता होगा। अब सीपीयू इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करता था, इसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती थी। आपको ध्यान होगा आज से 10, 20, 30 साल पहले इंडिया में जब कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन आया, हम लोग जब सॉफ्ट पावर बने, बीपीओ रिवॉल्यूशन आया, वो सब भारतीय प्रोग्रामर्स के दम पे हुआ। तो सीपीयू को इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए कंप्यूटर को, सीपीयू को प्रोग्राम किया जाता था अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। आप ये मानिए सीपीयू में इनपुट प्लस प्रोग्राम यूज टू बी द आउटपुट, मतलब आपने इनपुट तो किया ही है लेकिन उस इनपुट का करना क्या है ये भी कंप्यूटर को समझाया, तब जाके वो कंप्यूटर अपने लिए काम करने योग्य बन पाता था। मशीन लर्निंग क्या कर रहा है या एआई क्या कर रहा है, ये जो प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर था ये इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को मैनुअली प्रोग्राम करने की बजाय क्या ऐसा संभव है कि हम उसे बहुत सारा डेटा दे दें
1: जी,
0: जैसे मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उदाहरण लिया, एक लाइब्रेरी भर के डेटा दे दें कि भाई ये आपकी लाइब्रेरी है, आप इसको समय लेके पढ़ो। पहले सुपरवाइज लर्निंग आया, वहाँ पे हमारा ह्यूमन सुपरविजन रहता था कैसे कैसे ट्रेन करना, फिर अनसुपरवाइज लर्निंग आया, डीप लर्निंग आया, न्यूरल नेटवर्क आया, कुल मिला के हमने कंप्यूटर को दे दिया डेटा। ये डेटा है, यू टेक योर ओन टाइम। ये जो एनवीडिया के जीपीयू है, हाई हमने आपको बिजली दे दी, हमने आपको जीपीयू दे दिए, अब कंप्यूटर को बोल दिया भैया आप इस पूरे डेटा से खुद ही इन्फ्रेंसिस करके यू स्टार्ट टू ट्रेन योर ओन वर्ल्ड। बीच बीच में हम ह्यूमन इंटरवेंशन, हम लोग आउटपुट देखते जाएंगे, प्रोग्रेस देखते जाएंगे और उस बेसिस पे इवेल्युएट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो उसका ट्रेनिंग डेटा सेट है वो हम लोग ने कंप्यूटर को दे दिया और प्रोग्रामिंग पार्ट से हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तो अब क्या परिस्थिति बन गई है, रॉ डेटा सेट। और यही रीजन है कि डेटा हैज बिकेम द न्यू ऑयल, ऐसा क्यों कहते हैं, जो पिछले 100 सालों में युद्ध पेट्रोल के लिए हुए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए हुए, वो अब डेटा के लिए हो रहे हैं। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनेगा, और कंप्यूटर इंटेलिजेंट बनेगा उसके यूज के सिनेरियो, जितना इंटेलिजेंट बनेगा उतना आप उपयोग कर पाएंगे। तो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग करने का जो प्रक्रिया था वो धीरे धीरे अब हट रही है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का ही है। आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि गूगल के हेड ने, सुंदर पिचाई ने कहा, कह चुका है, अमेजन के हेड ने कह चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड ने कह चुका है कि एटलीस्ट 50% जो कोडिंग थी वो अब एआई की मदद से ये सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर 50% कोडिंग का काम, और कोडिंग क्या होती है, ताकि कंप्यूटर को यूजेबल बनाया जा सके, जो इंडस्ट्री है, जो इफेक्ट होने वाली है वो यही है कि प्रोग्रामर्स का डोमेन था वो अब सीमित होता जाएगा। प्लस हम लोग कंप्यूटर्स को यूज करते थे लेकिन कंप्यूटर्स में जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उन्हीं को यूज करते थे। हम लोग यूज कर रहे थे लेकिन हमारे पास ये, अब आप मान लीजिए कोई ऑडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वीडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये फीचर मेरे काम का नहीं है, थोड़ा और बेहतर हो सकता है, आपके पास ये सुविधा नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल बैरियर था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और जो कमर्शियल प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर थे उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे उसकी कोडिंग, क्योंकि अपन को पता नहीं था। लेकिन कोडिंग हट जाने से हम लोग भी, अब जैसे आपको अपना वेब पेज बनाना, आप चैट जीपीटी पे जाके बोलिए मेरे को अपना, ये मेरा रिज्यूमे है पीडीएफ में, मैंने अटैच कर दिया, आप एक वेब पेज की स्क्रिप्ट बना के दे दो, चैट जीपीटी आपको 10 सेकंड में एक बढ़िया वेब पेज की स्क्रिप्ट दे देगा। आप इंग्लिश में बोलते जा रहे हो कि भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, और वो आपकी इंग्लिश को समझ के उस वेब पेज की स्क्रिप्ट में चेंज कर रहा है। तो एक तरह से तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का काम ऑटोमेट हो रहा है, दूसरी तरह आपके पास ये सुविधा हो गई कि आपको अब प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर्स को अपने हिसाब से यूज करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबसे पावरफुल है। जब कंप्यूटर्स पहली बार आए थे 1970 के दशक में, तब कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए रहता था। मेरे ख्याल से 1995 में जब विंडोज 95 आया, तब जाके वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का दौर आया, जब अपन माउस या कीबोर्ड से क्लिक कर सकते थे। उससे पहले आपको याद होगा एमएस डॉस रहता था, टाइप करके अपन प्रॉम्प्ट करके खोलते थे, तो उसमें भी टेक्निकल बैरियर था। 95 के बाद सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गए, 2010 के बाद आईफोन के बाद सारे टच स्क्रीन फोन आ गए। आज एक बच्चा भी 2.5 साल का है, उसको भी यूट्यूब खोल के अपना वो लाल टमाटर वाला गाना खुलना आता है, इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस हो गया। तो एंट्री बैरियर है वो चेंज होता गया। एआई जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का एंट्री बैरियर भी खत्म कर देगा, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड वेब पेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्वीक कर पाएंगे। मुझे लगता है ये सबसे प्रोमिनेंट यूज है और इसी यूज के कारण ही ये पूरी फील आगे हुई थी। ये जो बाकी यूज हम देखते हैं गिबली आर्ट इमेज जनरेशन ये तो साइड वाले टेक अवेज हैं, जो मेन यूज है जो मोस्ट इम्पैक्टफुल डोमेन है वो यही है।
1: आपने कहा कि जैसे कोडिंग वर्कर, तो क्या कोडिंग में जो जनरेशन काम कर रही है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आप खुद इंजीनियर हैं, पढ़ा भी रहे हैं आप तो एक बड़े हिंदुस्तान के इतने बड़े संस्थान में, तो क्या इंजीनियर्स का कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में?
0: बिल्कुल, कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में है, क्योंकि मैंने बताया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज 50% ऑफ द कोड एआई से बना रही हैं, तो या तो आपको अपना स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो आपको अपने कोडिंग स्किल्स को एआई को ही बेहतर बनाने पे या एआई के नए नए फील्ड्स में उपयोग खोजने में लगाने पड़ेंगे, और या आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 50% कोड हो रहा था, अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो 50% मैंने बोला ना रिपीटेड टास्क, ये बिल्कुल वही उदाहरण हो गया कि मैं अभी भी डिजिटाइज कर रहा हूँ, है ना, नक्शों को लैंड यूज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि एआई ये काम करके दे रहा है, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसे कुछ लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो चाहेंगे कि नहीं कंप्यूटर से नहीं मेरे से ही वो रोड का डिजिटाइजेशन करवाए, तो ये सोचना बड़े बेमानी होगा कि हम जो 50% ऑटोमेटेड कोड हो रहा है जनरेशन उसी के दर पे रह सकते हैं। तो हाँ, उन इंजीनियर्स वो अपने स्किल्स को ज़्यादा बेहतर उपयोग में लगा सकते हैं अगर वो चाहे तो।
1: तो आईटी या सीएस में ब्रांच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं,
0: हाँ,
1: ये चुनौती उन्हीं के लिए है?
0: बिल्कुल है,
1: या बाकियों के लिए?
0: बाकियों के लिए भी है, बाकियों के लिए भी है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहने वाला। हाँ, कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं और आप हो गए, हम चलिए मैंने तो मेरी एक करियर ऐसी ट्रेजेक्टरी में गया, ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे टेक्नोलॉजी सही समय पे इनके बारे में पता चलता गया और मेरे को एक पीयर ग्रुप मिला जिससे मैंने थोड़ा बहुत सीख भी लिया। लेकिन आईटी और कंप्यूटर, आईटी तो खैर ऑब्सोलीट हो गई, अब आईटी की उतनी ब्रांच नहीं, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों को ये समझना चाहिए कि वही उन्हीं के फील्ड से ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं, तो उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब उनको दूसरों के लिए तो एआई के उपयोग को सुगम बनाना ही है, और अगर वो ऐसा कर लेते दे विल मेक अ वेरी गुड करियर आउट ऑफ इट, लेकिन खुद को बचाने के लिए भी, ताकि वो लेवल से बाकी लोग से आगे रह सके, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बेहतरी से लेवरेज कर सके, इस चीज़ को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशन उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छे से तरीके से कोई नहीं समझ सकता है। हम लोग तो बाहरी है, मैंने बताया ना मैं भी आर्किटेक्चर प्लानिंग से गया हूँ, वही लोग के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, तो वो अगर इस चीज़ को समझेंगे दिल बी अहेड ऑफ द कर।
1: हाल ही में देश की इतनी बड़ी संस्थान TCS ने तकरीबन 10 या 12 हज़ार
0: जी
1: काम करने वाले को हटाया है
0: जी,
1: क्या ये इसी का असर है?
0: हो सकता है, देखिए ग्लोबल कंपनीज में बिजनेस रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता रहती है, जैसे अब TCS कहीं बाहर के प्रोजेक्ट ले रही है, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट ले रही है अगर उस कंपनी के पास खुद ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो 50% ऑफ द कोड खुद जनरेट कर सकते हैं, तो वो अपना मैन पावर या वो अपना बिजनेस कम करेंगे, इसके कारण ले ऑफ हो सकता है। पहले वाले टेक्नोलॉजिकल वेव्स में जो ले ऑफ हुए थे वो निचले स्तर के होते थे, AI के बाद निचला और ऊपर वाला कोई स्तर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि नहीं मेरा जॉब तो सेफ है मैं तो सबसे ऊपर बैठा हूँ। देखिए जेसन हुआंग करके एनवीडिया के फाउंडर हैं, एनवीडिया मतलब जो GPU बनाती है, GPU बोले तो कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का दिमाग, बिना GPU के AI रेवोल्यूशन संभव नहीं हो सकता, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। उनका बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं AI आपको जॉब से रिप्लेस नहीं करेगा, समबडी यूजिंग AI वुड रिप्लेस यू फ्रॉम योर जॉब, मेरे से बेहतर मैं एक प्राध्यापक हूँ, मेरे को रिप्लेस वो करेगा जो AI को बेहतर तरीके से यूज करेगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो आपको वो दूसरा व्यक्ति रिप्लेस कर सकता है जिसको 5 AI टूल्स के बारे में पता है, तो वो आपका काम बहुत कम समय में कर सकता है। तो AI रिप्लेस नहीं करने वाला कोई भी जॉब, और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री हर सेक्टर में ये जॉब रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन जो रिप्लेस कर रहा है वो कोई व्यक्ति ही होगा जो AI को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहा
1: है। ठीक है, जब आपने कहा कि बेहतर तरीके से यूज कर पाए, तो एक बात और बताइए कि लोग AI को सीखे कहाँ से?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चीज में और AI के बारे में बताना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा होगा कि यार इलॉन मस्क बोलता है कि AI वुड बी द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग विच विल हैपन टू द ह्यूमैनिटी, तो उसका जो AI के प्रति दृष्टिकोण रहता है वो थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, वो डरता भी है, वो बोलता है संभल के रहने की भी जरूरत है और फायदे भी देखता है। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है वो AI के अच्छी चीजें बताते हैं, जैसे सुंदर पिचाई कहते हैं कि जिस प्रकार आग ने, चक्के ने और बिजली ने या इंटरनेट ने हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया, AI उससे 1000 गुना ज्यादा तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, तो सिर्फ एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस विषय के विशेषज्ञ लोगों में भी मतानुभेद है कि भाई कोई इसको नेगेटिव देख रहा है, कोई डर रहा है, कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बैलेंस व्यू देने की कोशिश कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका एडवांसमेंट, जिसका प्रोग्रेशन कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। एंटिसिपेट नहीं कर सकता मतलब 2022 में चैट जीपीटी का पहला वर्जन आया 2.5, उसके एक साल बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया, उसके 6 महीने बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया। तो कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है क्योंकि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव ही मशीन्स की वर्किंग को एफिशिएंट बनाना है। और मशीन्स एफिशिएंट होके कैसे विकसित होंगी इस पे चेक हम लोग बीच बीच में उसके आउटपुट को टेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे हाँ अगले 6 महीने में ये चेंज होगा। इससे पहले वाले जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आए उस टाइम पे लोगों का परसेप्शन एक रहता था कि हाँ ठीक है अगला जो चेंज आएगा, अगला पड़ाव आएगा, अगला ब्रेक थ्रू आएगा, उसमें लेट्स से एक साल लगेगा या एक महीना लगेगा। लेकिन यहाँ पे तकनीक इतने तेजी से इवॉल्व हो रही है, ब्रेक थ्रू कल भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, हो सकता है नहीं आए। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है टुवर्ड्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, फेसबुक में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आमने सामने बिठा दिया और बोला कि आप दोनों आपस में बात करके सीखो, मतलब जो ऑटोनोमस बॉट रहते हैं जिनसे बात करते हैं। चालू हुआ और उसका वीडियो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। दोनों ने बात करनी चालू की और मेरे ख्याल से थोड़ी देर बात की और फिर परिचय तो हो ही गया था कि बोला मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये अंग्रेजी तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है विच मे नॉट बी दैट एफिशिएंट, सो व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम, व्हाई नॉट हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने जो मोर एफिशिएंट मोड ऑफ टॉकिंग है उस पे शिफ्ट जाए। और फिर वो अपने बीप और फ्रीक्वेंसीज में बात करने लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया, ये वीडियो है आप देखिएगा। तो आप देखिए मशीन्स ने हमारी भाषा में बात करना चालू की और कुछ समय के बाद उनको मशीन्स को लगने लगा कि भाई ये तो बड़ा इनएफिशिएंट मोड है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या बीप्स में बात कर लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। इस प्रकार के जो चीजें हैं ये इसकी ग्रोथ को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है और इसलिए सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंटली AI की ही मदद से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चेक रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं बच्चे लोग से बहुत बात करता हूं। असाइनमेंट में जैसे उनको रिपोर्ट दी जाती थी पहले, रिपोर्ट बनाना जब मैं पढ़ रहा था, रिपोर्ट बनाना वॉज एक्चुअली अ वेरी स्किलफुल एक्सरसाइज। हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, तब तो इंटरनेट भी उतना नहीं था, लाइब्रेरी में जाते थे, 4 पुस्तक पढ़ते थे, फिर उसको लिखते थे, फिर उसको समराइज करते थे। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद गूगल रिजल्ट और ये सब यूज करने से थोड़ा लाइब्रेरी जाने की जो पीड़ा थी वो कम हो गई। आज आपको चैट जीपीटी पे मैं तो कहता हूँ कि आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं, आपको जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसकी एक फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए बिना कुछ कहे, वो इमेज से रीड करके आपको बढ़िया एक रिपोर्ट बना के दे देगा। तो मैं बच्चों का जब असाइनमेंट चेक करता हूँ तो अक्सर उनसे पूछता हूँ कि भाई ये प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दिख रही है। अब व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसके स्तर का काम नहीं है, तो उसको बुला के पूछता हूँ भाई कैसे, तो मुझे बताता सर ये टूल आया है, ये प्रेजेंटेशन अपने आप बता देता है, ये रिपोर्ट है ये बहुत अच्छा बना देता है। तो कहने का मतलब यह है कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज। अगर मैं बोल दूं कि नहीं बच्चे लोग से मैं क्यों बात करूं, बच्चे लोग नेचुरली उनको कम समय में ज्यादा काम करना है तो वो इन टूल से अवेयर रहते हैं। तो मेरे प्राइमरी सोर्स वो है, एक बार उनसे टूल पूछ लिया, फिर चैट जीपीटी की मदद से उस टूल के बारे में और जानकारी लेके सीख लिया। लेकिन इस विषय में अपडेटेड रहने के लिए हमें इन्हीं टूल्स का मदद करके आगे ले जाना पड़ेगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके आजू बाजू जो बहुत ज़्यादा इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, आपके विषय के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, उससे बातचीत की जाए, संवाद किया जाए, उसके पॉडकास्ट देखें। लेकिन मोर और लेस मैंने कहा ना, लर्न अनलर्न और रीलर्न, ये जो अनलर्निंग और रीलर्निंग करनी है इसके लिए भी हमको इसी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
1: काफ़ी वृहद विषय है, हमने सोचा था ये शुरू तो 2 अक्षरों से हो रहा था, मतलब अंग्रेजी की वर्णमाला से AI केवल निकल के आया था, लेकिन ये चलता जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा इस पर और भी आगे बात करें।
0: जी जी।
1: लेकिन फिर भी हम मुझे लगता है कि जब हम हमारे श्रोता इसे सुनेंगे तो आज तक जो उनकी सीमित ज्ञान था AI को लेके, संभवतः उसमें वृद्धि जरूर होगी। आपने इसको काफ़ी बेहतर तरीके से, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं और देश के इतने बड़े संस्थान में पढ़ाते हैं, आप स्वयं भी वहाँ से पढ़े हैं, और आपकी बातचीत में वो काफ़ी बेहतर तरीके से निकल के आ रहा था। चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी हमने इसकी बेहतरी अच्छाइयों में बात करी, क्या इसकी कोई खामियां ड्रॉबैक्स भी हैं जिस पर आप रोशनी डालना चाहते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसकी ड्रॉबैक पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जो हॉलीवुड की तस्वीरों में देखते हैं कि टर्मिनेटर में जैसे मशीनें बंदूक लेके लड़ने आ जाएंगी, AI के दुष्परिणाम ऐसे नहीं होंगे। हो सकता है वो आज से ये भी संभव हो कि मशीनों के पास संज्ञान आ जाए, वो लड़ने आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल 100-200 साल में तो ऐसा नहीं हो रहा। जो इसकी चैलेंजेस हैं, जो इसकी चुनौतियां हैं, वो ज़्यादा वास्तविक हैं। सबसे पहले चुनौती तो ये है कि चूंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्विंग है तो इसकी जो लिमिटेशंस है, जो चुनौतियां हैं, वो भी इवॉल्विंग उसी दर से हो रही है। जैसे मैंने बताया चैट GPT भी यूज़ करते हैं तो उसका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है, या उसमें कैसे बायसेज है, या उसके जो आउटपुट है वो सेफ है कि नहीं, सही है कि नहीं। चैट GPT नाम ले रहा हूँ एक ब्रांड का क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन जितने भी AI मॉडल्स हैं इंक्लूडिंग नोटबुक एलएम, आप अपनी PDF अपलोड कर रहे हैं लेकिन अगर आपको PDF के बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है वो अपने एंड पे जानकारी गलत देते, तो ऐसा संभव है। सबसे पहले तो यह है कि जो मॉडल काम कर रहा है उसकी सीमाएं और उनकी क्षमताओं आपकी लिमिटेशंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. एनीथिंग जनरेटेड बाय एआई इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट. वो हमेशा सही बोले ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. तो इंडिविजुअल तकनीक के टूल्स की सीमाएं क्षमता है. जैसे आप बोलते हैं कि भाई फिल्टर वाली फोटो है, तो स्वाभाविक है आपको पता है फिल्टर वाली फोटो है, तो इस चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा कि जो जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं वो हो सकता है थोड़ा अलग दिखे. या आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, तो आने वाले समय में तो अब इतने रियलिस्टिक वो हो सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति है भी कि उसकी एक कैरिकेचर है. मतलब आपको लग रहा है कैमरे के सामने व्यक्ति बैठा है लेकिन वो नहीं है,
1: वास्तविकता
0: नहीं. तो ये सारे केवीएट अपन को ध्यान देने पड़ेंगे. इसके अलावा एआई की मदद से, ये तो हो गया इंडिविजुअल यूज के सिनेरियो, गवर्नेंस या लॉ एंड ऑर्डर या सोसाइटल लेवल पे जो इसके दुष्परिणाम है उनके प्रति भी हमें सचेत रहना पड़ेगा. फेक न्यूज जो बोलते हैं, आज सोशल मीडिया न्यूज का एक बड़ा प्रामाणिक माध्यम माना जाता है. जैसे फेक न्यूज आपको बनानी है तो पहले आप हर किसी व्यक्ति को, एक आदमी 5 अकाउंट को या 10 या 25 या 50 अकाउंट को वो कंट्रोल करता था. आज की डेट में सिंगल प्रॉम्प्ट से आप मेरे ख्याल से एक फेक न्यूज के 1000 पॉइंट ऑफ ओरिजिन बना सकते हैं. तो फेक न्यूज का दुष्परिणाम ये एआई का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है सोसाइटल लेवल पे. मैं अक्सर अपनी क्लास में एक उदाहरण देता हूँ. फर्ज करिए मैं अभी आपसे बात करके यहाँ से घर जाऊँगा और शाम तक आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में एक वीडियो क्लिप आती है जिसको कहते हैं ना, जो अनएथिकल या न्यूडिटी बढ़ाने वाली, और आप देखते हैं उस वीडियो क्लिप में कि जो व्यक्ति है वो मेरे जैसा दिख रहा है, उसकी आवाज़ मेरे जैसी है. और मैं आपके पास फ़ोन करके बोलता हूँ या मैं आपके पास आता हूँ कि भाई ये व्यक्ति मैं नहीं हूँ, तो क्या अपना लीगल सिस्टम, और ये संभव है किसी के लिए भी, ये मैं अपना उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं सामने वाले का नहीं दे सकता, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि किशोर कुमार अरिजीत सिंह के गाने गा रहा है उसकी आवाज में. किशोर कुमार 90 में नहीं रहे, अरिजीत सिंह अभी आए हैं, लेकिन बहुत रियलिस्टिकली उसकी आवाज लग रही है. तो ये जो डीप फेक वाली बात है, ये एक बहुत प्रेसिंग इश्यू है जो एआई के साथ आने वाला है. आज की डेट में इतने टूल्स ऐसे आ गए हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जो अपना साइबर स्कैमिंग होती है, डिजिटल अरेस्ट उसमें, या आपके पास फोन आया, हाँ साइबर अरेस्ट, आपके पास फोन आया बोला आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और अगली आवाज ने जो आपने सुनी वो बिल्कुल रियलिस्टिकली अपने बच्चे, ये वाली सारी चीजें भी एआई के दुष्परिणाम. तो ये चैलेंजेस हैं जिनके हिसाब से आज के गवर्नेंस सेटअप को, सोसाइटी को, लॉ एंड ऑर्डर को इक्विप रहना पड़ेगा. तो ये सारे केवियट्स हैं. बदलती टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, तो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उसके यूज को रेगुलेट करना, वो अपने आप में चुनौती है. और इंडिविजुअली उस टेक्नोलॉजी से हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं या हमारा करियर कैसे प्रभावित हो रहा है, भाई हम अगर नहीं सीख पाएंगे कोई दूसरा इस टेक्नोलॉजी को सीख के हमसे ज्यादा बेहतर काम कर सकता है. ये सारी चुनौतियों के प्रति सचेत रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना, तभी हम इसका समुचित उपयोग कर पाएंगे.
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया. हमें, हमारा प्रयास था कि ये हमारे सुनने वालों तक ये पहुँचे, और संभवतः ज़रूर ज़रूर ये काफ़ी बेहतर आप तक इसकी जानकारी पहुंची होगी. हम आगे भी प्रयास करेंगे कि एआई जिस तेज़ी से लोगों के बीच में दस्तक दे चुका है, हम इस पे समय समय पर आप तक जानकारी को और अपडेट करते रहें. डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए.
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर.
1: तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु, जिसमें आज हमने बात की एआई पर. आज का जो कार्यक्रम था इसमें मोटा मोटा हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास करा. ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी. तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना FM 90.8 MHz रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए.
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेक गुरु. बने रहिए हमारे साथ 90.8 MHz पर. सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए.

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति, नमस्कार।
2: आज रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं, संक्षिप्त तौर पे अगर बात करना चाहें तो किस आयु से बच्चे तैयारी कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेज में आने की, किस तरह की तैयारी कर सकते हैं?
3: अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी तो हम घर में बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पे सबसे अच्छे तो माता पिता ही कर सकते हैं, पर अगर एक प्रशिक्षण की बात करें तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक स्कूल्स होते हैं जिनको हम सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं। ये जो सैनिक स्कूल्स होते हैं, ये बच्चों को खासकर जो है मेंटली एंड फिजिकली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए तैयार करते हैं। इसमें जो है बच्चों का एडमिशन जो है 6th class से होता है, और इस समय जो है हमारे देश में ऐसे 33 सैनिक स्कूल्स हैं, और युवाओं में जो एक जोश है, उत्साह है, उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि 100 और नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। ये जो सैनिक स्कूल हैं, ये एक अलग कैटेगरी है, इसमें 18 स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो सैनिक स्कूल हैं, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर होता है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है फंड्स देता है और सर्विंग ऑफिसर्स प्रोवाइड करता है ये सैनिक स्कूल में, जो कि अपॉइंटमेंट्स में होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपना लैंड यानी कि ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ प्रोवाइड करता है। सैनिक स्कूल्स जो होते हैं वो CBSE का करिकुलम फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ कैसे आर्मी में ज्वाइन करना है उसी के लिए बच्चों को फिजिकली और मेंटली तैयार करते हैं। तो जिस तरह से एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, उसके लिए उनको शुरू से जो है वो प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका एडमिशन जो है class 6th में जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होता है, एंड class 9th में जो है बॉयज़ के लिए होता है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और रेजिडेंशल्स होते हैं, मतलब कि ये इसमें जो है बोर्डिंग होता है, सब लोग बच्चे वहीं रह के पढ़ाई करते हैं। सारे के सारे सैनिक स्कूल में जो ये बच्चे पढ़ते हैं, ये NCC जूनियर विंग में ज्वाइन करते हैं, और इनके सबके पास NCC सर्टिफिकेट होता है जब ये वहाँ से पास आउट होते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें तो इनका जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। जैसे मैंने बताया कि 33 सैनिक स्कूल जो हैं वो पुराने हैं, जिसमें कि बच्चों को क्लास 6 और क्लास 9 में लिया जाता है, और ये जो नए 18 सैनिक स्कूल जो अप्रूव हुए हैं, फिलहाल सिर्फ क्लास 6 से बच्चों को वो ले रहे हैं। ये जो नए वाले स्कूल्स हैं, इनका जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स हैं उसमें पार्टनरशिप करके जो है ये स्कूल्स को सैनिक स्कूल्स के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक नई स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है। लेकिन जो दोनों कैटेगरी के स्कूल हैं, यानी कि पुराने वाले जो थे और ये जो नए स्कूल्स हैं, ये सभी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। और जो इनका एडमिशन है वो रिटन टेस्ट के ऊपर बेस होता है, और रिटन टेस्ट के बाद काउंसलिंग, मेडिकल फिटनेस, इन सब के पश्चात जो है मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें कि सिलेक्शन के बाद जो है बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका जो एज है, यानी कि उम्र जो है, वो 10 और 12 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 10 साल से बच्चे को बड़ा होना चाहिए और 12 साल से कम होना चाहिए क्लास 6 के एडमिशन के लिए। ये जो कट ऑफ डेट इसकी उम्र की मानी जाती है वो 31 मार्च मानी जाती है, जिस साल में वो सेशन शुरू हो रहा है। तो उनकी उम्र 31 मार्च को 12 साल से कम होनी चाहिए और 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से जो क्लास 9th में जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनकी एज जो है 13 साल और 15 साल के बीच में होनी चाहिए। जो लड़कियों का एडमिशन होता है वो क्लास 6th में है, और 9th में जो एडमिशन है वो भी लड़कों के लिए है। इसमें जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑनलाइन सबमिशन जो है अक्टूबर में शुरू हो जाता है, दिसंबर और जनवरी में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जो हमारे 33 सैनिक स्कूल्स हैं, अगर उनमें देखते हैं तो तकरीबन 2600 बॉयज की वैकेंसीज आती हैं और 325 से 350 जो है गर्ल्स की वैकेंसीज हैं, जो कि क्लास 6 के लिए है। क्लास 9th में जो वैकेंसीज होती हैं वो फिक्स नहीं है, वो वहाँ पे जितनी उस समय की वैकेंसीज अवेलेबल हैं उसके ऊपर ही उनको लिया जाता है। इसमें जो है सीट्स का रिजर्वेशन भी होता है, देन डिफेंस सर्विस पर्सनल, एक्स सर्विस मैन और स्टेट डोमिसाइल, ये अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं जिसके द्वारा बच्चों का इसमें जो है रिजर्वेशन कोटा भी होता है।
2: इसके अलावा और कुछ विवरण है जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
3: सैनिक स्कूल के अलावा हमारे देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं।
2: जी,
3: ये जो मिलिट्री स्कूल्स हैं ये हिंदुस्तान में मतलब सबसे पुराने पब्लिक स्कूल्स इनको हम कह सकते हैं।
2: जी।
3: और इनकी स्थापना जो है मतलब 1925 में हुई थी। तो 5 जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं वो एक जैल में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में, 2 जो है राजस्थान में है, अजमेर और धौलपुर में, और 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है बेलगांव और बैंगलोर कर्नाटका में है। ये स्कूल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं।
2: जी।
3: इसमें भी जो है देखिए बेसिक एम यही है कि बच्चों को एनडीए और दूसरे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए तैयार करना, और इसमें भी एडमिशन जो होता है बच्चों का वो क्लास 6 और क्लास 9 में होता है, और उसके लिए जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया जाता है। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है।
2: जी।
3: ये रिटन टेस्ट में होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है और मेडिकल फिटनेस कंडक्ट करी जाती है। देन उसके बाद जैसे कि प्रोसीजर होता है कि मेरिट बनती है, मेरिट के बाद जो है बच्चों का एडमिशन इसमें होता है। अगेन इसमें जो बच्चों की एज होती है वो 6ठी कक्षा में जाने के लिए एलिजिबिलिटी है कि 10 और 11 के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए, और जो 9th में जो बच्चे जाते हैं उनकी 13 से 14 के बीच में उम्र होनी चाहिए। ये 1 जुलाई को सेशन का जो होता है उसका ही कट ऑफ माना जाता है। और जाहिर है कि बच्चा अब 6th क्लास में जा रहा है तो 5th क्लास वो पास कर चुका होना चाहिए रिकग्नाइज्ड स्कूल से, या उस समय वो बच्चा 5th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम दे चुके हैं, वो भी इसमें अपीयर कर सकते हैं। एंड अगर वो अपने एग्जाम में 5th क्लास क्लियर कर जाते हैं और इसमें उनके क्लियरेंस मिलता है तो वो 6th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल मतलब प्रोसीजर होता है। जनरली जैसे बताया कि मैंने दिसंबर में इसका एग्जाम्स होते हैं और इसका लास्ट डेट जो सबमिशन होता है फॉर्म्स वगैरह का वो सितंबर ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। जो भी माता पिता अपने बच्चों को इन स्कूल्स में डालना चाहते हैं वो सितंबर ऑनवर्ड्स या उससे पहले से जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें देख सकते हैं, इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो वेबसाइट्स हैं, सब स्कूल्स की वेबसाइट्स हैं, अगर आप सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी टाइप करेंगे तो भी आएगी, उसमें उनके ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, तो उससे आपको काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। एंड ये स्कूल्स का मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, और इन स्कूल्स ने बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं देश को दिए हैं, एंड काफ़ी अच्छे स्कूल्स में इनकी गिनती होती है।
2: तो सैनिक स्कूलों की तुलना में कर्नल साहब इनमें प्रतियोगिता का जो स्तर है वो भी ज़्यादा कठिन रहता होगा।
3: जी, क्योंकि ये सिर्फ 5 ही स्कूल हैं और इस कारण से जो है थोड़ा सा जो है सैनिक स्कूल से ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट इज समथिंग लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट में होते हैं, फिर IIT होता है, तो IIT जो है कम है। जी, तो वैसे ये भी है, लेकिन एम अगर हम देखेंगे तो सबका एक ही होता है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पे डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए तैयार करना। और किसी कारण से अगर वो डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकते हैं तब भी वो एक देश के लिए एक अनुशासित नागरिक बनते हैं, और हर फील्ड में जहां वो जाते हैं किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छा जो है उनका योगदान रहता है। अदिति जी, मैं आपको एक और स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है। वैसे हम इसको बोलते कॉलेज हैं, लेकिन ये जो है स्कूल है। इसकी स्थापना जो है मार्च 1922 में हुई थी, और उसको समय प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहा जाता था। आगे चल के जो है इसी का नाम जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हुआ। ये एक NDA के लिए और दूसरी डिफेंस एकेडमीज में जाने के लिए एक फीडर इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करता है। इसको हम नर्सरी ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। अगेन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें जो है CBSE के थ्रू करिकुलम फॉलो होता है और साइंस स्ट्रीम में ही होता है। इसमें साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी और जुलाई में, और ये जो एडमिशन है सिर्फ क्लास 8th से शुरू होते हैं। इसमें जैसे जिसको एडमिशन लेना होता है उस बच्चे की जो उम्र है 11.5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 13 साल से कम होनी चाहिए। वही सेम है कि बच्चे ने जो है 7th क्लास जो है पास करी होनी चाहिए। और इसका भी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है। सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज होता है, और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको फिर वाइवा वॉयस के लिए बुलाया जाता है। वाइवा वॉयस में क्लियर होने के बाद फिर इनका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट बनती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इसकी सिर्फ हर टर्म में सिर्फ 25 सीट्स होती हैं,
2: यानी ये और कठिन
3: ये और कठिन है, और इसमें जो है स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं।
2: कनेक्ट साहब, आपने ये बोला था कि इसमें सिर्फ विज्ञान स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जाते हैं, तो इस पर थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो विषयों का चुनाव होता है वो कक्षा 10 के बाद होता है।
3: हाँ, ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि इसमें जो 9th से 12th में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ ये साइंस स्ट्रीम में ही पढ़ाते हैं।
2: अच्छा।
3: मतलब कि कोई बच्चा 6th क्लास में 7th क्लास में सोचता है कि मैं आगे चल के कॉमर्स लूंगा तो वो इसमें
2: यहाँ संभव नहीं है।
3: उसको वहाँ पे साइंस ही पढ़नी पड़ेगी। ये जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज अभी बॉयज के लिए है, इसमें 25 सीट्स होती हैं, ये स्टेट वाइज अलॉट होती हैं, तो स्टेट के थ्रू जो है जाते हैं, और जाहिर है कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा और टफ होता भी है। और जो इनके एलुमनाई हैं जो यहाँ से निकले हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक इस कॉलेज ने 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं, 2 चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ से निकले हैं, और बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल ऑफिसर्स जो हैं, सिविल डिग्निटरीज जो हैं, इस कॉलेज के एलुमनाई हैं।
2: कर्नल साहब, सैनिक स्कूल से मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या यह स्कूल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनके अभिभावक आर्म्ड फोर्सेस में हैं, कि भारत के सभी नागरिकों के बच्चे इन स्कूलों में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं?
3: अदिति, ये स्कूल सबके लिए ओपन रहते हैं, और इसमें हर बच्चा जो है, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। पहले ये सिर्फ बॉयज़ के लिए हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये गर्ल्स के लिए भी जो है ओपन है, तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं।
2: और अगर मोटे तौर में पूछा जाए तो आर्मी में या किसी भी सेना में एंट्री के लिए मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है?
3: जैसे अभी स्कूल के बाद जो नेक्स्ट लेवल की एंट्री होती है उसको हम एनडीए बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। इसमें जो एंट्री होती है वो 17 साल तक बच्चा जो है जा सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी
2: जी,
3: तीनों में जो ऑफिसर्स के लिए जो है कैंडिडेट्स को लेती है, और ये 12वीं में पढ़ने वाले और उसके बाद 12वीं पास कर चुके जो है बच्चे हैं एग्जाम में बैठ सकते हैं। लड़कियां भी जो हैं इसमें अप्लाई कर सकती हैं।
2: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति। जय हिंद श्रोताओं।
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: हमारी सेना हमारा गर्व। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के विविध कार्यक्रम। ये है देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए यानी सपनों को पंख देने वाली संस्था के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले कुछ प्रकरणों में दादू और रुचि ने देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों की प्रेरक कहानियां जानी। लंबी यात्रा के बाद अब दोनों अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन ज्ञान की यात्रा तो अभी भी जारी है ना?
2: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक खबर है।
1: नमस्ते दादू।
2: हाँ हाँ हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गई कॉलेज से? कैसी रही आज की पढ़ाई?
1: बहुत अच्छी रही दादू, लेकिन आप कौन सी खबर को इतनी ध्यान से पढ़ रहे हैं?
2: अरे बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ भारत के विमानन क्षेत्र से जुड़ी ये एक आर्टिकल है, यही पढ़ रहा हूँ मैं।
1: विमानन क्षेत्र मतलब हवाई जहाजों की दुनिया?
2: हाँ हाँ बेटा, एक मिनट बस। हाँ बेटा, केवल हवाई जहाज नहीं बल्कि उन संस्थाओं की दुनिया जो भारत को आकाश में नई ऊंचाइयां देने का काम कर रही है।
1: दादू, जब भी मैं आकाश में उड़ते हुए विमान देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है।
2: मुझे देखकर तुम्हारे मन में कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। अखबार रख देता हूँ एक मिनट। चलो हाँ बेटा, पूछो सवाल पूछो।
1: दादू, इतना भारी विमान आखिर उड़ता कैसे है और उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी?
2: लगता है आज की कहानी फिर से शुरू होने वाली है।
1: वो तो होने वाली है दादू, अब जल्दी से बताइए ना, आज हम किस संस्थान के बारे में जानेंगे?
2: तो आज हम जानेंगे यही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की कहानी। एक ऐसी संस्था की कहानी जिसने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को नई दिशा दी।
1: वाह दादू, यानी आज की कहानी आकाश से जुड़ी है।
2: हाँ बेटा, आज हम धातुओं की दुनिया से निकलकर उड़ान की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं।
1: दादू, वो देखिए, छत पर बैठे कबूतर एक साथ उड़ गए।
2: हाँ बेटा, प्रकृति का ये दृश्य जितना सुंदर है उतना ही प्रेरणादायक भी है।
1: अच्छा दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या इंसान ने उड़ने का विचार पक्षियों को देख कर ही सीखा था?
2: काफी हद तक, हजारों वर्षों से मनुष्य पक्षियों को उड़ते देखता रहा और उसके मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा जागती रही।
1: मतलब उड़ान का सपना बहुत पुराना है।
2: बहुत पुराना बेटा। पुराने ग्रंथों, कथाओं और लोक कथाओं में उड़ने वाले रथों और आकाश यात्राओं का उल्लेख इन सब में मिलता है। लेकिन सपना देखना और उसे वास्तविकता में बदलना दो अलग बातें हैं।
1: फिर दादू, इंसान ने ये सपना भला कैसे पूरा किया?
2: इसके लिए वैज्ञानिकों, अभियंताओं और आविष्कारकों ने वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने पक्षियों की उड़ान को समझा, हवा की गति को समझा और फिर ऐसे यंत्र विकसित किए जो हवा में उड़ सके।
1: यानी विमान केवल मशीन नहीं है बल्कि सदियों पुराने एक सपने की पूर्ति है।
2: बहुत सुंदर कहा तुमने।
1: लेकिन दादू, पक्षी तो अपने पंखों से उड़ते हैं, फिर ये विमान आखिर कैसे उड़ता है?
2: ये प्रश्न दुनिया के लाखों बच्चों के मन में आता है। विमान के पंखों का आकार ऐसा बनाया जाता है कि जब वो तेज गति से आगे बढ़ता है तो हवा का दबाव उसके ऊपर और नीचे अलग अलग हो जाता है
1: और उसी से वह ऊपर उठता होगा।
2: बिल्कुल, इसे ही उड़ान का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इसे समझना आसान है जबकि इसे व्यवहार में सफल बनाना बहुत कठिन होता है बेटा।
1: वो भला क्यों?
2: वो भला ऐसे बेटा, क्योंकि विमान को केवल उड़ना नहीं होता, सुरक्षित भी उड़ना होता है ना। उसे तेज हवा, बारिश, ऊंचाई और अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
1: अब समझ में आया कि विमान बनाना इतना कठिन काम क्यों है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, क्या हर देश अपना विमान बना सकता है?
2: नहीं नहीं बेटा, विमान निर्माण दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक माना जाता है।
1: मतलब इसके लिए बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव चाहिए होगा?
2: बिल्कुल चाहिए। विमान बनाने के लिए वायु गतिकी, धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सामग्री विज्ञान और अनेक अन्य क्षेत्रों का ज्ञान एक साथ काम करता है।
1: यानी ये कई विज्ञानों का संगम होगा।
2: बिल्कुल है बेटा।
1: अच्छा दादू, जब विमान बनाना इतना कठिन है तो भारत ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे की थी?
2: बेटा स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये महसूस किया कि यदि हमें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपनी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी।
1: और इसमें विमानन तकनीक भी शामिल थी।
2: बिल्कुल, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण था। किसी भी देश की वायुसेना उसकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार होता है बेटा।
1: तो क्या इसी सोच ने ADA के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया?
2: हाँ बेटा, जैसे जैसे भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने का लक्ष्य तय किया, वैसे वैसे एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो इस विशाल कार्यक्रम का नेतृत्व कर सके।
1: और तब ADA की स्थापना हुई होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, वर्ष 1984 में बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात ADA की स्थापना की गई।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
2: भारत के हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और उसे तकनीकी दिशा प्रदान करना।
1: यानी ADA का जन्म केवल एक संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय सपने के रूप में हुआ था।
2: सही कहा बेटा, ये उस सपने का हिस्सा था जिसमें भारत अपने लिए आधुनिक लड़ाकू विमान स्वयं विकसित करना चाहता था।
1: दादू, क्या ये वही कार्यक्रम था जिससे आगे चलकर तेजस विमान बना?
2: हाँ बेटा, तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, अभियंताओं, तकनीशियनों और परीक्षण पायलटों की वर्षों की मेहनत, आत्मविश्वास, अनुसंधान, धैर्य और नवाचार की कहानी भी है।
1: दादू, जब ADA की स्थापना हुई होगी तब क्या किसी ने सोचा होगा कि एक दिन भारत अपना आधुनिक लड़ाकू विमान विकसित करेगा?
2: सपना बड़ा था बेटा, चुनौतियाँ उससे भी बड़ी थी, लेकिन संकल्प संकल्प उतना ही मजबूत था।
1: दादू, अब तो मुझे तेजस की पूरी कहानी जानना है आपसे।
2: तो तैयार हो जाओ, अब हम जानेंगे कि कागज पर बने एक विचार ने कैसे आकाश में उड़ान भरी और भारत की विमानन यात्रा का नया अध्याय लिखा।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है, लेकिन किसी लड़ाकू विमान की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है?
2: दिलचस्प प्रश्न है बेटी। किसी भी विमान की शुरुआत कारखाने से नहीं बल्कि विचार से होती है। विचार से? हाँ बेटा, सबसे पहले ये तय किया जाता है कि विमान को क्या क्या कार्य करने होंगे, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकेगा, उसकी गति कैसी होगी, वो कितना भार ले जा सकेगा और उसकी युद्ध क्षमता कैसी होगी।
1: मतलब पहले उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार की जाती होगी?
2: हाँ बेटा बिल्कुल, उसके बाद वैज्ञानिक और अभियंता मिलकर प्रारंभिक डिजाइन तैयार करते हैं।
1: दादू, क्या आज भी विमान केवल कागज पर डिजाइन किए जाते हैं?
2: नहीं बेटा, आज आधुनिक संगणक प्रणालियाँ इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: वो भला कैसे?
2: ADA ने अत्याधुनिक संगणन सुविधाएं विकसित की। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर आधारित डिजाइन, विश्लेषण और सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग किया।
1: सिमुलेशन मतलब?
2: मान लो किसी विमान को वास्तव में बनाने से पहले उसके व्यवहार को कंप्यूटर पर परखा जाए, ये देखा जाए कि उड़ान के दौरान वो कैसा प्रदर्शन करेगा।
1: अरे वाह, यानी पहले आभासी दुनिया में परीक्षण और फिर वास्तविक दुनिया में?
2: हाँ बेटा बिल्कुल।
1: दादू, लेकिन वैज्ञानिक कैसे जान पाते हैं कि हवा में विमान का व्यवहार कैसा होगा?
2: इसके लिए विंड टनल परीक्षण किए जाते हैं।
1: विंड टनल, ये क्या होते हैं?
2: ये बेटा एक विशेष सुविधा होती है जहाँ नियंत्रित गति से हवा प्रवाहित की जाती है।
1: और उसमें विमान को उड़ाया जाता है?
2: पूरे विमान को नहीं बल्कि उसके मॉडल का परीक्षण किया जाता है बेटा, ताकि ये देखा जा सके कि हवा उसके चारों ओर कैसे बह रही है।
1: सच में दादू?
2: इससे वैज्ञानिक ये समझते हैं कि डिजाइन कितना प्रभावी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है।
1: मतलब विमान की पहली परीक्षा आकाश में नहीं प्रयोगशाला में होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा।
1: दादू, ADA की सुविधाओं में एक नाम आपने बताया था, आयरन वर्ड। ये सुनकर तो किसी विज्ञान कथा की याद आती है मुझे।
2: हाँ, नाम सचमुच रोचक है बेटा।
1: तो बताइए ना, क्या है ये?
2: आयरन बर्ड वास्तव में एक परीक्षण व्यवस्था होती है बेटा। इसमें विमान की विभिन्न प्रणालियों को जमीन पर ही जोड़कर उनकी कार्य क्षमता की जांच की जाती है।
1: यानी विमान उड़ने से पहले उसकी कई प्रणालियां जमीन पर परखी जाती है?
2: हाँ बेटा, इससे संभावित समस्याओं का पता पहले ही चल जाता है।
1: मतलब सुरक्षा की शुरुआत उड़ान से पहले ही हो जाती है?
2: बिल्कुल,
1: दादू, जब इतने वर्षों की मेहनत के बाद कोई विमान पहली बार उड़ान भरता होगा तब कैसा माहौल होता होगा?
2: कल्पना करो बेटा, वर्षों तक वैज्ञानिकों ने काम किया, अभियंताओं ने डिजाइन तैयार किए, तकनीशियनों ने अनगिनत घंटे लगाए, परीक्षण किए गए,
1: और फिर वो दिन आता है
2: जब विमान पहली बार रनवे पर दौड़ता है,
1: और उस समय सबकी निगाहें उसी पर होती होंगी।
2: बिल्कुल, क्योंकि उस क्षण में केवल एक मशीन नहीं बल्कि वर्षों का परिश्रम और आशाएं उड़ान भर रही होती हैं बेटा।
1: दादू, मुझे सुनकर कितना रोमांच हो रहा है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, एक विमान का नाम तेजस भी तो था, वो भला कैसे रखा गया?
2: तेजस संस्कृत का शब्द है बेटा, जिसका अर्थ है तेज, ऊर्जा, प्रकाश और शक्ति।
1: तो ये नाम वास्तव में विमान की भावना को दर्शाता है।
2: हाँ, और ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि भारतीय विज्ञान और आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया है।
1: अब समझ में आ रहा है कि तेजस की चर्चा होते ही लोगों की आंखों में गर्व क्यों दिखाई देता है।
2: क्योंकि ये उस क्षमता का प्रतीक है जिसे भारत ने अपने वैज्ञानिकों और अभियंताओं के बल पर विकसित किया है।
1: अच्छा दादू, क्या एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित है?
2: नहीं नहीं बेटा, यही तो इस कहानी का अगला और भी रोचक अध्याय है।
1: मतलब एडीए भविष्य के विमानों पर भी काम कर रही है?
2: तेजस के बाद तेजस MK2 नौसेना के लिए उन्नत लड़ाकू विमान और भविष्य की अत्याधुनिक विमान परियोजनाओं पर भी लगातार कार्य चल रहा है।
1: यानी एडीए केवल वर्तमान नहीं बल्कि भारत के भविष्य के आकाश की भी तैयारी कर रहा है।
2: हाँ बेटा, और हम उसी भविष्य की कहानी जानेंगे।
1: दादू, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तो उसकी चमक और गति दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाली वैज्ञानिक दुनिया हमें दिखाई नहीं देती।
2: हाँ बेटा, किसी भी आधुनिक विमान के पीछे हजारों गणनाएं, लाखों आंकड़े छिपे होते हैं।
1: क्या एडीए में भी ऐसी सुविधाएं हैं?
2: हाँ हाँ, एडीए ने समय के साथ अत्याधुनिक संगणन केंद्र विकसित किए हैं, जहाँ जटिल डिजाइनों का विश्लेषण किया जाता है।
1: मतलब वैज्ञानिक कंप्यूटरों की सहायता से विमान के व्यवहार का अध्ययन करते हैं।
2: हाँ, पहले जिन गणनाओं में महीनों लग जाते थे आज उन्हें शक्तिशाली कंप्यूटर बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं।
1: यानी आधुनिक विमान निर्माण में कंप्यूटर भी उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे इंजीनियर्स।
2: सही कहा बेटा, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं।
1: दादू, आजकल वर्चुअल रियलिटी की बहुत चर्चा होती है, क्या विमान निर्माण में भी इसका उपयोग होता है?
2: हाँ हाँ बेटा, वर्चुअल रियलिटी वैज्ञानिकों और अभियंताओं को विमान के विभिन्न भागों को त्रिआयामी रूप में देखने और समझने में सहायता करती है।
1: यानी विमान बनने से पहले ही उसके भीतर घूमकर देखा जा सकता है।
2: हाँ हाँ, इससे डिजाइन संबंधी समस्याओं को पहले से ही पहचानना आसान हो जाता है।
1: तो ये समय और संसाधन दोनों की बचत करता होगा।
2: हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: दादू,
2: हाँ,
1: अब मुझे लग रहा है कि विमान निर्माण केवल धातुओं और इंजनों की कहानी नहीं है।
2: आधुनिक विमानन में सॉफ्टवेयर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा।
1: वो कैसे?
2: एडीए ने विभिन्न प्रकार के विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जिनका उपयोग डिजाइन, विश्लेषण, निर्माण, उड़ान अनुकरण और परीक्षणों में किया जाता है।
1: यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रेखाएं आगे चलकर वास्तविक विमान का रूप ले लेती हैं।
2: हाँ, कई बार एक छोटी सी गणना भी पूरे विमान के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है बेटा।
1: दादू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि विमान निर्माण में गणित और विज्ञान कितना जरूरी है। सही कहा था आपने कि एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित नहीं है।
2: हाँ बेटा, विज्ञान की यात्रा कभी रुकती नहीं है।
1: तो अब आगे क्या?
2: आगे बेटा, तेजस के अनुभव और सीख के आधार पर और अधिक उन्नत विमान विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है।
1: तो क्या ये तेजस का नया रूप लेगा?
2: इसे तुम अगली पीढ़ी की प्रगति कह सकती हो बेटा। हर नई परियोजना पिछली उपलब्धियों पर आधारित होती है।
1: यानी हर सफलता अगले लक्ष्य का आधार बन जाती है।
2: एकदम सही।
1: दादू, क्या भविष्य में विमानों की दुनिया और भी बदल जाएगी?
2: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले समय में विमान अधिक उन्नत, अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से और भी परिष्कृत होंगे।
1: तो क्या अब हमारा भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है?
2: हाँ, इसी उद्देश्य से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई परियोजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है।
1: मतलब एडीए केवल आज की जरूरतों के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी तैयारी कर रही है।
2: हाँ बेटा, यही किसी दूरदर्शी संस्था की पहचान होती है।
1: दादू, आज की कहानी सुनकर मेरे मन में एक नया विचार आया है।
2: वो क्या बेटा?
1: वो ये कि जब मैं अगली बार आकाश में कोई विमान देखूंगी ना, तो केवल उसकी गति नहीं देखूंगी, मैं उसके पीछे छिपे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को भी याद करूंगी।
2: हाँ बेटा, और यही इस कहानी का उद्देश्य है।
1: दादू, लोग अक्सर उड़ते हुए विमानों को देखते हैं, लेकिन उसे उड़ाने वाले ज्ञान को नहीं देखते।
2: हाँ, बिल्कुल सही बात पकड़ी। लगता है कि आज की कहानी ने तुम्हें फिर एक नई सीख दे दी है।
1: दादू, एक बात बताइए ना।
2: हाँ।
1: आपने BEML, मिधानी और कई अन्य संस्थानों की कहानियाँ सुनाई है मुझे, लेकिन विमान बनाने की बात आते ही हर कोई इसे बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों मानता है? क्या ये कार या रेलगाड़ी बनाने से भी अधिक कठिन है?
2: बहुत कठिन है बेटा। सोचो, रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है और कार सड़क पर, लेकिन विमान को हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ना होता है।
1: और वहाँ तो कोई सड़क भी नहीं होती।
2: हाँ, विमान को अपने संतुलन, दिशा और गति का नियंत्रण स्वयं बनाए रखना पड़ता है।
1: मतलब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है दादू।
2: हाँ बेटा, यही कारण है कि विमान निर्माण में

0: रहता है।
1: तो तेजस में भी ऐसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया?
0: हाँ बेटा, यही कारण है कि तेजस भारत की तकनीक क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।
1: दादू, लड़ाकू विमान को मजबूत भी होना चाहिए और तेज भी, तो दोनों बातें एक साथ कैसे संभव होती हैं?
0: यही तो अभियंताओं की सबसे बड़ी चुनौती होती है।
1: कैसे?
0: यदि विमान बहुत भारी होगा तो उसकी गति और दक्षता प्रभावित होगी, यदि बहुत हल्का होगा तो मजबूती कम हो सकती है।
1: तो फिर समाधान क्या है?
0: देखो बेटा, विशेष सामग्रियों और उन्नत डिजाइन का उपयोग।
1: मतलब यहाँ मिधानी जैसी संस्थाओं का योगदान भी जुड़ जाता होगा?
0: हाँ, देखो कैसे देश की विभिन्न संस्थाएं मिलकर एक बड़े लक्ष्य को पूरा करती हैं।
1: दादू, जब कोई नया विमान पहली बार उड़ता है तब उसे कौन उड़ाता है?
0: परीक्षण पायलट।
1: क्या ये सामान्य उड़ान से अलग होता है?
0: हाँ बेटा, परीक्षण उड़ानों में विमान के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पायलटों को अत्यंत प्रशिक्षित और अनुभवी होना पड़ता है।
1: यानी वे केवल पायलट नहीं बल्कि उड़ान के वैज्ञानिक भी होते हैं।
0: ये सही कहा बेटा तुमने।
1: और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुधार किए जाते होंगे।
0: हाँ बेटा, विमान विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
1: और ADA ने इन सब को दिशा दी है।
0: बिल्कुल दी है।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस के बाद भी ADA की यात्रा जारी है, तो अब उसका अगला बड़ा सपना क्या है?
0: देखो बेटा, हर उपलब्धि एक नए लक्ष्य का मार्ग खोलती है। आज ADA भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और अधिक उन्नत विमानों की दिशा में कार्य कर रही है।
1: क्या उनमें से कोई विशेष परियोजना है?
0: हाँ हाँ, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, अर्थात AMCA।
1: वाह, नाम सुनकर ही लग रहा है दादू कि ये कोई अत्याधुनिक विमान होगा।
0: इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक उन्नत लड़ाकू विमान विकसित करना है बेटा।
1: मतलब विज्ञान और तकनीक की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि।
0: हाँ, विमानन विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए भविष्य के विमानों में नई सामग्रियां, आधुनिक प्रणालियां और उन्नत क्षमताएं शामिल की जाती हैं।
1: तो AMCA केवल एक विमान नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है।
0: हाँ बेटा, ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें देश केवल वर्तमान की नहीं आने वाले दशकों की आवश्यकताओं की भी तैयारी करता है।
1: दादू, अब तक हम वायुसेना के विमानों की बात कर रहे थे, लेकिन नौसेना का क्या?
0: नौसेना की आवश्यकताएं अलग होती है बेटा।
1: कैसे दादू?
0: देखो, समुद्र में विमान वाहक पोत पर काम करना सामान्य हवाई अड्डे पर काम करने से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।
1: क्यों?
0: क्योंकि जहाज लगातार गतिशील रहता है, समुद्री हवाएं, सीमित स्थान और विशेष परिचालन आवश्यकताएं होती हैं।
1: तो दादू, नौसेना के लिए अलग प्रकार के विमान चाहिए होते?
0: हाँ बेटा, इसी दिशा में TEDBF अर्थात ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जैसी अवधारणाओं पर कार्य किया जा रहा है।
1: मतलब ऐसा विमान जो समुद्र में तैनात विमान वाहक पोत से उड़ान भर सके?
0: हाँ, ये दर्शाता है कि भारत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: दादू, ADA की स्थापना बेंगलुरु में ही क्यों की गई?
0: क्योंकि बेंगलुरु लंबे समय से भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विमानन गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
1: मतलब वहाँ केवल एक संस्था नहीं है?
0: हाँ, वहाँ अनेक वैज्ञानिक संस्थान है बेटा, अनुसंधान केंद्र हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं और विमानन से जुड़े संगठन कार्य करते हैं।
1: यानी अलग अलग विशेषज्ञ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
0: हाँ, इसे ही कभी कभी वैज्ञानिक या तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।
1: जैसे एक बगीचे में अलग अलग पौधे मिलकर पूरा वातावरण बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बेटा, ये उदाहरण बहुत सुंदर है।
1: दादू, तो बेंगलुरु केवल एक शहर नहीं बल्कि विचारों और नवाचारों का भी संगम है।
0: हाँ बेटा।
1: दादू, आपने बताया था कि ADA का संबंध रक्षा अनुसंधान से भी है।
0: ADA रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO से जुड़ी हुई है।
1: तो क्या दोनों मिलकर काम करते हैं?
0: हाँ हाँ बेटा, किसी भी बड़ी परियोजना में अनेक संस्थाएं अपना अपना योगदान देती हैं।
1: मतलब कोई संस्था डिजाइन में योगदान देती है, कोई परीक्षण में और कोई अनुसंधान में।
0: हाँ, आधुनिक तकनीक इतनी जटिल होती है कि इसमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है बच्चे।
1: यानी सफलता का श्रेय केवल एक संस्था को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता होगा दादू।
0: हाँ बेटा, पूरी टीम को जाता है।
1: ये कार्यक्रम सुनने वाले बहुत से बच्चे और युवा भी होंगे जो हमें सुन रहे होंगे दादू।
0: होंगे ही।
1: अच्छा ये बताइए कि यदि कोई छात्र विमान निर्माण या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, उसे जानना है, समझना है, तो सबसे पहले जिज्ञासु बनिए।
1: जिज्ञासु?
0: हर वैज्ञानिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है।
1: जैसे मेरे प्रश्न?
0: हाँ बेटा, विज्ञान में प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाता है।
1: और फिर?
0: गणित विज्ञान, अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मेहनत करनी होती है।
1: यानी आज का जिज्ञासु विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक बन सकता है?
0: क्यों नहीं बन सकता। देश की हर बड़ी उपलब्धि कभी किसी विद्यार्थी के सपने के रूप में ही शुरू हुई थी बेटा।
1: तो हो सकता है दादू कि आज ये कार्यक्रम सुन रहा कोई बच्चा भविष्य में किसी नए विमान का डिजाइन तैयार करे?
0: बिल्कुल तैयार करेगा बेटा, और शायद वो भारत की अगली बड़ी तकनीकी उपलब्धि का हिस्सा भी बने।
1: दादू, अब मैं एक बार फिर वही प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मैंने मिधानी के बारे में पूछा था।
0: पूछो पूछो बेटा पूछो।
1: वो ये दादू कि यदि एडीए जैसी संस्था ना होती तो क्या फर्क पड़ता?
0: बहुत बड़ा फर्क पड़ता बेटा।
1: कैसे?
0: कल्पना करो, यदि किसी देश के पास अपनी विमानन डिजाइन क्षमता ना हो तो उसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए बाहरी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
1: मतलब केवल विमान खरीदना ही पर्याप्त नहीं होता?
0: नहीं नहीं बेटा, तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान क्षमता और डिजाइन कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।
1: और एडीए ने भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ाया?
0: हाँ बेटा, इसने केवल परियोजनाओं का नेतृत्व नहीं किया बल्कि देश में विमानन अनुसंधान और विकास की क्षमता को भी बहुत मजबूत किया है।
1: यानी ये संस्था केवल विमान नहीं बनाती बल्कि ज्ञान भी विकसित करती है।
0: हाँ, और यही किसी भी विकसित राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है।
1: दादू, आज मैंने जाना कि उड़ान केवल पंखों की कहानी नहीं होती।
0: तो फिर किसकी कहानी होती है?
1: दादू, ये विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, साहस और सामूहिक प्रयास की कहानी होती है।
0: लगता है आज की चर्चा का सार तुम्हें मिल गया बच्चे।
1: हाँ दादाजी, और एडीए की कहानी बताती है कि जब कोई देश बड़े बड़े सपने देखने का साहस करता है ना, तो वे सपने एक दिन आकाश में उड़ान भी भरते हैं।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही भारत की वैज्ञानिक यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है।
1: प्रिय श्रोताओं, आज के संक में हमने जाना कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए केवल लड़ाकू विमानों के विकास का संस्थान नहीं है बल्कि भारत की वैज्ञानिक दूरदृष्टि, आत्मनिर्भरता और नवाचार का एक सशक्त प्रतीक है। तेजस से लेकर AMCA और TEDBF जैसी भविष्य की परियोजनाओं तक एडीए ने भारत को स्वदेशी विमान डिजाइन और विकास की दिशा में नई पहचान दी है।
0: और यदि आप भी विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी या अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं तो अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत के किसी नए विमान, किसी नई तकनीक या किसी नए वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे आपका भी योगदान हो। इसी प्रेरक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: अगले अंक में हम जानेंगे कि कैसे भारत के सैन्य उपग्रह धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर रहकर हमारी सीमाओं की निगरानी करते हैं, सुरक्षित संचार उपलब्ध कराते हैं और देश की सुरक्षा को नई शक्ति प्रदान करते हैं। श्रोताओं, सुनते रहिए रेडियो नाटक देश के संस्थान। आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
0: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नीमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

देश के संस्थान। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उन जन नायकों से मिलाएं जिन्होंने अपने पौरुष और पराक्रम से समय की धार को बदल दिया और इतिहास में दर्ज करवा लिया अपना नाम स्वर्णाक्षरों में। आइए, इसी तारतम्य में आज बात करते हैं स्वामी कुमारनंद जी की, जिनका जन्म बर्मा के रंगून शहर में हुआ था और 29 जनवरी 1971 को दिल्ली में इनका निधन हुआ था।
2: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ में जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की और संपन्नता को त्याग कर अपना सर्वस्व कुर्बान कर जन जन में चेतना का शंख फूंका, उन महान देशभक्तों की श्रृंखला में स्वामी कुमार नंद का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। रंगून शहर के कमिश्नर एन के नाग के घर जन्मे स्वामी कुमार नंद का असली नाम विजेंद्र कुमार नाग था। इनके परिवार का संबंध श्री रविन्द्रनाथ टैगोर एवं प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त से था। प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु स्वामी जी के मामा लगते थे।
1: स्वामी कुमार नंद जी की प्रारंभिक शिक्षा बर्मा में हुई और उच्च शिक्षा ढाका और कलकत्ता में संपन्न हुई। नेशनल कॉलेज से बीए करने के बाद एक अनहोनी घटना घटी। तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट एलन पर सन 1907 में किसी क्रांतिकारी ने गवालन स्टेशन पर गोली चला दी थी। यद्यपि इस कांड का कभी खुलासा नहीं हो सका, लेकिन जो लोग उसमें शक के घेरे में आए थे उनमें स्वामी जी का नाम भी था। कलकत्ता के जिला मजिस्ट्रेट जो एक अंग्रेज थे, उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वामी जी के पिता से बात की और स्वामी जी को क्रांतिकारियों के चंगुल से निकालने के लिए सरकार के खर्च पर ICS की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव रखा गया।
2: स्वामी कुमार नंद जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आपने तो सारा जीवन अंग्रेजों की गुलामी करने में बिता दिया, हमें गुलामी नहीं करनी है। भारत अंग्रेजों की दास्ता में बंधा है। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। जब तक भारत गुलाम है मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। आजन्म कुंवारा रहकर देश सेवा में जीवन अर्पण कर दूंगा। जब ये बात रवींद्रनाथ टैगोर जी को मालूम पड़ी तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्हें बंगाल के क्रांतिकारियों के त्याग और निष्ठा पर गर्व हुआ।

0: स्वामी कुमारनंद जब अपने पिताजी के साथ पुरी गए, तब स्वामी सत्यानंद नाम के सन्यासी से आपकी भेंट हुई। वे ही स्वामी कुमारनंद के प्रथम गुरु सिद्ध हुए। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने नौजवानों को देशभक्ति से प्रेरित किया। उसका भी स्वामी कुमारनंद पे अत्यधिक प्रभाव पड़ा। स्वामी कुमारनंद अनेक भाषाओं के विद्वान थे। चीनी भाषा का भी उनको ज्ञान था। सन 1910 के नवंबर में वे चीन गए। चीनी क्रांति के समय वे चीन में थे और जब भारत लौट कर आए तो कलकत्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल तक कैद में रखकर यातनाएं दी गईं। फिर वे रिहा हुए।
1: स्वामी जी का जीवन कभी भी खतरों से खाली नहीं रहा। ढाका के एक मकान पर पुलिस ने छापा मारा। वहां पिस्तौल, कारतूस व डायनामाइट और बम बनाने का सामान पकड़ा गया। 4 नौजवान गिरफ्तार हो गए और स्वामी जी वहां से भागकर कलकत्ता आ गए। चित्तरंजन दास की सलाह से उन्होंने कलकत्ता छोड़ा और सन्यासी का वेश बदलकर कन्याकुमारी आ गए। तभी से उन्होंने अपना नाम द्विजेंद्र कुमार से बदलकर स्वामी कुमारनंद रख लिया। सन 1920 में चित्तरंजन दास के आग्रह पर ही स्वामी जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वैसे तो स्वामी कुमारनंद जी का राजनैतिक जीवन सन 1907 से ही आरंभ हो गया था। कलकत्ते में उनका परिचय पुरानी कृष्ण मिल ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी से हुआ। साथ में खरवा के राव गोपाल सिंह भी थे। इतिहास साक्षी है कि राव गोपाल दास सिंह खरवा विजय सिंह पथिक के महान सहयोगी रहे और सेठ दामोदर दास राठी ने अनेक क्रांतिकारियों की भरपूर सहायता की।
0: स्वामी कुमारनंद साम्यवादी विचारों के होते हुए भी कांग्रेस के साथ बने रहे। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब सन 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के समय बाबा सोहन सिंह जोश और कॉमरेड मुजफ्फर अहमद ने कांग्रेस से अलग होने का प्रस्ताव रखा तो स्वामी कुमारनंद ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि अभी कांग्रेस छोड़ने का समय नहीं है। काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में स्वामी जी ने बटुकेश्वर दत्त को जिस प्रकार बचाकर भगाया और पुलिस के अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट से बुरी तरह भिड़ पड़े, ये उनके साहसिक कार्य का एक जीता जागता उदाहरण है।

0: वैसे तो स्वामी कुमारानंद के विचार क्रांतिकारी व साम्यवादी थे और ब्यावर के मजदूर आंदोलन के प्राण माने जाते थे। फिर भी उनका व्यवहार कांग्रेस के नेताओं और विशेषकर रियासतों के नेताओं के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण था। अधिकतर नेता स्वामी जी के रियासतों में जन आंदोलन चलाने पर विचार विमर्श करते और कभी कभी स्वामी जी के साथ ही ठहरते।
1: क्रांतिकारी विचारों के होने के कारण और अंग्रेजों के कट्टर विरोधी होने से रात्रि में वे जब नींद में होते तो कई बार वे भयंकर रूप से दांत किटकिटाते हुए गुस्से में बड़बड़ाते, इन अंग्रेजों को मार डालो, भारत से भगा दो। तब नींद से जागने पर पूछते तो कहते, क्या हुआ, मैं तो गहरी नींद में सोया था। उनका आत्मबल बहुत तेज था और वे साहसी भी थे। उनके अनुसार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी कभी मीलों लंबी दौड़ लगाकर भाग निकलते, कभी जंगलों में और खंडहरों में भटकते रहते। न खाने पीने की सुध, न रुकने का ठिकाना, मगर क्रांति कार्य की मशाल न बुझे, यही कोशिश रहती थी। स्वामी कुमारानंद जीवन भर कुंवारे रहे, वे सादा जीवन उच्च आदर्श के धनी थे।
0: स्वामी जी 1962 में विधानसभा के सदस्य रहे और राजपूताना मध्य भारत ट्रेड यूनियन के वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे। स्वामी कुमारानंद का जीवन त्याग, तपस्या व आजादी के आंदोलनों में जेलों की यातनाएं सहने में बीता। उनका आदर प्रत्येक विचारधारा के राजनेता व आम नागरिक करते थे। वे सदा उनके आगे नतमस्तक रहते थे। 29 दिसंबर 1971 के दिन नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में इस महान क्रांतिकारी देशभक्त का पेट की बीमारी से निधन हो गया। स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा के निधन पर पंडित सुंदरलाल ने कहा था कि अजेय स्वातंत्र योद्धा, एक महान तपस्वी, त्याग की मूर्ति व साहसिक देशभक्त के देहावसान से भारत को अपार क्षति हुई है। ऐसे महान देशभक्त को हमारा सादर नमन।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की। गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जन गर्जे में से।
3: अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग आप सुन सकते हैं विविध भारती के भोपाल इंदौर और जबलपुर केंद्रों से हर रविवार सुबह 9:30 बजे और मध्य प्रदेश स्थित आकाशवाणी के अन्य केंद्रों से हर गुरुवार सुबह 8:30 बजे से।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। श्रोताओं, पिछले भाग में यानी चतुर्थ सर्ग के अंतिम भाग में हमने कर्ण की दानवीरता की पराकाष्ठा को महसूस किया। जीवन कितने ही संघर्षों से क्यों ना घिरा हुआ हो, लेकिन मनुष्य को अपनी नैतिकता और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। दिनकर जी का ये रथ सिर्फ कर्ण के जीवन की महानता का रथ नहीं हांक रहा, यह हमें ऐसा मनुष्य बनने की ओर प्रेरित करता है जो कभी कितनी भी विषम परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, मनुष्यत्व और मानवता के लिए अपना हृदय विशाल रखे। दिनकर जी का विश्वास था कि संसार को केवल शस्त्र नहीं बदलते, विचार भी बदलते हैं। इसलिए वे कलम को भी उतना ही शक्तिशाली मानते थे जितनी तलवार। आइए उनके इसी ओजस्वी विश्वास को उनकी अमर पंक्तियों में सुनते हैं।
2: दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार? अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे? एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हर दम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार?
1: मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि कर्ण के इस प्रसंग के बाद हमने राष्ट्रकवि दिनकर जी की कलम या तलवार जैसी कविता क्यों चुनी। इसका कारण अत्यंत सरल है। कर्ण ने अपने जीवन से जो आदर्श स्थापित किए, दिनकर जी ने उन्हीं आदर्शों को अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। कर्ण ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। दिनकर जी कहते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके जागृत विचार हैं। एक ने जीवन से संदेश दिया, दूसरे ने उस संदेश को शब्दों का अमर रूप दिया। यही कारण है कि ये कविता इस प्रसंग के बाद और भी सार्थक होती है। कर्ण ने छल के सामने भी धर्म नहीं छोड़ा, और दिनकर जी ने अन्याय के सामने सत्य लिखना नहीं छोड़ा। कर्ण के हाथ में धनुष था, दिनकर जी के हाथ में कलम, किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही था, मनुष्य के भीतर साहस, स्वाभिमान और धर्म की ज्योति जलाए रखना। इसलिए यह कविता केवल एक रचना नहीं, बल्कि कर्ण के व्यक्तित्व को दिनकर जी की लेखनी से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है।
2: आइए तो अब चलते हैं उस सर्ग की ओर जहां रण तैयार है, जीवन का, स्वार्थों का, प्रेम का, ममता का और प्रतिज्ञाओं का। चलते हैं रश्मिरथी के पंचम सर्ग की ओर। माँ से आरंभ हुआ यह सर्ग, ममता का अमर विधान, आंसू बनकर बोल उठी है वर्षों से मौन जुबान। दिनकर ने शब्द नहीं लिखे, धड़कनों का इतिहास लिखा, पंचम सर्ग में माँ के मन का सबसे गहरा विश्वास लिखा।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

स्त्री के अधिकारों से आगे बढ़कर उसके निर्णय, इच्छाओं और स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करने की सामाजिक सोच कितनी बदली है। बदलते परिवेश, रिश्तों और संस्कारों के बीच स्त्री की भूमिका किस तरह नए रूप ले रही है, इन्हीं सवालों पर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की साहित्यिक श्रृंखला अफसाने का अफसाना में विमर्श हुआ। संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी का विषय स्त्री विमर्श और संस्कारों के बदलते हुए कथानक रहा। संगोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कहा कि स्त्री विमर्श केवल कानून अधिकारों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि ये इस बात से भी जुड़ा है कि समाज स्त्रीत्व को किस नजरिए से देखता है। संस्कारों के नाम पर तय की गई सामाजिक सीमाओं ने लंबे समय तक स्त्री की इच्छाओं और फैसलों को नियंत्रित किया है। उन्होंने उमराव जान अदा का उदाहरण देते हुए कहा कि समाज स्त्री की प्रतिभा की प्रशंसा तो करता है, लेकिन उसे गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करने में संकोच करता है। उर्दू अकादमी की निदेशक नुसरत मेहंदी ने कहा कि कथा साहित्य अपने समय और समाज के बदलावों को संवेदनशीलता के साथ दर्ज करता है। आज स्त्री की सामाजिक भूमिका, पारिवारिक रिश्तों और जीवन मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में साहित्य इन परिवर्तनों को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। अलीगढ़ के साहित्यकार एवं आलोचक सिराज अजमली ने कहा कि पश्चिमी नारीवाद आंदोलनों को भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के साथ समझना जरूरी है। दिल्ली की वरिष्ठ कथाकार निगार अजमी ने कहा कि पिछले दो दशकों में स्त्री अभिव्यक्ति बदली है। बेबसी की जगह अब साहस, स्वाभिमान और आत्मविश्वास ने ली है।

रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप सभागार में आयोजित 5 दिवसीय एकता नाट्य समारोह की शुरुआत हास्य व्यंग्य से भरपूर नाटक जुकाम जारी है इसके मंचन से हुई। समारोह के पहले दिन शनिवार को वरिष्ठ रंगकर्मियों असीम कुमार दुबे और भानु प्रकाश तिवारी को रंगमंच के क्षेत्र में 42 वर्षों के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। केपी सक्सेना द्वारा करीब 50 वर्ष पहले लिखे गए इस हास्य नाटक का निर्देशन समर्पित दुबे ने किया। करीब 40 मिनट के नाटक को 1 महीने के रिहर्सल में तैयार किया गया। इससे पहले करीब 4 वर्ष पूर्व भी इसका मंचन किया जा चुका है। नाटक की कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के इर्द गिर्द बुनी हुई है। हास्य व्यंग्य नाटक जुकाम जारी है भारतीय समाज की उस आदत पर व्यंग्य करता है जिसमें मामूली बीमारी पर डॉक्टर, हकीम, वैद्य और घरेलू नुस्खे बताने वालों की भीड़ लग जाती है। रवि की पत्नी सुशी को जुकाम होता है और बीमारी से ज्यादा उसके इलाज पर चर्चा शुरू हो जाती है। सुशी की डॉक्टर सहेली दवा की सलाह देती हैं तो यूनानी हकीम जनाजा खां अपना नुस्खा लेकर पहुंचते हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञ पंडित दुखघोटन शास्त्री भी जड़ी बूटियों की सूची थमा देते हैं। अलग अलग सलाहों से सुशी परेशान रहती है जबकि रवि घटनाक्रम का आनंद लेता है। हास्य को सुशी के मायके से आए नौकर बहादुर का किरदार और बढ़ाता है। आखिरकार सुशी ठीक हो जाती है लेकिन उसकी माँ के आने की खबर सुनकर रवि को जुकाम हो जाता है। छींकने का सिलसिला बहादुर तक पहुंचता है और जुकाम पूरे घर की परेशानी बन जाता है।

विकल्प देने पर फोकस कर रहे हैं, जिनसे बच्चों का टाइम भी पास हो और दिमाग की एक्टिविटी भी बनी रहे। इसी वजह से ऐसे क्रिएटिव टॉयज की डिमांड बढ़ रही है, जिसमें बच्चे सिर्फ खेलते नहीं, वो खुद कुछ बनाते हैं, वो सोचते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस तरह के बहुत से टॉय बाजारों में हैं जो बच्चों के काम आ रहे हैं, और माता पिता ऐसे खिलौने बच्चों को गिफ्ट कर रहे हैं। इनमें बच्चों को नए स्ट्रक्चर बनाने, पैटर्न्स बदलने और अलग अलग तरीके आजमाने का मौका मिलता है। और श्रोताओं, चलते चलते आपको हम बताएं कि क्या कुछ खास गतिविधि आज होने वाली है शहर में। म्यूजिकल ईव गजल आपकी हमारी, इसका आप आनंद ले सकते हैं आज शाम 6 बजे ख्याल ऑडिटोरियम में। उन्स 2 में अभिषेक भारथारे की आवाज़ में गज़लों की महफिल सजेगी। गज़ल आपकी हमारी थीम पर आधारित कार्यक्रम में शायरी, संगीत और लाइव गायकी का खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा, जो संगीत प्रेमियों के लिए खास रहेगा। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच मुक्तधारा RNTU में आप पहुंच सकते हैं। टैगोर नाट्य महोत्सव में रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर आधारित गीतांजलि और एक रात अंतिम युग जैसी प्रस्तुतियां मंचित होंगी। टैगोर के सांस्कृतिक योगदान पर विचार विमर्श भी होगा। केरल के पारंपरिक पर्व ओणम का उत्सव विधि विधान और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया जाएगा। भद्रकाली मंदिर, सर्व कावू पुनीत वन और चुंडन वल्लम परिसर में विशेष पूजा अर्चना के साथ विविध सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। स्थान आपको बता दें, मानव संग्रहालय। समय दिन में 3 बजे। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। श्रोताओं, पिछले भाग में यानी चतुर्थ सर्ग के अंतिम भाग में हमने कर्ण की दानवीरता की पराकाष्ठा को महसूस किया। जीवन कितने ही संघर्षों से क्यों ना घिरा हुआ हो, लेकिन मनुष्य को अपनी नैतिकता और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। दिनकर जी का यह रथ सिर्फ कर्ण के जीवन की महानता का रथ नहीं हांक रहा, यह हमें ऐसा मनुष्य बनने की ओर प्रेरित करता है जो कभी कितनी भी विषम परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, मनुष्यत्व और मानवता के लिए अपना हृदय विशाल रखे। दिनकर जी का विश्वास था कि संसार को केवल शस्त्र नहीं बदलते, विचार भी बदलते हैं। इसलिए वे कलम को भी उतना ही शक्तिशाली मानते थे जितनी तलवार। आइए उनके इसी ओजस्वी विश्वास को उनकी अमर पंक्तियों में सुनते हैं।
2: दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार? अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे? एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हर दम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार?
1: मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि कर्ण के इस प्रसंग के बाद हमने राष्ट्रकवि दिनकर जी की कलम या तलवार जैसी कविता क्यों चुनी। इसका कारण अत्यंत सरल है। कर्ण ने अपने जीवन से जो आदर्श स्थापित किए, दिनकर जी ने उन्हीं आदर्शों को अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। कर्ण ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। दिनकर जी कहते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके जागृत विचार हैं। एक ने जीवन से संदेश दिया, दूसरे ने उस संदेश को शब्दों का अमर रूप दिया। यही कारण है कि ये कविता इस प्रसंग के बाद और भी सार्थक होती है। कर्ण ने छल के सामने भी धर्म नहीं छोड़ा और दिनकर जी ने अन्याय के सामने सत्य लिखना नहीं छोड़ा। कर्ण के हाथ में धनुष था, दिनकर जी के हाथ में कलम, किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही था, मनुष्य के भीतर साहस, स्वाभिमान और धर्म की ज्योति जलाए रखना। इसलिए यह कविता केवल एक रचना नहीं बल्कि कर्ण के व्यक्तित्व को दिनकर जी की लेखनी से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है।
2: आइए तो अब चलते हैं उस सर्ग की ओर जहां रण तैयार है, जीवन का, स्वार्थों का, प्रेम का, ममता का और प्रतिज्ञाओं का। चलते हैं रश्मि रथी के पंचम सर्ग की ओर। माँ से आरंभ हुआ यह सर्ग, ममता का अमर विधान, आंसू बनकर बोल उठी है वर्षों से मौन जुबान। दिनकर ने शब्द नहीं लिखे, धड़कनों का इतिहास लिखा, पंचम सर्ग में माँ के मन का सबसे गहरा विश्वास लिखा।
1: माँ शब्द से आरंभ हुआ यह करुणा का दिव्य प्रसंग, जहां वात्सल्य स्वयं रचता है नियति का अमिट सत्संग। दिनकर की लेखनी में आज जननी का तप जाग उठा, युग युग से संचित मात्र हृदय का मौन विलाप बोल उठा, मौन विलाप बोल उठा। मां, ये केवल एक संबोधन नहीं, सृष्टि का सबसे पहला संगीत है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो संसार की भाषा नहीं जानता, किंतु मां की धड़कनों की भाषा पहचानता है। उसकी आंखें खुलने से पहले वो मां की ममता में संसार का पहला स्पर्श पा चुका होता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर प्रत्येक घर में स्वयं नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने मां की रचना की। मां केवल जीवन नहीं देती, वो जीवन को अर्थ देती है। इसके आंचल में सुरक्षा है, उसकी आंखों में आशीर्वाद है और उसके मौन में वो करुणा है जिसे शब्द कभी पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। किंतु रश्मि रथी के कर्ण के जीवन में मां एक ऐसी अधूरी कथा है जिसका प्रत्येक पृष्ठ आंसुओं से लिखा गया है। कर्ण ने जन्म तो मां की कोख से लिया, पर बचपन उसकी गोद में नहीं बीता। उसने मां का दूध नहीं मांगा, मां की उंगली पकड़कर चलना नहीं सीखा, मां की लोरी सुनकर सोना नहीं जाना। उसके जीवन में मां एक स्मृति नहीं, एक रिक्तता थी, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उसे वर्षों तक नहीं मिला। संसार उसे सूत पुत्र कहकर पुकारता रहा, पर उसके भीतर कहीं एक बालक हर दिन ये पूछता रहा, मेरी मां कौन है? ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है, क्योंकि मनुष्य अपने नाम के बिना जी सकता है, अपने वैभव के बिना जी सकता है, पर अपनी मां की पहचान के बिना उसका अस्तित्व भीतर से कहीं अधूरा रह जाता है। मानो कर्ण कह रहे हैं,
3: हे मौन बहती गंगे और हे मेरे तात सूर्य देव, तनिक ठहरो और देखो, आज इस तट पर इतिहास का सबसे बड़ा कौतुक रचा गया है, जिसे संसार ने केवल सूत पुत्र कहकर पुकारा, जिसके माथे पर हर कदम पर धुतकार का तिलक लगाया गया। आज वही कर्ण स्वयं अपने ही वजूद के सामने एक अनसुलझा प्रश्न बनकर खड़ा है, एक अनसुलझा प्रश्न बनकर खड़ा है।
2: ममता और धर्म जीवन के दो ऐसे निष्ठुर किनारे जो जब आमने सामने आ खड़े हों तो बड़े बड़े पाषाण हृदय भी भीतर तक कांप उठते हैं। आज नियति के इसी जलते हुए दोराहे पर विकल, व्याकुल और असहाय सी खड़ी है मां कुंती। वे आज केवल पांडवों की राजमाता नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी विवश जननी हैं जिनके सीने में आंसुओं का एक समंदर और बरसों से दबा एक मौन तूफान आज बांध तोड़कर उमड़ रहा है। उनका अंतस अपने ही बोए बबूल के कांटों से लहूलुहान है और आंखें उस आदि पुत्र की एक झलक पाने को तरस रही है। आइए हम भी पूरे मनोयोग से सुनते हैं कि आज इतिहास के इस सबसे शांत और स्तब्ध क्षण में मां कुंती के हृदय की वह गहरी वेदना हमसे क्या कहना चाहती है।
4: समय बीत गया, ऋतुएं बदलती रही, राजमहल बदलते रहे, जीवन आगे बढ़ता रहा, किंतु एक मां का हृदय कभी आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे भीतर एक रिक्तता वर्षों से मौन बैठी है। जब भी किसी मां को अपने पुत्र को गले लगाते देखती हूं तो मेरी आत्मा मुझसे पूछती है, क्या ममता भी कभी अपराधिनी हो सकती है? शायद संसार मेरे मौन को नहीं समझ पाया, पर एक मां अपने ही हृदय के न्यायालय से कभी मुक्त नहीं हो सकती। किंतु आज मैं स्वयं से एक प्रश्न पूछ रही हूं, क्या मैं सचमुच मां हूं जिसने अपनी ही कोख के अंश को जन्म लेते ही अपनी बाहों से दूर कर दिया? क्या उसे मां कहलाने का अधिकार है जिस शिशु को अपनी छाती से लगाकर जीवन देना था, उसे मैंने नदी की लहरों के भरोसे छोड़ दिया, जिसकी पहली मुस्कान मेरी आंखों में बसनी थी जिसके पहले आंसू मेरे आंचल में सूखने थे, उसका संपूर्ण बचपन मेरी ममता से वंचित रह गया। संसार ने उसे अनेक नाम दिए पर वो अभागा एक नाम कभी न सुन सका जिसे सुनने का अधिकार उसे जन्म से प्राप्त था। पुत्र, पुत्र।
2: ममता का स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता, वह समय के साथ वृद्ध नहीं होती, परिस्थितियों से हारती नहीं और दूरी से कम नहीं होती। यदि कभी भूल हो भी जाए, यदि कभी जीवन किसी विवशता के कारण माँ को उसकी संतान से दूर भी कर दे, तब भी उसके हृदय में प्रेम का स्रोत सूखता नहीं। कुंती का जीवन इसी शाश्वत सत्य का प्रतीक है। वर्षों तक मौन रहने वाली माँ जब कर्ण के सामने आने का साहस जुटाती है, तब वह किसी महारानी के रूप में नहीं आती, वह केवल एक अपराध बोध से भरी माँ होती है। उस क्षण राजसत्ता, कुल, प्रतिष्ठा और इतिहास सब कुछ पीछे छूट जाते हैं, केवल एक माँ का कांपता हुआ हृदय शेष रह जाता है, जो अपने खोए हुए पुत्र को एक बार, सिर्फ एक बार पुत्र कहकर पुकारना चाहता है। श्रोताओं, आइए आरंभ करते हैं दिनकर जी की इस महान काव्य गाथा रश्मि रथी से पंचम सर्ग में लिपटे कर्ण और माता कुंती के प्रेम, करुणा, दुख, विषाद से भरा ये काव्य पाठ।
1: आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी, संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा, जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा, कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे।
2: सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम नहीं क्या यह संयोग घटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा।
4: एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा, दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी, हे राम निरावृत किए बिना व्रीडा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिल जग से हो रहे विमन है, तब भी उनसे कहूं करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे, यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भाव ज्ञानी, तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं, लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी, मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है, क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू।
2: चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबराकर सितकेशी संभ्रमयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रविका प्रीतम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। यादो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहा कर, मैं नाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पय से निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को।
1: श्रोताओं, ये दृश्य केवल महाभारत की कथा नहीं, एक मां के हृदय की गहन वेदना का चित्र है। युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, परंतु कुंती का मन मानो पहले ही रणभूमि बन गया है। एक ही कोख के लाल, एक ओर अर्जुन, दूसरी ओर कर्ण। सोचिए उस मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी, जिसकी ममता दो दिशाओं में खिंच रही है। दिनकर जी ने इस क्षण को इतनी संवेदनशीलता से उकेरा है कि लगता है मानो कुंती के नयन केवल आंसू नहीं, वर्षों से दबा हुआ मातृत्व बहा रहे हों।
2: गंगा का वह एकांत तट जहां सांध्य बेला की मध्यम मध्यम लाली धीरे धीरे अंधकार की गोद में सिमट रही है, लहरों का एक शांत मौन संगीत गूंज रहा है। और उस निस्तब्धता के बीच सूर्य पुत्र कर्ण अचल खड़ा अस्ताचल की ओर बढ़ते अपने तात सूर्य देव को निहार रहा है। वह इस बात से सर्वथा अनजान है कि प्रकृति आज उसके जीवन का सबसे बड़ा कौतुक रचने जा रही है। तभी दूर वृक्षों की ओट से पत्तों की सरसराहट के पीछे छिपकर राजमाता कुंती अपने उस आदि पुत्र को निहार रही हैं। बरसों पहले जिस नन्हे सुकुमार को लोक लाज के भय से भारी मन से गंगा की लहरों में बहा दिया था, आज उसे एक महायोद्धा के रूप में सामने देखकर उनका मात्र हृदय छटपटा उठता है। उस क्षण एक माँ की आंखें केवल उसे देखती नहीं हैं, वे तो अपने भीतर उमड़ते सदियों के अकेलेपन अपराध बोध और रोके हुए वात्सल्य को दूर से ही अपने उस त्यागे हुए पुत्र पर लुटा रहे हैं। हृदय में ग्लानी और ममता का ऐसा द्वंद है जो शब्दों से परे है। आइए श्रोताओं, अब अपनी चेतना को समेटकर हम बढ़ते हैं आगे इतिहास के उसी अत्यंत भावुक मर्मस्पर्शी और ऐतिहासिक क्षण की ओर, जहां गंगा के इस पावन तट पर एक विवश माँ और एक महात्यागी पुत्र का वह अद्भुत मिलन होने वाला है जिसने नियति की दिशा ही बदल दी। आइए पूरे मनोयोग से सुनते हैं पंचम सर्ग के इस भाग दो का यह दिव्य काव्य पाठ।
1: आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला।
3: पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं। हैं आप कौन? किस लिए यहां आई हैं? मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है, सूना औघट ये घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रव्या आप अकेली नारी हैं कौन देवी? कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं?
1: सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा, विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से,
4: रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण शर से, राधा का सुत तू नहीं तनय मीरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है, जिस तरह तीन पुत्रों को मैंने पाया तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया, पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था, एतेव हाय अपने दुधमुहे तनय से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से, बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योशिता कुमारी, है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को, उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का, मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को, संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक ना मुझे कसाला, ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी, पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ, कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू, मेरे ही सुत मेरे सुत को हाय मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे, यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा, जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी यह व्यथा समग्र भुवन को, भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी ना हीरा तुझको जिस संशय से, उस जल समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और ना अधिक डरूंगी, थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं, वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है, बाजी तो मैं हार चुकी कब की ही, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही, तुझ तक ना आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने।
1: मित्रों पांचवें सर्ग का यह प्रसंग केवल कर्ण और कुंती का संवाद नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सत्य समय और संबंधों के सबसे कठिन प्रश्नों का सामना है। दिनकर जी ने यहां किसी युद्ध का वर्णन नहीं किया, बल्कि उस युद्ध की पीड़ा को चित्रित किया है जो मनुष्य के भीतर चलता है। एक ओर कर्ण है जिनका जीवन अपमान संघर्ष और आत्मसम्मान की अग्नि में तपकर कुंदन बना है, दूसरी ओर कुंती हैं जिनकी ममता वर्षों तक समाज की कठोर मर्यादाओं के पीछे कैद रही। जब दोनों आमने सामने आते हैं तब शब्दों से अधिक मौन बोलता है और संवादों से अधिक आंसू अपना अर्थ कहते हैं।
2: कर्ण का पहला परिचय ही उनके चरित्र की महानता का प्रमाण है। वे सामने खड़ी स्त्री को नहीं पहचानते, फिर भी विनम्रता से कहते हैं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। इस एक वाक्य में कर्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित है। देखिए ना, जन्म देने वाली माँ सामने खड़ी है, लेकिन कर्ण अपने पालन पोषण का ऋण नहीं भूलते। वे स्वयं को राधा का पुत्र ही कहते हैं। दिनकर जी यहाँ संदेश देते हैं कि मनुष्य का गौरव केवल जन्म से नहीं बल्कि संस्कारों और कृतज्ञता से निर्मित होता है। इसके बाद कुंती का धैर्य टूट जाता है। वर्षों से हृदय में दबा हुआ सत्य अश्रुओं के साथ बाहर आता है। जब वे कहती हैं कि राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, तब यह केवल जन्म का रहस्य नहीं खुलता बल्कि एक माँ के जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप भी सामने आता है। कुंती स्वीकार करती हैं कि उन्होंने समाज के भय से अपने नवजात पुत्र को त्याग दिया था। दिनकर जी ने यहाँ उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रश्न उठाया है, जहाँ एक अविवाहित माँ के लिए सम्मान से अधिक लोक लाज का भय था। कुंती का अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये उस व्यवस्था की विवशता भी थी जिसने इसे मातृत्व से बड़ा सामाजिक भय बना दिया। कुंती जब अपने अपराध का कारण बताती हैं, तब उनका स्वर किसी महारानी का नहीं बल्कि एक असहाय स्त्री का हो जाता है। वे स्वीकार करती हैं कि नारी के लिए समाज का निर्णय कितना कठोर होता है। यही कारण है कि इस प्रसंग में पाठक कुंती को दोष देने से पहले उनकी विवशता को समझने लगते हैं। दिनकर जी किसी पात्र का न्याय नहीं करते, वे केवल मनुष्य की पीड़ा को हमारे सामने रखते हैं।
1: इसके बाद कुंती की प्रार्थना कथा को और अधिक मार्मिक बना देती है। वे कर्ण से राज्य नहीं मांगती, अपने लिए सम्मान नहीं मांगती, केवल इतना चाहती हैं कि उनके पुत्र एक दूसरे का रक्त ना बहाएं। ये एक मां की अंतिम इच्छा है, किंतु इस प्रार्थना के पीछे वर्षों का अपराध बोध भी छिपा है। उन्हें लगता है कि यदि आज भी वे मौन रही तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगी। इस पूरे प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां विजय या पराजय का प्रश्न नहीं है। यहां हर पात्र अपने अपने सत्य के साथ खड़ा है। कर्ण का सत्य कर्तव्य और कृतज्ञता है, कुंती का सत्य ममता और पश्चाताप है, रश्मिरथी का यह अंश हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भर नहीं पाता, केवल स्वीकार करना ही उनका उपचार बनता है। यही कारण है कि पंचम सर्ग का यह प्रसंग हिंदी साहित्य के सबसे करुण और मानवीय संवादों में गिना जाता है। यहां दिनकर जी ने यह सिद्ध कर दिया कि तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध से कहीं अधिक भीषण युद्ध मनुष्य के हृदय में लड़े जाते हैं। आंसू, पश्चाताप, कर्तव्य, ममता और धर्म, इन सभी भावों का ऐसा अद्भुत समन्वय विरले ही किसी काव्य में देखने को मिलता है। इसलिए यह प्रसंग केवल कर्ण और कुंती की कथा नहीं बल्कि मानव हृदय की शाश्वत संवेदनाओं का अमर दस्तावेज बन जाता है।
2: तो श्रोताओं, इसी भावपूर्ण मोड़ पर आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर विराम लेता है। अगले भाग में हम पंचम सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ और चर्चा सुनेंगे। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन किया दीपक नेमा ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
5: मैं अदिति
6: और मैं दीपक नेमा।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर लेती है विराम। आप सभी से हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए
7: नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
8: काव्य गुंजन, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। आपसे विदा लूं उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपका परिचय करवा दूं। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। वतन का राग कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। इसमें आज हम बात करेंगे वीओ चिदम्बरम पिल्लई की। बाल सभा कार्यक्रम शाम 6:30 प्रसारित होगा। इसमें सुनिएगा कान्हा की बाल लीलाएं। शाम 7 बजे टेक गुरु कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हमारी सेना हमारा गर्व, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:30। रात 8 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम में हम बात करेंगे ADA की। आज़ाद हिंद कार्यक्रम का प्रसारण समय है रात 8:30। इसमें आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा स्वामी कुमारनंद पर। रात 9:30 काव्य गुंजन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत आप सुन सकते हैं रश्मि रथी का भाग 12। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब इस प्रसारण सभा से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन गौरव अभ्यंकर का, और इसके बाद प्रस्तुति होगी रघुनंदन पंशीकर के गायन की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौरव अभ्यंकर का गायन।
3: गायन का प्रारंभ एक स्वरचित शिव वंदना से करूंगा, जो कि याग रमन राग यमन में एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय की रचना है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, आजाद हिंद। देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
3: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
2: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो, या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
3: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
2: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
4: बहुत मजा आया ना, आज पानी पूरी बहुत ही टेस्टी बनी थी।
5: अगली बार ले चलना मेरे को।
4: अगली बार नहीं, क्लास जब हो जाएगी ना छुट्टी के बाद हम लोग फिर से चलेंगे।
5: चलो ठीक है ठीक है। हाँ।
4: अरे गुरुजी आ गए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी
6: आयुष्मान हो, मेधावी बनो। अरे आज तो लगता है कक्षा में उपस्थिति 100% है भाई।
5: गुरुजी केवल मयंक अनुपस्थित है।
6: अरे ये मयंक को क्या हुआ?
5: गुरुजी मयंक तो राष्ट्रीय सेवा योजना के वन शिविर में भाग लेने गया है।
6: अरे हाँ याद आया, आज ही तो अपने विद्यालय का समूह वन शिविर में भाग लेने गया है। तो बच्चों, वनों का सदा से ही मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
5: ऐसा क्यों गुरुजी?
6: भाई देखो, आदिम मानव तो अपनी लगभग सभी मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन कपड़ा आवास के लिए पूरी तरह से वनों पर निर्भर रहता था। मानव सभ्यता में विकास के साथ साथ मानव तथा वनों के संबंधों में यूं तो अनेक परिवर्तन आते गए, पर वनों पर मानव समाज की निर्भरता किसी न किसी रूप में आज भी बनी हुई है।
5: अच्छा,
6: अब वनों के महत्व के बारे में मुझे कौन बताएगा? एक हाथ ऊपर उठा हुआ देख रहा हूं। हाँ हाँ, तुम ही बताओ।
7: गुरुजी, वन पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
6: वाह,
7: इनसे ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी तो मिलती ही है, इमारती और फर्नीचर के लिए भी लकड़ी मिलती है।
6: वाह वाह वाह।
7: फिर ये वायु और जल द्वारा भूमि के क्षरण को रोककर मिट्टी का संरक्षण भी करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन भी बनाए रखते हैं। वर्षा को नियंत्रित करते हैं। गोंद वनोपज आदि उपयोगी पदार्थ भी देते हैं। जीव जंतुओं और आदिवासियों को रहने और भोजन की सुविधा देते हैं।
4: अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है। गुरुजी, इन्होंने बिल्कुल सही बोला।
6: हाँ, बहुत सुंदर बोला। भाई, तुमने वनों के महत्व के संबंध में काफी जरूरी बातें बताई। वन प्राकृतिक सुंदरता भी तो बनाए रखते हैं। पर बच्चों, क्या तुम्हें पता है?
4: क्या गुरुजी?
6: यही कि विश्व के पहले ज्ञात वनस्पति शास्त्री भारत के महर्षि पाराशर थे।
5: नहीं गुरुजी, हमें पता ही नहीं पता था।
6: अरे अच्छा, उन्होंने ना ईसा से लगभग 100 वर्ष पहले वनस्पति शास्त्र पर अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेद लिखकर न केवल वनस्पतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वरन पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण, बीजों के निर्माण, कोशिकाओं के प्लाज्मा आदि विभिन्न घटनाओं की विवेचना भी प्रस्तुत की।
4: अरे वाह गुरुजी।
7: गुरुजी, आज हमें महर्षि पाराशर के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में ही कुछ बताइए ना।
5: गुरुजी, बताइए ना।
6: ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अब महर्षि पाराशर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी देने के लिए हम तुम्हें उनके आश्रम में ही लिए चलते हैं।
4: हाँ,

आश्रम के ऋषिवर शांति पाठ के पश्चात अब हम वनस्पति जगत की प्रार्थना करेंगे। शिवो भव प्रजा भयो मानुषी भय स्तव मंदिर मधुमति रोषधीर ध्याव आपा मधुमन्नो भवत्वंतरिक्षम क्षेत्रस्य पतिर्मधुर्मानो अस्तवर्ष्यन्तो अन्देनं चरेम वनस्पते शतवल्षो विरोह सहस्रवल्षा विवयं रुहेम यम त्वयामयं स्वादितस्तेजमानः प्राणिनाय महते सोभगाय। मुनिवरों, प्रकृति और मानव का संबंध आदिकाल से चला आ रहा है। वन सदा से मानव की आश्रय स्थली और क्रीड़ा स्थली रही है। मानव की सभी आधारभूत आवश्यकताओं भोजन वस्त्र आवास वनों से वृक्षों से पूरी होती रही। वस्तुतः वन वृक्ष झाड़ियां लताएं अन्यान्य पादप समुदाय के साथ ही जीव जंतु आदि संपूर्ण पर्यावरण से संबंध रखता है। अस्तु, प्रकृति के जियो और जीने दो के सद्भाव को बनाए रखने के लिए हमने यजुर्वेद के शांति मंत्र का पाठ किया, जिसमें प्रार्थना की गई है कि हमारे लिए आकाश अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधियां वनस्पतियां विश्वदेव तथा ब्रह्मा सभी शांति प्रदान करने वाले हों। चारों ओर शांति हो, शुद्धता हो, किसी में विकार न हो। फिर संपूर्ण सृष्टि की रचना पंच महाभूत आकाश वायु तेज यानी अग्नि जल और पृथ्वी से हुई है। वृक्ष इन सभी के संरक्षण में महती भूमिका निभाते हैं, उन्हें शुद्ध रखते हैं। अतः वनस्पति प्रार्थना में उनकी स्तुति करते हुए कहा गया है कि वे हमारे लिए मधुमति हों, दु जल और अंतरिक्ष हमारे लिए मधुर हों, भूमि भी हमारे लिए मधुरता से युक्त हो। वनस्पतियां हजार शाखाओं वाली होकर भी हमें भी हजारों शाखाओं से युक्त कर

0: वाणी को नित्य क्रम का अभिन्न अंग बना रखा है। मेरा मंतव्य है कि ये कार्य तो भृत्य भी कर सकते हैं ना।
1: मुनिवर, पहली बात तो ये कि आश्रमों में भृत्य रखने की परंपरा नहीं होती। यहाँ सभी अपने सभी कार्य स्वयं ही करते हैं। दूसरे, बागवानी वृक्षारोपण का महत्वपूर्ण अंग है और वृक्षारोपण एक धार्मिक कृत्य है। वृक्षारोपण का महत्व तो तुम जानते ही हो ना।
0: भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का एक विशिष्ट स्थान है। वेद, स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र तथा आयुर्वेदादि सभी में वृक्षारोपण की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। वृक्षों को जीव मात्र के लिए उपकारी और सर्व पूज्य भी बताया गया है।
1: आप ठीक कह रहे हैं। मानव के साथ शेष प्रकृति का सहचरी भाव भी है और अनुचरी भाव भी। मानव वृक्ष वनस्पतियों का पौधारोपण करके उन्हें खाद पानी देकर उनका पालन पोषण करता है, तो वे वृक्ष वनस्पति अपने बीज, फल आदि भोज्य पदार्थ प्रदान कर मानव के पालन पोषण का आधार बनते। वेदकालीन समाज में न केवल पर्यावरण के सभी पहलुओं पर चौकन्नी दृष्टि थी, वरन उसकी रक्षा और महत्व को भी स्पष्ट किया गया था। हमारे ऋषियों ने वृक्षों में दैवीय शक्तियों का वास बताकर उनकी पूजा का विधान रचा। इस तरह उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को धर्म से जोड़कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय ही दिया। इसका उद्देश्य था समाज का प्रत्येक सदस्य अपने नित्य कर्म के संपादन में पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण काम से जाने अनजाने जुड़ा रहे।
0: वस्तुतः इसीलिए हमारे ऋषियों ने अनेक सरल तथा सामाजिक आचरण के लिए हितकर नियम बनाए हैं।
1: हाँ मुनिवर, इन नियमों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमारे ऋषियों ने मानव मनोविज्ञान के विश्लेषण के आधार पर सभी नियमों को व्यवहारिक बताते हुए, सभी नियमों को व्यवहारिक बनाते हुए स्वर्ग, नरक, शुभ, अशुभ, धर्म, अधर्म तथा पाप, पुण्य की संज्ञा प्रदान कर सन्मार्ग में प्रेरित करने के लिए सत प्रयत्न किया है।
0: जी,
1: जैसे कि शास्त्रों में वट, पीपल, तुलसी आदि कई पेड़ पौधों को पूजनीय बताया गया है और उनके काटने का निषेध किया गया है। कहा ही गया है, वट मूले स्थितो ब्रह्मा, वट मध्य जनार्दन, वटाग्रे तू शिवो देवः, सावित्री वट संशिता। अर्थात वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्र भाग में देवाधिदेव प्रतिष्ठित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में स्थित रहती है।
0: हाँ गुरुदेव, ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल वृक्ष अर्थात अश्वत्थ वृक्ष को अपनी विभूति बताते हुए कहा है, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूं। स्कंद पुराण में भी इसे मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप बताया गया है। यथा मूले विष्णु स्थितौ नित्यं स्कंधे केशव एव च, नारायणस्तु शाखा सुपत्रेषु भगवान हरि, फले अच्युतो न संदेह सर्वदेवैः समन्वितः। अर्थात अश्वत्थ वृक्ष के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। इसका आश्रय करना मनुष्यों के सहस्रों पापों का नाशक तथा सभी अभीष्टों का साधक है।
1: मुनिवर, पीपल की एक विशेषता ये भी है कि वो अन्य वृक्षों में, भवनों में, पत्थरों की जड़ों में कहीं भी उगाता है। देखिए, इन पपीतों के वृक्षों को जल कुछ अधिक मात्रा में देना है, इससे पपीते के फल तने से अधिक पुष्टता से जुड़े रहते हैं।
0: जी, आप भी पौधों के चारों ओर मिट्टी की गुड़ाई अत्यंत रच पच कर रहे हैं।
1: हाँ मुनिवर शुक्राचार्य, ये आवश्यक भी है। इससे पौधों को आवश्यक वायु भरपूर मात्रा में मिल जाती है। हम पीपल की बात कर रहे थे ना।
0: जी,
1: पर वट या पीपल ही नहीं, अन्य अनेक वृक्षों में देवताओं का वास बताया गया है। सोम, शमी, आंवला आदि से तो आप परिचित होंगे ही।
0: हाँ आचार्य श्री, सोम के संबंध में तो हमें जानकारी नहीं है, पर आंवले के वृक्ष की महिमा हमने स्कंद पुराण में पढ़ी ही है। इस वृक्ष के स्कंद पर रुद्र भगवान, शाखाओं में नदी, प्रशाखाओं में देवताओं का निवास बताते हुए कहा गया है, सर्वदेवमयी देशा धात्रिवय कथिता मया, तस्मात् पूज्यतमा वेशाम विष्णु भक्ति परायण है। इस वृक्ष को लगाने वाला सर्वदेव पूजन के पुण्य का अधिकारी होता है। आंवले की छाया में पिंडदान करने वाले व्यक्ति के पूर्वज स्वर्ग में निवास करते हैं। ऐसे ही पुत्र प्राप्ति के लिए आंवले का पूजन अमोघ साधन बनाया गया है।
1: अवश्य शुक्राचार्य जी।
0: जी,
1: ऋग्वेद के पूरे नवम मंडल तथा अन्य मंडलों में सोम की स्तुतियां हैं। वैदिक देवताओं में सोम बहुत लोकप्रिय माना गया है।
0: जी,
1: उसका उल्लेख सभी वनस्पतियों में वन के राजा के रूप में प्राप्त होता है।
0: हाँ,
1: कहीं कहीं तो उसे सृष्टिकर्ता तथा सृष्टि का स्वामी तक कह दिया गया है। उससे की गई प्रार्थना सफल होनी बताई गई है। वैदिक सूक्तों में सोमलता को भगवान का रूप बताते हुए कहा गया है, तौमिमा औषधीह सोम विश्वास्त्वमपो अजन यस्त्वंगा त्वमा ततंथोर्व अंतरिक्षम त्वम ज्योतिषा वीतमो ववर्थ। अर्थात, हे सोम, आपने ये सब औषधियां जल और गायें उत्पन्न की हैं। आपने ये विशाल अंतरिक्ष फैलाया है और प्रकाश से अंधकार को दूर किया है। इसी प्रकार शमी वृक्ष को समस्त अमंगलों और दुस्वप्नों का नाशक बताया गया है।
0: हाँ आचार्य श्री, वृक्ष पूजा का चलन तो आदिम युग से चला रहा प्रतीत होता है।
1: जी हाँ, आपने देखा होगा वेदकालीन साहित्य में वृक्ष संरक्षण और वृक्षारोपण की शिक्षा जगह जगह पर दी गई है, जो प्राचीन ऋषियों के वैज्ञानिक चिंतन को सहज उजागर करता है। वृक्षों को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। इसी तरह विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है, वृक्षारोपर यतुर वृक्षाः परलोके पुत्रा भवन्ति। अर्थात, जीवन में लगाए गए वृक्ष अगले जन्म में संतान के रूप में प्राप्त होते हैं।
0: हाँ महर्षि, भविष्य पुराण में भी तो कहा गया है, अश्मत्थमेकम पिचुमर्दमेकम न्यग्रोधमेकम दश चिंचिणीकम कपित बिल्वा मलक त्रयम च पंचाम्रवापि नरकम न पश्चेत। अर्थात, जो व्यक्ति पीपल अथवा नीम अथवा बरगद का एक, चिंचड़ी यानी इमली के 10, कपित अथवा बिल्व अथवा आंवले के 3 और आम के 5 पेड़ लगाता है, वो कभी नरक में नहीं जाता। इसी पुराण में आगे कहा गया है महर्षि, कि जो व्यक्ति छाया फल फूल देने वाले वृक्ष लगाता है अथवा मार्ग में व देवालय में वृक्षारोपण करता है, वह अपने पितरों का उद्धार कर देता है और स्वयं भी शुभ परिणाम प्राप्त करता है।
1: मुनिवर, पुराणों में वृक्षारोपण महोत्सव मनाने की बात तो कही ही गई है। वृक्ष काटना भी एक अपराध बताया गया है, इसके लिए दंड और प्रायश्चित का विधान भी दिया गया है। जैसे अग्नि पुराण में कहा गया है कि यदि तुम स्वयं तथा अपने परिवार को सुखी और संपन्न देखना चाहते हो तो फल फूलदार वृक्षों को कभी मत काटो। यजुर्वेद में पेड़ पौधों को अच्छा मित्र बताते हुए उनके फलने फूलने की कामना की गई है, ताकि वातावरण शुद्ध रहे और प्राणी निरोगी रहे। माधवीर्ण संतोष शदीह।
0: आचार्य श्री, ये सत्य है, वट, पीपल, नीम आदि वृक्ष, दीर्घायु बड़े छतरीधारी, औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ वायुमंडल की शुद्धि करने का गुण भी रखते हैं।
1: हाँ मुनिवर, पीपल के वृक्ष को ही ले लो, ये भी तुलसी के समान ही 24 घंटे प्राणवायु उत्सर्जित करता है। एक बात और, जब हम अपनी श्रद्धा और आदरांजलि समर्पित करते हुए वृक्ष पूजा करते हैं तो पूजा के समय उनमें दिव्य शक्तियों का अनुभव होता है जो हमारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है।
0: हाँ आचार्य श्री, संभवतः आपको ज्ञात होगा, कहा जाता है महर्षि चरक जब पौधों से औषधि प्राप्त करते थे तो पहले उनकी प्रार्थना करते थे, पौधे स्वयं उन्हें अपने औषधि गुण बता दिया करते थे।
1: हाँ हमें ज्ञात है, महर्षि चरक के अनुसार पृथ्वी पर ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। उन्होंने वृक्षों पर अध्ययन और प्रयोग करके उनके गुणों को पहचाना और उनके स्थान नियत किए, जैसे तुलसी का पौधा घर के आंगन में और नीम का तथा पीपल का पेड़ घर के बाहर लगाने का विधान बताया गया है।
0: आचार्य श्री, हम देख रहे हैं आपने भी तो पौधों को अपने उपवन में बड़ी सुंदरता से सजाया है। नीम, पीपल, आंवला, इमली, वट वृक्ष, आम जैसे वृहद पेड़ एक और, मझोली ऊंचाई वाले घनी शाखाओं वाली झाड़ियां दूसरी ओर, और मुलायम तने वाले छोटे पौधे अलग क्यारियों में।
1: मुनिवर, ये व्यवस्था सुविधाजनक तो है ही, वनस्पतियों के वर्गीकरण के अनुसार भी है। हमने वनस्पति शास्त्र पर अपने ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेद में ये वर्गीकरण विस्तार से दिया है।
0: आचार्य श्री, हमने आपका यह विलक्षण ग्रंथ पढ़ा है, इसमें आपने संपूर्ण वनस्पति जगत का निश्चित सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अत्यंत सूक्ष्म आकार वाले कवक शैवाल, मुलायम तने वाले छोटे पौधे शाक भाजी, मझौले आकार वाले कठोर तने की झाड़ियाँ और लंबे वृहद आकार वाले कठोर तथा काष्ठीय तने के वृक्षों में वनस्पति जगत का वर्गीकरण अद्भुत है।
1: संभवतः आपको स्मरण होगा, हमने वनस्पतियों को शाक भाजी, झाड़ी और वृक्ष तीन वर्गों में तो वर्गीकृत किया ही है, अपितु वृक्षों को भी एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय वर्गों में तथा नग्न बीजी और आवृत बीजी वर्गों में भी वर्गीकृत किया है। इतना ही नहीं, वृक्षों का पर्णपाती तथा सदाबहार वर्गों में भी वर्गीकरण दिया गया है।
0: आपके इस ग्रंथ की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि आपने सृष्टि के प्रत्येक पौधे के दो नाम दिए हैं, एक प्रचलित नाम और दूसरा उसके गुणों के आधार पर शास्त्रीय नाम। प्रचलित नाम सामान्य व्यवहार में उपयोग के लिए दिए गए हैं। एक और विशेषता यह है कि आपने पौधों की लगभग 45,000 प्रजातियों को 15,000 पुष्प वाली प्रजातियों, 2,000 कवक प्रजातियों, 5,000 शैवाल प्रजातियों, 2,700 प्रकार के शैलाभ, पर्णिल, 1,600 प्रकार के शैक और 600 प्रकार के शंकु कोण वाले वृक्षों में वर्गीकृत किया है।
1: मुनिवर, एक बात और, संभवतः आपने रेखांकित की होगी कि हमने भोजन, औषधि, पशुचारे आदि विविध उपयोग में आने वाले पौधों की भी विस्तृत सूची प्रस्तुत की है।
0: हाँ।
1: सच तो यह है मुनिवर शुक्राचार्य, इसमें महर्षि चरक द्वारा किए गए विस्तृत भ्रमणों के दौरान एकत्र की गई जानकारी और हमारी खोज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न उपयोग में आने वाली लगभग 9,500 प्रजातियों में से लगभग 3,900 प्रजातियां भोजन के रूप में, लगभग 7,500 औषधियों के रूप में, 400 पशुचारे के रूप में तथा अनेक विविध कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है।
0: महर्षि, ये निश्चय ही बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें भोजन, भवन निर्माण, औषधि एवं विविध उपयोग में आने वाले पौधों की पृथक पृथक सूचियां दी गई हैं। जैसे खाद्य रूप में उपयोग में आने वाले पौधों के विभिन्न भागों की जानकारी अद्भुत है, अद्भुत है महर्षि। तीखुर, विदारी, कुंभी, मीठा जैसे कंद प्रकंद, चौलाई, चकोड़ा, चेंचू, चंगेरी जैसी भाजियाँ, कोयलार, भिलमा, महुआ, अगस्त जैसे पुष्प, बेल, गूलर, चार, कैथा, उमर, जामुन, आम्र, खजूर, इमली जैसे फल और चार, भिलवा, कुल्लू जैसे बीज सभी खाद्य रूप में उपयोग में लाए जाते हैं।
1: मुनिवर, औषधीय पौधों की जानकारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। निश्चित ही ये जानकारी चरक संहिता में दी गई जानकारी का ही संवर्धन है। फिर काष्ठ के लिए उपयोग में आने वाले पौधों, रेशे, गोंद, रंग, तेल, इत्र, चटाई, डलिया, मादक पेय, रेशम आदि के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पौधों की जानकारी भी महत्वपूर्ण है।
0: आचार्य श्री, वृक्ष आयुर्वेद में आपने वृक्षों में भी जो चार जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की संकल्पना प्रस्तुत की है वो भी अद्भुत है। हमें आपका वो श्लोक अभी तक याद है जो आपने नौका निर्माता बंदियों को सुनाया था।
1: अच्छा तो सुनाइए तो।
0: लघु यत् कोमलम काष्ठम सुघटम ब्रह्म जाति तत् दृढ़ांग लघु यत् काष्ठम घटम क्षत्र जाति तत् कोमलम गुरु यत् काष्ठम वैश्य जाति दत्चते दृढ़ांगम गुरु यत् काष्ठम शूद्र जाति तदुच्यते लक्षण द्वय योगेन द्विजाति ही काष्ठ संग्रह। अर्थात ब्राह्मण जाति की लकड़ी लघु और कोमल होती है जिसे आसानी से जोड़ा जा सकता है। क्षत्रिय जाति की लकड़ी हल्की और दृढ़ होती है। वैश्य जाति की लकड़ी कोमल तथा भारी होती है, जबकि शूद्र जाति की लकड़ी दृढ़ और भारी होती है। जिन लकड़ियों में दो जातियों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विजातीय कहा गया है।
1: इसीलिए क्षत्रिय काष्ठ की बनी हुई नौका सुख संपत्ति प्रद होती है। इसके बने हुए जहाज विकट जलमार्गों में भी काम दे सकते हैं। दूसरे प्रकार की लकड़ियों से जो नौकाएं बनाई जाती हैं, उनके गुण अच्छे नहीं होते, उनमें आराम भी नहीं मिलता, वे टिकाऊ भी नहीं होती, पानी में उनकी लकड़ी सड़ने लगती है और साधारण सा धक्का लगने पर ही वे फटकर डूब जाती।
0: महर्षि, पौधों को जल देने के साथ साथ हमने उनकी पीली पड़ गई पत्तियों को भी चुनकर हटा दिया है।
1: ये आप बहुत उत्तम काम कर रहे हैं मुनिवर। आपको तो ज्ञात ही होगा पौधों के लिए पत्तियों का ये हरित पदार्थ, पर्ण हरित, बहुत महत्वपूर्ण है।
0: हाँ, आपके ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेद में ही हमने पढ़ा है कि पौधे इस हरित पदार्थ की उपस्थिति में ही सूर्य की ऊर्जा से, वायुमंडल तथा जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
1: हाँ, इसीलिए पौधों की वृद्धि के लिए जल, वायु के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी अत्यावश्यक है। सच तो ये है मुनिवर, प्रकृति के विधान के अंतर्गत ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां अपने विकास के लिए केवल 10% भाग ही मृदा से प्राप्त करती हैं। शेष 90% के लिए ये वायुमंडल, जल और सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती हैं। इस क्रिया को संपन्न करने के लिए प्रकृति ने इन्हें प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की अद्भुत क्षमता प्रदान की। इतना ही नहीं, वनस्पतियों में एक और गुण प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, वो ये कि ये पार्श्वसन द्वारा वायुमंडल के भीतर समुचित मात्रा में जल स्तर स्थापित रखने में भी योगदान करती है।
0: इसीलिए तो आचार्य श्री, वनस्पतियों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वे सभी जीवों के लिए स्वच्छ हवा, भोजन और जल के साथ आवास का भी प्रबंध करती हैं।
1: हाँ, वृक्ष भूमि जल वायु अग्नि तथा आकाश सभी तत्वों के संरक्षण शोधन के लिए महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। एक ओर वृक्षों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं और वायु और जल के द्वारा भूमि के क्षरण को रोकते हैं, तो दूसरी ओर वर्षा को भी नियंत्रित करते हैं। दिन में पदार्थों के ज्वलन या जीवों के श्वसन द्वारा त्यागी गई दूषित वायु को अवशोषित करते रहते हैं और रात्रि को प्राणवायु में बदलकर उत्सर्जित करते हैं। ऐसे ही वे सूर्य से अग्नि यानी ऊर्जा लेकर उसे खाद्य पदार्थ के रूप में संग्रहित करते हैं और प्रकृति में उपस्थित खाद्य श्रृंखला द्वारा पूरे परिवेश में संवाहित करते हैं। तभी तो वृक्षों के संरक्षण के लिए सभी शास्त्रों में अत्यधिक जोर दिया गया है।
0: महर्षि, वृदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने वृक्षों की तुलना मानव शरीर से करते हुए कहा है, यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषो अमृषा तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहि त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्ति त्वच उत्पटः तस्मात् तदा तृणनात् प्रयति रसो वृक्षा दिवाहतात् मांसान्यस्य शकराणि कीनाट स्नाव तत् स्त्रेम अस्थीन्य यंत्रतो दारुणी मज्जा मज्जोपमा कृता। अर्थात जैसे वन का बड़ा वृक्ष है, ऐसा ही मानव शरीर है। मानव देह में रोम है, वृक्ष में पत्ते हैं। मानव की त्वचा के समान ही वृक्ष की बाहरी छाल होती है। जैसे मनुष्य की त्वचा से रक्त बहता है, वैसे ही वृक्ष की छाल से उत्पट रस निकलता है। अर्थात जैसे त्वचा के कट जाने पर रक्त निकलता है, वैसे ही वृक्ष के कटने पर उसका रस बहता है। मनुष्य की मांसपेशियों की ही तरह वृक्ष की छाल के भीतर का भाग निकलता है। मानव में जैसे नाड़ी जाल है, वैसे ही वृक्ष का कीनाट होता है। उसकी अंदर की लकड़ी मानो उसकी हड्डियां हैं और उसकी मज्जा मानव मज्जा के समान ही है।
1: मानव शरीर से वृक्ष शरीर की ये तुलना एकदम सटीक है। इसलिए मुनिवर, हमने अपने वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ में पेड़ पौधों के विभिन्न भागों का वैज्ञानिक आधार पर विवेचन प्रस्तुत किया है। हमने बताया है कि पत्तों में अत्यंत महीन कोशिकाएं होती हैं और उनमें जीवन रस स्थित रहता है।
0: आचार्य श्री, आपके सानिध्य में हमारा वनस्पतियों के संबंध में ज्ञान इतना विशद हो गया है कि हम भी इन पर ग्रंथ लिख दें।
1: हम जानते हैं मुनिवर शुक्राचार्य, भविष्य में हमें आपके ग्रंथ अवश्य देखने को मिलेंगे। लगता है आज की चर्चा में काफी समय व्यतीत हो गया। सभी लोग अपना अपना कार्य समाप्त कर जा चुके हैं। हमें भी हवन के लिए यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आइए आइए मुनिवर
0: जी।
1: इस ओर आइए।

0: तो बच्चों, ये थी महर्षि पाराशर के व्यक्तित्व और कृतित्व की एक झलक।
1: जी दीदी जी,
0: कैसी लगी भाई तुम्हें?
1: बहुत अच्छी।
0: हाँ, तो सबसे विलक्षण बात यह है बच्चों कि आधुनिक वैज्ञानिकों से कई शताब्दियों पहले उन्होंने वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, बीजों के निर्माण, पत्तियों में कोशिकाओं की उपस्थिति और कोशिकाओं में प्लाज्मा होने तथा वृक्षों द्वारा गैसों के निर्माण जैसी घटनाओं की जानकारियां प्रस्तुत की। फिर उनके द्वारा दिया गया वनस्पतियों का वर्गीकरण भी तो अद्भुत है।
1: जी गुरुजी।
0: पर आधुनिक नामकरण विधि के समान ही उन्होंने भी पेड़ पौधों को दो दो नाम प्रदान किए, एक प्रचलित नाम और दूसरा शास्त्रीय नाम।
2: अच्छा गुरुजी।
0: भाई, वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ को यूनेस्को से भी मान्यता प्रदान की गई है।
2: अरे वाह गुरुजी।
0: चलो लो भाई, अब तो पीरियड भी समाप्त हो गया। चलो अब अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।
2: जी गुरुजी।
0: नमस्ते। आयुष्मान भाव।
3: अरे घंटी बज गई, अब चले?
2: हाँ चलो चलो, घर चलते हैं।
3: घर नहीं, पानी पूरी नहीं खानी क्या?
2: अच्छा, तेरे को अभी तक याद है पानी?
3: तो क्या,
2: महर्षि पाराशर जी के बारे में सुनने के बाद भी तू पानी पूरी को भूली नहीं?
3: कैसे भूलूंगी।
2: चलो तो ठीक
3: है, चलो
2: चलो। लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा खाने से दांत खराब होते, ठीक है?
3: तुम लोग मत खाना ज्यादा।
2: चलो
3: चलो।

साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो, और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है। न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तां, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।
2: बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है।
3: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
4: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
3: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बंद समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए।
4: और
3: क्या?
4: नहीं नहीं, कुछ और कहो ना मेरी तारीफ में।
3: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
4: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
3: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग में सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपनो लहू डाल दे।
4: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा। पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
3: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
4: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
3: हाँ?
4: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
3: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए। पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं, ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
4: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
3: क्या?
4: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह प्यू प्यू करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
3: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
4: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है, कोई हाई कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
3: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रियाहट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
1: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उल्हाने देती है। नीरज धीरज का परिचय देता है, एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
4: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
3: क्या?
4: उनका बीपी है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
3: अरे
4: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
3: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था और अब यकायक
4: ये। अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना, फिर ना कहना कि
3: नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। आप कहती हैं कि
4: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
3: कैसे?
4: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
3: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
4: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस वर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
3: एसएमएस?
4: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे, मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
3: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
4: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
3: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़े ही बनाया था यार, बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
4: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुका कर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा। काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
3: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा क्या, क्या, क्या, क्या?
4: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
3: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है। एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।

0: रहा है तुम्हारा? भाई अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठकर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
1: सफर में अपना ख्याल रखना है, पहुंचते ही फोन करना।
2: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
0: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
1: अरे बेटा, रिंकू मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
0: बाय
2: बाय।
3: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। आप सुनिए आगे की दास्तान।
1: यार, चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है। ये औरतें बिना चाय चीजें ना जाने कहाँ कर रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्य भाग मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही है पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके, ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय बाय बाय।
3: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
1: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तुम, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच, तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घरनी घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
3: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और

0: लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बेटिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपकी रितु।
1: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे, वह इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
2: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
3: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
2: आना आना बैठ, क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
3: यार चाय वाय तो बनती रहेगी, पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
2: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
3: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है, पर ये प्रेम पत्र।
2: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार, किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
3: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो। आखिर यार मैं।
2: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
3: वो मायके गई बाल गोपाल को लेकर।
2: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है।
3: नहीं नहीं,
2: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
4: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
2: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
3: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार, तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
2: अच्छा?
3: वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूं।
2: ओ तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
3: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
2: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
3: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
2: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
3: हाँ
2: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
3: बता यार।
2: कुछ फिल्में देख डाल
3: है?
2: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
3: हाँ?
2: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने।
3: हाँ?
2: क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
3: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
2: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
3: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
2: बाय बाय।
1: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली। नई फिल्में उसको जमी नहीं तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया, जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
3: ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है। इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप से इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, हाँ, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेटिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार। एक बार पढ़ तो लूं, कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूँ या आरजू ये जहाँ कहूँ, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो, जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना ना नींद आती है ना चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन हो उठता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम, जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है, जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है, आ रही है फीलिंग, आ रही है। अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं, चलो।
2: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने, ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं है? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें। अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
3: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता। मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
2: अच्छा यार एक काम कर तू,
3: बोल।
2: अभी तो रहने ही दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
3: हाँ।
2: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
3: आता हूँ भाई, आता हूँ। कौन टपक पड़ा यार?
5: अरे तुम, तुम व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी क्या?
0: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं, सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
3: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
0: मैं तो प्राण दे दूं पतिदेव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
3: थैंक गॉड।
1: नीरज मन ही मन खुश था। नीरज की मुसीबत टल चुकी थी। पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी। खुशी खुशी दफ्तर गया, पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था। प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी। आंखों से प्रेम की धारा नहीं, आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
0: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
3: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
0: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
3: क्या?
0: अरे क्या समझा था तुम्हें, और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता, और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
3: क्या कह रही हो?
0: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या। अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
3: क्या कह रही हो?
0: सींग कटा कर बछड़े बन रहे थे तुम। तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
3: पाप? ओहो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
0: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
3: अरे तुम
0: उसकी इबारत पढ़ो ना, तुम खाने में, तुम खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं, और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है?
3: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी तुम।
0: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गैरत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो, या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
3: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। सच मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
0: और ये आगे भी तो देखो।
3: अरे
0: रहन दो, बस बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तुम।
3: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
0: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है।
3: हाँ ना? हाँ मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
0: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरी कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है?
3: अरे यार।
0: और आगे ये देखो क्या लिखा है। चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
3: अरे क्या
0: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
3: यार
0: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है जिसे आंखें सेकने के लिए तुमने।
3: अरे यार इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
0: ओहो बड़े बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार। कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे। पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
3: अरे जाने मन क्या।
0: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
3: ऐसा जुलम ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता
0: बिल्कुल नहीं।
3: तो तुम अशोक को बुला लो, अशोक को तुम बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बीच में, चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज यार ऐसा कर।
2: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
0: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं, पर हरकत जी जी, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक मैं आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो
2: ओहो तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
0: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे, पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
2: 100% सच कह रहा हूँ भाभी, आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
0: नहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं झूला गायन, जिसे पेश कर रही हैं आस्था गोस्वामी।
1: आज की मेरी प्रस्तुति में मैं मुख्य रूप से झूले गाऊंगी, वो ब्रज का झूला हो या नंदगांव का झूला हो या पूरब का झूला हो। तो देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ झूलास एंड लेस ऑफ कजरीज। तो सबसे पहले मैं एक झूले का पद आपको सुना रही हूँ, जो कि राग देश में मैंने उसको सुरबद्ध किया है, और बोल है, चलो पिया वाही कदंब तल झूलें।

बड़े प्रेम से सजाया है और बलराम और मोहन को उस पर विराजित करके उन्हें वो झूला झुला रही हैं। तो नंदगांव का ये एक झूला

ब्रज के बाद अब मैं आपको पूरब में ले चलती हूँ और पूरब की एक चीज सुनाती हूँ। रंग अभी झूले का ही रहेगा। ऋतु भी मल्हार गाने की ही है, इसीलिए इस बंदिश का

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया झूला गायन, जिसकी प्रस्तुतकर्ता थी आस्था गोस्वामी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर न आए।
0: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं,

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अब से लेकर रात के 10 बजे तक आप सुनते रहेंगे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
3: यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युतस्य जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनकी सहायता के बिना शूरवीर युद्ध में विजयी नहीं होते, युद्धरत वीर पुरुष अपने संरक्षण के लिए जिन्हें पुकारते हैं, जो समस्त संसार को यथाविधि जानते हुए अपरिमित शक्ति वाले शत्रुओं का संहार कर देते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह शश्वतो महियेनो दधानान मन्यमाना छर्वा जघान, यह शर्धते नानु ददाति श्रद्ध्याम, यो दस्योर्हंता स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनने अपने वज्र से महान पापी शत्रुओं का हनन किया, जो अहंकारी मनुष्यों का गर्व नष्ट कर देते हैं, जो दूसरे के पदार्थों का हरण करने वाले दुष्टों के नाशक हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह शंबरम पर्वतेषु क्षियंतम चत्वारिश्याम शरद्यन ववविंदत, ओजायमानम यो अहिम जघान दानुम शयानम स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनने 40वें वर्ष में पर्वत में छिपे हुए शंबर राक्षस को ढूंढ निकाला, जिनने जल को रोककर रखने वाले सोए हुए असुर वृत्र को मारा, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सप्तरश्मिर वृषभस्तु विष्मान वासृजत्सर तवे सप्तसिंधून, यो रौहिणमस्फुरद वज्रबाहुर द्यामारोहंतम स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनने 7 नदियों को सूर्य की 7 किरणों की भांति बलशाली और ओजस्वी रूप में प्रभावित किया, जिनने द्युलोक की ओर चढ़ती रोहिणी को अपने हाथ के वज्र से रोक लिया, वे ही इंद्रदेव हैं। द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते शुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते, यह सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जना स इन्द्रः। हे मनुष्यो, जिनके प्रति द्युलोक तथा पृथ्वीलोक नमनशील हैं, जिनके बल से पर्वत भयभीत रहते हैं, जो सोमपान करने वाले वज्र के समान भुजाओं वाले तथा शरीर से महान बलशाली हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सुनवंत मवति यह, पचंतम यह, शंसंतम यह, शशमानमूति, यस्य ब्रह्म वर्धनम, यस्य सोमो यस्येदम राधः स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जो सोमरस निकालने वाले, शोधित करने वाले, स्तोत्रों के द्वारा स्तुतियां करने वाले को अपने रक्षा साधनों से संरक्षण प्रदान करते हैं, जिनके स्तोत्र एवं सोम हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यह सुन्वते पचते दुध्र आचिद्वाजम दरदर्शी स किलासि सत्यः वयम् त इंद्र विश्ववः प्रियासः सुवीरासो विदथमा विदेम। जो सोम यज्ञ करने वाले तथा सोम रस को शोधित करने वाले याजक को धन प्रदान करते हैं, वे निश्चित रूप से सत्य रूप इंद्रदेव हैं। हे इंद्रदेव, हम संतति युक्त प्रियजनों के साथ सदैव आपका यशोगान करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में।

हर तरफ बस उसी का नूर है, कण कण में बस वही उपस्थित है। नजर जहां ठहर जाए तो हर दिशा में वही दिखाई दे, कभी प्रकाश बनकर, कभी शांति बनकर, और कभी हमारा विश्वास बनकर।

और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और तमिल भाषा के विद्वान चिदंबरम पिल्लई का।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

वो अनुभूति जो अपनी जन्मभूमि को मां तुल्य सम्मान दे धन्य है। वो भावना जो मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए कंटक पथ पर चलना स्वीकार करे प्रणम्य है। ऐसी ही भावना मन में लिए अनगिनत भारतवासी अपनी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरा भारत इस स्वाधीनता समर में संलग्न था। दक्षिण भारत के एक ऐसे ही स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और तमिल भाषा के विद्वान थे चिदंबरम पिल्लई। चिदंबरम पिल्लई का जन्म 5 सितंबर सन 1872 को तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के ओट्टपिडारम नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता उलगनाथन पिल्लई एक वकील थे तथा माता परमाई अम्मा एक धार्मिक आस्था से संपन्न महिला थीं। 6 वर्ष की उम्र में चिदंबरम पिल्लई ने तमिल भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। घर पर उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी। खेलों के प्रति भी उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने कबड्डी, घुड़सवारी, तैराकी, धनुर्विद्या, कुश्ती और शतरंज खेलना सीखा। इस तरह उनका एक समृद्ध बचपन रहा। उनकी स्कूली शिक्षा तिरुनेलवेली में हुई तथा पिता की ही तरह वकील बनने का सपना लिए तिरुचिरापल्ली से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो ओट्टपिडारम लौट आए और वकालत शुरू की। संत रामकृष्णांतर से चेन्नई में हुई उनकी मुलाकात ने उन्हें देश हित में कार्य करने हेतु प्रेरित किया। संत रामकृष्णांतर स्वामी विवेकानंद आश्रम से संबंधित थे। उनसे प्रभावित होकर ही चिदंबरम पिल्लई का रुझान देश और उसकी राजनीति की तरफ हुआ। तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती से वो चेन्नई में मिले। साहित्य के प्रति उनके भीतर सदा से प्रेम था, इसलिए दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ती चली गई। सुब्रमण्यम भारती के विचारों और शब्द संपदा से वो इतना प्रभावित हुए कि दोनों अभिन्न मित्र बन गए।

दरअसल चिदंबरम पिल्लई शुरू से ही शैव सभा से जुड़े हुए थे और उनका रुझान साहित्य और संस्कृति की ओर रहा। तत्कालीन लेखकों और साहित्यकारों से उनका मिलना जुलना युवावस्था से ही आरंभ हो गया था। एक दिन उनके किसी साथी ने बाल गंगाधर तिलक का लेख उन्हें पढ़ने के लिए दिया। चिदंबरम पिल्लई पर तिलक जी के लेख का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनके भीतर देश को आजाद कराने की तड़प पैदा हो गई। इस बीच अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, जिसके विरोध में तीखी प्रतिक्रिया हुई। देश भर में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सिलसिला आरंभ हो गया। चिदंबरम पिल्लई ने भी विदेशी वस्तुओं और अंग्रेजों के स्कूलों और संस्थानों के बहिष्कार की अपील की। लोगों ने पानी में खड़े होकर मां काली की शपथ ली। विदेशी वस्तुओं और अंग्रेजों की संस्थाओं का प्रबल बहिष्कार आरंभ हुआ। तूतुकुड़ी और आसपास के इलाकों में इतना जबरदस्त असर हुआ कि चिदंबरम पिल्लई ब्रिटिश पुलिस की नजर में आ गए। लाल, बाल और पाल की तिकड़ी द्वारा पोषित स्वदेशी आंदोलन ने दक्षिण के लोगों को भी जगा दिया था। चिदंबरम पिल्लई ने तिलक जी को अपना गुरु माना। उनके भीतर प्रतिकार की ये भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। वो जिस क्षेत्र में रहते थे वो व्यापार का बड़ा केंद्र था। वहां के समुद्री तटों पर ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाजों का कब्जा था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश कंपनियां भारत के उत्पादों को विदेशों में बेचकर लाभ कमाया करती थीं। चिदंबरम पिल्लई चाहते थे कि एक देसी जहाज कंपनी हो ताकि उत्पादों का लाभ भारतीयों को मिले। दिसंबर सन 1906 में चिदंबरम पिल्लई ने एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई और इसका एक जहाज पानी में उतार दिया। उनकी कंपनी का दाम कम होने के कारण उन्हें अधिक यात्री और कारोबारी मिलने लगे। ब्रिटिश कंपनी को अब एक सशक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इस बात से वो बौखला गई। समुद्र पर उनके एकाधिकार को चिदंबरम पिल्लई ने कड़ी चुनौती दे दी थी, इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने कानूनी अड़चने लगवाकर देसी कंपनी के रास्ते में अवरोध पैदा करने का भरपूर प्रयास किया, क्योंकि पुलिस और प्रशासन उनके साथ थे। लेकिन चिदंबरम पिल्लई ने हार नहीं मानी। उन्होंने पैसे जुटाए तथा दो और जहाज खरीद लिए, जो पहले जहाज से भी बड़े थे।

तूतुकुड़ी के मिल मजदूरों की दशा भी बहुत दयनीय थी। सख्त काम की शर्तों के साथ उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। मजदूरों को जागरूक करने के लिए चिदंबरम पिल्लई ने 23 फरवरी 1908 को ज्वलंत भाषण दिया। उनके साथ थे सुब्रमण्यम शिवा। भाषण का प्रभाव ऐसा रहा कि मिल मजदूर हड़ताल पर चले गए। चिदंबरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा ने इस हड़ताल का नेतृत्व किया। इस हड़ताल का ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि लोगों का भी अपार सहयोग इसे प्राप्त हुआ। अंततः मजदूरों की मांगें मान ली गईं। विपिन चंद्र पाल जब जेल से रिहा हुए तब उनकी जेल मुक्ति समारोह का आयोजन हुआ था। इस समारोह में चिदंबरम पिल्लई ने जो भाषण दिया उसने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए। पुलिस ने उन्हें बुलाया और राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की सलाह दी, लेकिन चिदंबरम पिल्लई ने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया। अंततः वो अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी का प्रबल विरोध हुआ, ब्रिटिश राज के साथ संघर्ष चला और अंततः चिदंबरम पिल्लई पर देशद्रोह का अभियोग लगाया गया तथा उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चिदंबरम पिल्लई सेंट्रल जेल कोयम्बटूर में बंदी बनाकर रखे गए थे। इस फैसले के विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की तथा उनकी सजा कम हो गई। ये सजा घटाकर 4 वर्ष कारावास और 6 वर्ष नजरबंदी कर दी गई। चिदंबरम पिल्लई ने कोयम्बटूर और कन्नूर की जेलों में ये सजा पूरी की। जेल में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। उन्हें कोल्हू में बैल की जगह जोता गया, ठीक वैसे ही जैसे आजीवन कारावास प्राप्त कैदी को जोता जाता था। 24 दिसंबर 1912 को वो जेल से रिहा हुए। इस बीच उनकी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का दिवाला निकल चुका था तथा उनकी वकालत का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। इस तरह अब आर्थिक संकट से जूझते हुए उनका जीवन आगे बढ़ने लगा, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन में वो लगातार सक्रिय रहे। सन 1920 में गांधी जी से सैद्धांतिक मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दिया था। चिदंबरम पिल्लई ने आजीवन देश की सेवा की। उन्होंने स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म संघ, नेसवुसालई, मद्रास एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड और देशाभिमान संगम जैसी संस्थाओं की स्थापना की थी। अपनी जीवन संध्या में उन्होंने तूतुकुड़ी में रहते हुए साहित्य साधना की, अनेक पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया। वीओसी के नाम से विख्यात चिदंबरम पिल्लई ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवनी तमिल भाषा में लिखी। ये अपने गुरु के प्रति उनकी आदरांजलि थी। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुकुरल पर उनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध हुआ। आजीवन साधनारत रहते हुए चिदंबरम पिल्लई ने 18 नवंबर सन 1936 को अंतिम सांस ली। ऐसी महान विभूति को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है कान्हा की बाल लीलाएं।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम बाल सभा। अब नाम ही बाल सभा है तो फिर बाल सभा में बातें भी तो वही होनी चाहिए जो आपके मन को भाएं। तो आज हम आपको एक ऐसे बाल सखा से मिलवा रहे हैं जो आपकी हर उम्र में, जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपकी बुजुर्ग हो जाने तक, हमेशा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। उनकी कही बातें, उनकी लीलाएं, उनका दिया गया ज्ञान हम सबको पल पल पर ध्यान भी आता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे आज। क्योंकि नन्हे से कृष्ण, सिर पर मोर पंख, हाथ में मुरली, पैरों में छोटी छोटी पायल, गले में वैजंती माला और चेहरे पर ऐसी प्यारी सी मुस्कान कि जिसे देखकर यशोदा मैया भी अपनी सारी नाराजगी भूल जाती थी। इसीलिए तो कान्हा कैसे कैसे प्रश्न कर लेते थे, याद है आपको? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। अब बताइए, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कभी किसी से? लेकिन जो बाल कान्हा हैं वो कुछ भी पूछ लेते थे अपनी मैया से। कभी माखन की मटकी के पीछे भागते कान्हा, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते कान्हा, कभी जमुना जी के किनारे गायों के बीच घूमते कान्हा, तो कभी अपनी मुरली की धुन से पूरे वृंदावन को मोहित करने वाले कान्हा। और इसलिए ही तो आज मैं आपको ऐसी ही कान्हा की बाल लीलाएं बता बता के उनकी शरारतों में छुपे प्रेम को सुनाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि कैसे हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक हैं ये सारी लीलाएं। आज हम ज़रूर कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी हम सबको उनका दिया ज्ञान कैसे कैसे अपने साथ समाहित कर लेता है। अब देखिए, कृष्ण जी का जन्म तो अंधकार में ही हुआ था, कहानी यहीं से शुरू होती है। भगवान विष्णु ने देवकी को सूचित किया कि वो शीघ्र ही आठवीं संतान के रूप में उनकी कोख से जन्म लेने वाले हैं। वे वासुदेव से बोले, मेरे जन्म लेते ही आप मुझे लेकर अपने मित्र गोकुलवासी नंद बाबा के घर जाएं। वहां उनकी पत्नी यशोदा एक बालिका को जन्म दे चुकी होंगी, मुझे उन्हें सौंप कर आप उनकी नवजात बालिका को ले आएं तथा माता देवकी की गोद में डाल दें, किसी प्रकार का भय ना करें। ऐसा कह विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अर्धरात्रि के समय देवकी ने बालक को जन्म दिया। बालक रोया नहीं। वासुदेव ने नवजात शिशु के लिए कंस द्वारा रखवाई गई टोकरी में बालक को रखा, फिर कई पल तक वात्सल्य भरे सजल नेत्रों से अपलक उसे निहारते रहे। तभी वासुदेव के मस्तिष्क में प्रश्न कौंधा, जंजीरों से बंधा एक कैदी नवजात शिशु को कैसे सुरक्षित गोकुल पहुंचा सकता है? इसका उत्तर तुरंत मिला। उनकी जंजीरें खुलकर नीचे गिर पड़ी। वासुदेव समझ गए कि ईश्वर की लीला शुरू हो चुकी है। बस फिर क्या था, उन्होंने टोकरी उठाई और बाहर की ओर चल दिए। कारागार का द्वार खुला और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी के मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो चुकी थीं। बस यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की लीला। कितनी कठिन परिस्थिति थी, और वही आधी रात का समय, चारों तरफ घोर अंधकार। लेकिन उसी अंधकार के बीच जब जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, तो कितनी अद्भुत रात होगी वो। उसके बाद यमुना जी ने कैसे चरण पखारे हैं, आप सुनकर देखिए। बाहर बादल अभी गरज ही रहे थे, बिजलियां कड़क रही थीं, मूसलाधार बरसात होने लगी, पर वासुदेव निर्भय निर्विरोध आगे बढ़ते रहे। इस बात से अनभिज्ञ कि भगवान विष्णु के 1000 फनों वाले सेवक शेषनाग उनके ऊपर अपने फनों का विशाल छत्र ताने अदृश्य रूप से साथ साथ चल रहे हैं। यमुना तट पर जाकर वासुदेव ठिठके, लहरें उफन रही थीं, गोकुल यमुना नदी के उस पार था। वासुदेव भगवान का नाम लेकर लहरों में उतर गए। अचानक लहरें ऐसे ऊपर उठीं जैसे वासुदेव को टोकरी समेत लील जाना चाहती हों। शिशु कृष्ण ने यमुना की इच्छा को जानकर अपने पांव नीचे लटका दिए। यमुना चरणों को स्पर्श कर शांत हो गई। चमत्कारिक रूप से वासुदेव के लिए एक शुष्क धरातल वाला गलियारा बन गया। वासुदेव तेजी से आगे बढ़ने लगे। देखिए किस तरह से पवित्र नदी यमुना भी कृष्ण जी के पांव पखार कर शांत हो गई। कैसी है अद्भुत कृष्ण लीला। इसीलिए कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी गहरा हो बच्चों, प्रकाश आने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। यहीं से हमें प्रभु श्री कृष्ण सीख देते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब आगे पहुंचे, अब गोकुल पहुंचे पालनहार। गोकुल की गलियां सुनसान थी। नंद बाबा के घर पहुंचकर वासुदेव ने द्वार खटखटाए, द्वार तुरंत खुल गए। मानो नंद बाबा द्वार के पीछे इसी प्रतीक्षा में तो खड़े हों कि कब वासुदेव आए और वे द्वार खोले। नंद बाबा अपने मित्र को देखकर आश्चर्य से बोले, मित्र वासुदेव, तुम यहां इस समय? तुम तो कंस के कारागार में थे। वासुदेव ने उनकी बात काटते हुए कहा, प्रिय मित्र, इस टोकरी में देवकी की 8वीं संतान है। पापी कंस का काल है। भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ। अपनी सुरक्षा के साए में तुम इसे पालो। भगवान की यह भी आज्ञा है कि इसके बदले अपनी नवजात कन्या तुम मुझे दे दो। नंद बाबा मुस्कुराए, मैं समझ गया मित्र, जरा प्रतीक्षा करो। उन्होंने टोकरी से नवजात शिशु को उठाया और भीतर गए, जहां पलंग पर उनकी पत्नी यशोदा अपनी नवजात बालिका के साथ सो रही थीं। नंद बाबा ने वासुदेव के बालक को यशोदा के बगल में लिटाकर अपनी बालिका को वासुदेव की टोकरी में रख दिया। दोनों मित्र केवल एक दूसरे को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते रहे। वासुदेव ने बालिका को टोकरी से उठाकर देवकी की गोद में रख दिया। देख रहे हैं आप कैसे यशोदा मैया के आंगन में आ गए, कैसे गोकुल की गलियों को हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने ठिठोलियां करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन गलियों में दौड़ते हुए नन्हे कान्हा, कभी घुटनों के बल चलते, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश करते, कभी ऐसी शरारत करते कि बस पूरा घर उनके पीछे दौड़ता रहता। कल्पना कीजिए कि मैया ने घर में माखन रखा है और कान्हा की नज़र उस माखन पर पड़ गई। अब कान्हा सोच रहे हैं कि इसे कैसे पाया जाए, मटकी इतनी ऊपर है, अकेले कैसे पहुंचेंगे। तो कान्हा अपने दोस्तों को बुलाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर माखन की मटकी तक पहुंचते हैं। और माखन मिल गया तो सिर्फ खुद तोड़ी खाएंगे, अपने दोस्तों को भी तो खिलाएंगे। और यहीं से कान्हा की शरारत में छिपी खूबसूरती है कि उनकी खुशी अकेले की खुशी नहीं है बच्चों। ये है हमारा आज का दूसरा ज्ञान कि कान्हा ने कभी किसी भी चीज का उत्सव अकेले नहीं मनाया। माखन मिला तो बांट के खाया, और जब मटकी फूटी तब डांट भी मिल बांट कर खाई। तो बच्चों, जो भी करना है मिल बांट कर करना है। खुश होना है तब भी, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तब भी सबके साथ शेयर करनी है। तो बस ये जो शरारत है ना, कई बार आपने सुना होगा माखन चोर कहते हैं कृष्ण को। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कृष्ण की माखन चोरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? इन छोटी छोटी शरारतों में वो कितने लोगों से एक साथ जुड़ते हैं, कितने लोगों के बाल कान्हा बन जाते हैं वो। अपनी इन बाल सुलभ चेष्टाओं से कितने लोगों का दिल हर लेते हैं कान्हा, है ना। इसीलिए तो कृष्ण का गोकुल हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी रिश्तों में है, तो रिश्ते बनाइए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह कान्हा ने अपनी छोटी छोटी सी बाल लीलाओं से कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। तो अब आते हैं पूतना वध पर। कंस को ये विश्वास हो गया था कि उनके विरुद्ध कोई दैवीय षड्यंत्र रचा गया है। तभी तो देवकी की 8वीं संतान को किसी और के गर्भ में भेज दिया गया। इसलिए अपने काल को समाप्त करने के लिए कंस ने भयानक राक्षसी को बुलाकर आज्ञा दी। पूतना मथुरा या उसके आसपास के क्षेत्र में सावन माह में किसी स्त्री ने मेरे काल रूप को जन्म दिया है। तुम इस समूचे क्षेत्र में सावन में जन्मे बच्चों को समाप्त कर दो। फिर क्या था, पूतना ने विष का लेप किया और गोकुल जा पहुंची। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धर के नंद बाबा के घर गई और अन्य स्त्रियों की भांति कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दुलारने लगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया अंदर गई, पूतना ने अवसर ताड़कर कृष्ण जी को अपना दूध पिलाना चाहा। लेकिन फिर क्या था, बाल कान्हा ने उनके प्राण ही खींच लिए और मायावी पूतना मृत होकर जमीन पर आ गिरी। देखा आपने किस इरादे से भेजा गया था पूतना को कंस के द्वारा। लेकिन बच्चों, यहीं से बाल कान्हा की छोटी छोटी सी दैवीय शक्तियों से लोग ताकते रह गए कि ये क्या है। पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा के आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। इसके बाद क्या था, पूतना की मृत्यु ने कंस के सभी संदेह मिटा दिए। सिद्ध हो गया कि नंद बाबा का बालक कृष्ण ही उनका काल है। इसलिए इस बार कृष्ण को मारने के लिए बच्चों कंस ने तृणावर्त नामक मायाधारी राक्षस को भेजा। उसने क्या किया पता है, वो वायु का झोंका बनकर गोकुल पहुंचा। उस समय कृष्ण को गोद में लिए यशोदा घर के बाहर बैठी हुई थी। तृणावर्त की माया से यशोदा को एकाएक कृष्ण का भार बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अचानक होने वाले इस बदलाव को देखकर वो घबरा गई और उन्हें पालने में लिटाकर नंद बाबा को बुलाने भीतर भागी। इसी बीच अवसर पाकर तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया, अपने कंधे पर बैठाकर बवंडर बनकर आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंच तृणावर्त ने बालक कृष्ण को मारने के लिए अपने शरीर को खूब झटके दिए, टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन कृष्ण तो जोंक की तरह उसकी गर्दन से चिपक गए और बाज के पंजों की तरह उनकी उंगलियां दुष्ट राक्षस की गर्दन में गढ़ती जा रही थीं। तृणावर्त उनके बोझ तले दबकर धड़ाम से धरती पर आ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब माता यशोदा, नंद बाबा और दूसरे ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक कृष्ण को पर्वताकार दानव के मृत शरीर के पास अपना अंगूठा चूसते देखा। सुना बच्चों, कैसे छोटे से नन्हे से बालक बनकर कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटा दी, और इसके बाद फिर धीरे धीरे लीलाएं और चमत्कारों का क्रम आगे बढ़ता गया। एक दिन माँ यशोदा ने बालक कृष्ण को मिट्टी फांकते हुए देखा, चिल्लाती हुई कृष्ण की ओर दौड़ी और आकर उनके कान पकड़ लिए। कृष्ण ने सिर हिलाकर मिट्टी खाने के आरोप को नकार दिया। यशोदा ने बालक को मुंह खोलने पर मजबूर किया ताकि वो उंगली से मिट्टी बाहर निकाल सकें। नन्हे कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ठगी रह गई। कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का विहंगम दृश्य नजर आ रहा था। वात्सल्य और भक्ति से विभोर होकर यशोदा ने कृष्ण को अपने अंक में भर लिया। ऐसे ही एक दिन फल बेचने वाले की पुकार सुनकर बालक कृष्ण फल खरीदने मुट्ठी भर चावल लेकर बाहर की ओर दौड़े। जब फल वाली तक पहुंचे तब सारे चावल उंगलियों के बीच से होकर दाना दाना गिर गए। फल वाली ने बालक के भोलेपन पर न्योछावर होकर काफी सारे फल वैसे ही दे दिए। फल वाली जब घर पहुंची तो अपनी टोकरी देखकर विस्मित रह गई। टोकरी में उसके बचे फल मूल्यवान रत्नों की ढेरियों में परिवर्तित हो गए थे। तो बच्चों, ये कान्हा की बाल लीलाएं आखिर मैं आपको सुना क्यों रही हूं? पहले तो ये बताइए कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, गीत गोविंद सुनती हूँ और फिर मैं बहुत सुंदर सुंदर पद सुनती हूँ जो कान्हा के लिए लिखे गए हैं, मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चे को कान्हा की बाल लीलाएं जाननी चाहिए। बच्चों, जब उन्हें सुनो तो जीवन का मार्ग दिखाई देता है, जब उनके बारे में पढ़ो तो जीवन की कठिनाइयां ऐसे लगती हैं जैसे वो दानव थे ना, आते तो थे कभी बवंडर का रूप लेकर, कभी मायावी राक्षस तरह तरह की माया रच कर आते थे, लेकिन कृष्ण के सामने बहुत बोने नजर आते थे। तो ऐसे कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस रूप में कृष्ण को देखते हैं वो आपको उसी रूप में नजर आते हैं। कभी वो द्रौपदी का चीर बन जाते हैं, कभी वो पूतना को जमीन पर गिराने वाला बालक बनकर अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसे कान्हा की कहानी मैं आपको सुनाकर आज सच मायने में बच्चों खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य ही तो है जब आप जैसे नन्हे मुन्ने अगर रेडियो कान से लगाए सुनना चाह रहे हैं कि कुछ और कहानियाँ बताइए। आ रही है ना आपके मन में ये बात? तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको और बहुत सारी कहानियां सुनाने का दिल कर रहा है, लेकिन समय की ये थोड़ी सी मांग है कि आज थोड़ी कम कहानियां सुनाओ, अगली बार थोड़ी और सुना देना। तो मैंने सोचा है कि ये कान्हा की बाल लीला है ना बच्चों, अगली बार सभा में भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन अभी एक बात और बता देती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि माँ यशोदा का ध्यान आकर्षित करने के लिए ना कृष्ण हर तिकड़म का सहारा लेते थे। एक दिन यशोदा माँ दही बिलो रही थी तो कृष्ण ने दूध पीने के लिए रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। उसके बाद क्या था, यशोदा अपनी गोदी में बिठाकर दही बिलोते हुए दूध पिलाना पड़ा। तभी यशोदा को याद आया कि रसोई में वो चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रख आई हैं। बदहवासी में वो कृष्ण जी को वहीं छोड़कर भीतर भागी। बालक कृष्ण को अपनी उपेक्षा पर अत्यंत क्रोध आया और बालक कृष्ण ने दही वाला घड़ा मथनी मारकर फोड़ दिया। सारा दही फर्श पर फैल गया। अब कृष्ण ने उस कोठरी की ओर कदम बढ़ाए जहां छत से लटकते घड़ों में मक्खन रखा था। नटखट बालक ने वहां रखी बड़ी सी ओखली पर चढ़कर कुछ घड़े नीचे पटक दिए। घड़े गिरने की आवाज सुनकर कुछ बंदर और नन्हे कान्हा के दोस्त कूद कर अंदर आ गए और माखन की दावत उड़ाने लगे। कृष्ण स्वयं एक घड़ा लेकर ओखली पर बैठ मुट्ठी भर भर कर माखन फाटने लगे। आधा मक्खन मुंह में जा रहा था और आधा शरीर पर और आधा कपड़ों पर। जब यशोदा मैया बाहर आईं तो सारी दही फर्श पर फैली देखकर सन्न रह गई। उन्हें कृष्ण के दही में लिथड़े नन्हे पैरों के निशान दिखे तो मक्खन की कोठरी की ओर गए थे। वो बस दौड़कर कोठरी के द्वार पर पहुंची और वहां उड़ रही मक्खन की दावत का नजारा देखकर संयम खो बैठी और क्रोधित स्वर में कृष्ण पर चीखी। माता यशोदा का तमतमाया मुखड़ा देखकर कृष्ण को आभास हो गया कि आज खैर नहीं। कृष्ण ओखली पर से कूदकर खिड़की से बाहर भागे। एक डंडा लेकर यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ी और माँ बेटे की दौड़ कमरों बरामदों आंगन को नापती हुई काफी देर तक जारी रही। अंत में यशोदा ने जब कृष्ण को पकड़ लिया तो नटखट ने ऐसा प्यारा सा मुखड़ा बनाया और रोना शुरू कर दिया कि यशोदा माँ भी नरम पड़ गई। बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं दंड दूंगी, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा दंड तो दूंगी। तो यशोदा ने कृष्ण को कुछ समय के लिए उसी बड़ी ओखल से बांधने का प्रयास किया, पर रस्सी जरा छोटी पड़ गई। यशोदा ने और रस्सी जोड़ी, वो भी छोटी रह गई। कई रस्सियां जोड़ी, पर हर बार रस्सी जो थी वो रहस्यमय ढंग से छोटी पड़ती रही। अंत में हताश होकर यशोदा रो पड़ी और बोली कि अरे दुष्ट, क्यों सताता है, क्या मिलता है मुझे सताकर। तब कृष्ण को यशोदा माँ पे तरस आया और वो स्वयं स्नेह पाश में बंध गए। अब आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जब नटखट बालक के रूप में आते हैं तो माँ की डांट खाते हैं। तो आप जैसे बच्चे मुझे कभी कभी मिलने पर जब ये बताते हैं कि मम्मी डांटती बहुत है, तो उन सब बच्चों के लिए आज मुझे ये कहना है कि देखिए ना, कान्हा भी तो जब बचपन में बच्चा बनकर आए थे तो माँ यशोदा की कितनी डांट खाई थी। और तो और, प्रभु श्री कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता, वो माता यशोदा ही थी जिन्होंने उन्हें स्नेह पाश में बांध लिया। तो ऐसी ऐसी बाल लीलाओं को जबकि मैं आपको सुना रही हूँ और फिर घड़ी भी देख रही हूँ तो लग रहा है कि आज थोड़ी और बात करनी चाहिए थी, पर नहीं, आज इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी मैंने आपको बाल लीलाएं सुनाई हैं। और यकीन मानिए बच्चों, मैं यहाँ अभी ख़त्म नहीं करूँगी। मैं बाल सभा में जब अगली बार आपसे मिलूँगी तो थोड़ी और कृष्ण लीलाएँ बताऊँगी। इसलिए बच्चों, क्योंकि हमें कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें हर दिन कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ों का सम्मान, दोस्तों की दोस्ती का मान और दुनिया में जो लोग राक्षस समान हैं, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई गंदी आदत भी हो सकती है, क्योंकि अब तो राक्षस होते नहीं, तो आपकी गंदी आदतें, आपका आलस, आपका बिल्कुल भी डिसिप्लिन में ना होना, ये सब क्या बोलते हैं इनको, राक्षसी प्रवृत्तियां, है ना। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब बच्चे देर से उठते हैं तो क्या बेटा तुम्हारे अंदर बहुत राक्षसी प्रवृत्ति आ रही है। तो ये प्रवृत्तियां ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा इंसान बना देती हैं। एक दिन मैंने आपको एक कविता सुनाई थी कि बूंदों का आखिर क्या था दोष, एक बूंद सीप पर गिरेगी और मोती बन जाएगी, दूसरी बूंद नाली में गिरेगी और कीचड़ कहलाएगी। तो बच्चों, आज की ये कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी संगत का भी ख्याल रखिएगा, और अगर आपको बाल लीलाएं और सुननी है तो अगले हफ्ते तक मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते चलते वो समय आ गया है जब हम और आप छोटे छोटे से कुछ संकल्प लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ये जो मुरली की धुन बज रही है इसमें शांति से बैठने का प्रयास कीजिए। कृष्ण को समझने के लिए बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है बच्चों, कभी कभी उन्हें समझने के लिए हमें आप जैसा बच्चा बनना पड़ता है। तो बस आज इस बाल सभा में पहला संकल्प यही है कि थोड़ा थोड़ा पूरे दिन मुस्कुराएंगे। आज पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेलेंगे भी, किसी दोस्त को गले लगाएंगे, माता पिता का बहुत सम्मान करेंगे, और हाँ, प्रकृति के करीब जरूर जाएंगे, क्योंकि कान्हा कभी गैया को चराने के बहाने, कभी गोपियों को छेड़ने के बहाने, कभी पेड़ पर बांसुरी बजाने के बहाने प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। और ये स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मैं वृक्षों की बात करूं तो वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बहुत ख्याल रखेंगे। तो अब इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ आज बाल सभा को समाप्त करें। उससे पहले आप सब आंखें खोल लीजिए, अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से आंख पर लगाइए और इसी मुरली की धुन पर शांति से अब मुझे यानी अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए। ठीक है बच्चों, अगली बार बाल सभा में फिर ऐसी ही बातें लेकर जल्द ही मुलाकात होगी। चलूँ अभी, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह। बच्चों मिलते हैं अगली बार बाल सभा में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था कान्हा की बाल लीलाएं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौर, ध्वनि संपादन अमित कुंधानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।
1: बाल सभा।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उम्र या को छोड़ो।

0: वो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेक क्रू। इसके अंतर्गत आज सुनिए एआई पार्ट टू के अंतर्गत इस विषय पर विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच से रत्नेश सोनी की बातचीत।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। टेक गुरु के संग में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने एआई विषय पर पहले बात की थी, बात आज भी करेंगे एआई पर, लेकिन आज जानेंगे एआई से क्या कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट कंप्यूटर ही है, या कंप्यूटर के बाद ये रिप्लेसमेंट मानव को भी करेगा, और ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस विषय की जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: अगर अपन फायदे की बात करें तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मसलन धीरे धीरे अभी लोगों तक पहुंचेगी, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि कंप्यूटर आया था तो एक डर था कि कंप्यूटर आया तो अब तो ये तो सारे काम कर लेता है, टाइपराइटर हटा, तो मशीनरी चेंज हुई, ये बात तो समझ में आती है, मतलब मशीन का रिप्लेसमेंट मशीन हुआ, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक तो मशीन से मानव का रिप्लेसमेंट होगा नहीं होगा, कितना होगा, इस पर आपने कहा भी था कि आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ भूलना पड़ेगा, ये निरंतर चलते रहने वाला क्रिया है, ये कहें तो उसी का हिस्सा कहीं ना कहीं AI है। AI से अभी जो लोग हैं वो AI को केवल सुना सुना है, एक ChatGPT तक कुछ लोगों की पहुंच पहुंची है। जैसे एप्लीकेशन की बात करें, हर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी पहली एप्लीकेशन किसी क्लास में सीखता है, फोर्थ क्लास हो सकती है, फिफ्थ क्लास हो सकती है, पांचवीं, छठी, सातवीं, कोई भी हो सकती है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रह गई है। अब वो ChatGPT में अगर तुरंत कोई एप्लीकेशन डालता तो उस एप्लीकेशन तुरंत मिल जाएगी, अदरवाइज उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए उसे क्लास में सिखाई जाती थी, वो उसको सीखता था, शायद संभवतः कई तो ऐसे भी होते थे कि उसमें वो इसी एप्लीकेशन में छोटे मोटे सुधार करके शायद 10वीं या 12वीं के आगे तक वो एप्लीकेशन चलती रहती थी। अब AI के पास ये जानकारी इस तरह की, वो 5वीं तक के बच्चे को अलग तरह की एप्लीकेशन समझाएगा और 10वीं या कॉलेज के लेवल को, क्या ये सही बात है?
3: देखिए, AI एक ऐसा मान लीजिए कि वो एक सर्व सुविधा युक्त जिन है, पॉपुलर कल्चर के एक उदाहरण में दे रहा हूँ। अब उससे आप वरदान में कंघा भी मांग सकते हैं और बाल भी मांग सकते हैं, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा वो जवाब देगा। इंटरनेट के बारे में भी यही कहा जा सकता है, आप एंटरटेन भी हो सकते हैं और उसकी मदद से कुछ सीख सकते हैं। तो AI भी ऐसे ही है, अगर सही तरीके से प्रॉम्प्ट किया जाए तो यकीनन वो मतलब बहुत अच्छा टीचर बनाया जा सकता है, बशर्ते उसके ट्रेनिंग डेटा सेट, मतलब कौन से डेटा से ट्रेन किया हो, इस बारे में हमको ट्रांसपेरेंसी हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ इसका ट्रेनिंग डेटा सेट कहीं बायस नहीं है। तो AI के हर आउटपुट पे और ट्रेनिंग डेटा सेट पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हो रहा है तो AI की मदद से फर्स्ट क्लास का लड़का, उसके लिए उसके हिसाब से, उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से एक अलग कोर्स तैयार किया जा सकता है सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट के द्वारा, और 5वीं कक्षा के लिए अलग किया जा सकता है, 10वीं के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग। मैंने बताया ना, ये हर किसी को उपयोग करके देखना चाहिए ChatGPT की। इमेजिन यू आर अ टीचर, एक्सप्लेन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ले लीजिए, कोई भी जियोपॉलिटिकल विषय ले लीजिए, एनी टॉपिक टू मी लाइक आई एम अ क्लास 5th स्टूडेंट, और वो बड़े अच्छे से क्लास 5th के स्टूडेंट के लेवल के आधार पर। अब उसके डेटाबेस में, ट्रेनिंग डेटाबेस में क्लास 5th के बच्चे का लेवल क्या है वो डिपेंड करता है कि वो क्लास 5th के बच्चे को कैसे परसीव करेगा, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है।
2: आपने ChatGPT का नाम लिया, एक सामान्य आदमी के लिए अपन बात करते हैं, जो लोग इससे रूबरू हो गए हैं मान लेते हैं, और जो नहीं हुए, एक ChatGPT एक ऐप है, इसको डाउनलोड करना है और फिर वो संभवतः टेक्स्ट को लेकर, ऑडियो को लेकर या वीडियो को लेकर अलग अलग जानकारी दे पा रहे हैं, ये मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और ऐप या कौन से?
3: बहुत सारी है। देखिए, ChatGPT तो सबसे ज्यादा फेमस हो गई, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जो कहते हैं अपन, 2022 के एंड में आया और बस वो पूरे दुनिया में छा गया। फिर ये इस साल की शुरुआत में वो गिबली आर्ट, इमेजेस से कार्टून बनाना, जितने लोग उस टाइम नहीं सीख पाए थे वो उन्होंने गिबली आर्ट के टाइम पे सीख लिया। लेकिन ऐसे कई टूल्स है, मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ और मेरी कोशिश रहती है साल भर में 50 किताब पढ़ पाऊं, लेकिन वो करना, 50 किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। गूगल आपका जीमेल अकाउंट है, या अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल का भी ChatGPT के समतुल्य इक्विवेलेंट एक अपना मॉडल है जिसको बोलते हैं Gemini। तो अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो आप Gemini भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ChatGPT से काम कर सकते हैं। Gemini में एक नैनो बनाना करके उसका एक इमेज जनरेशन मॉडल है, वो मतलब फ्लॉलेस है, जबरदस्त है। तो इमेज जनरेशन के लिए मैं जेमिनाई का नैनो बनाना यूज करता हूँ। जेमिनाई कोर मॉडल और चैट जीपीटी दोनों मोरलेस वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिससे टेक्स्ट जनरेट किया जा सकता है। गूगल का एक बहुत उपयोगी फीचर जो है नोटबुक LM, देखिए मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि इसका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है ये अपन को नहीं पता। नोटबुक LM बेसिकली एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो केवल उसी आधार पर जानकारी देता है जो आप उसे बताते हो। उदाहरण के लिए आपने एक पुस्तक की या एक रिपोर्ट की या एक कोर्ट के केस की समरी डाल दी, अब कोर्ट के जजमेंट जो रहते हैं वो आप और मैं शायद उतने आसानी से नहीं समझ पाए, तो आपने PDF 2-3 निकाली और वो PDF किसी भी तकनीकी विषय रिसर्च पेपर हो सकती है, कोर्ट के जजमेंट की हो सकती है, या एक सामान्य किताब का, मैंने शुरुआत किया था किताब का हो सकता है, और वो नोटबुक LM पे आप अपलोड करते हो, है ना, और या फिर आप एक 2.5 घंटे का पॉडकास्ट है यूट्यूब पे उसकी लिंक आपने अपलोड कर दी। नोटबुक LM सिर्फ केवल जो PDF आपने डाली है, जो लिंक आपने शेयर किया है, केवल उसी आधार पे उस कंटेंट की समरी जनरेट करता है। तो नोटबुक LM की मदद से जो साल की 50 किताबें मैं पढ़ पा रहा था, अब वो मैंने 200-250 तक खींच ली है। हर किताब डीप पे जाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक किताब की PDF अपलोड की, उससे पूछा क्या रिलेवेंट पार्ट है, अगर कुछ ऐसा लगता है तो वो किताब के डीप में जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत आसानी, बहुत सुविधा हो जाती है। आप कभी कोशिश करके देखिएगा, आपके यहाँ कोई बीमार है तो उसकी जो मेडिकल केस हिस्ट्री की रिपोर्ट होगी उसकी PDF बना के आप नोटबुक LM में अपलोड कीजिए, उस डेटाबेस के आधार पे आप उससे प्रश्न पूछ लीजिए, जितना सरल हो जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, वो केवल अपलोडेड डेटा के हिसाब से जानकारी देगा। इसमें क्या रहता है कि वो जो बायसनेस वाला, गलत जानकारी वाले जो चीजें रहती है वो कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट आप ही प्रोवाइड कर रहे हो। तो नोटबुक LM इस मामले से बहुत बहुत बढ़िया टूल है। इसके अलावा जैसे जेमिनाई और चैट GPT ये कई बार गलत जानकारी भी देते हैं
2: जी,
3: तो उन गलत जानकारियां जिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में सबसे कम ऐसे मानी जाती हैं वो है एंथ्रोपिक का परप्लेक्सिटी।
2: अच्छा,
3: तो परप्लेक्सिटी में किसी किसी विषय के बारे में आपको सर्च करना है तो आमतौर पे तो ये बिल्कुल सही देंगे, परप्लेक्सिटी हो गया या चैट GPT हो गया या जेमिनाई हो गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि परप्लेक्सिटी के रिजल्ट ज्यादा रेफरेंस रहते हैं। तो जब अपन किसी विषय की गहराई में जाएंगे तो वो जो रेफरेंसेज है वो काम आ जाते हैं, मतलब हो सकता है चैट GPT और जेमिनाई काफी एक स्टेज के बाद हेलुसिनेट करने लगे, डीप में जाते जाते उनको जानकारी नहीं और वो कॉन्फिडेंटली झूठ, हो सकता है, संभावना है कि वो दे रहे, लेकिन चूंकि ये रिलेवेंट रहता है तो एंथ्रोपिक का टेक्निकल शोध के विषय में काफी अच्छा माना जाता है परप्लेक्सिटी। इसके अलावा अगर क्रिएटिव राइटिंग है तो क्लॉड करके एक अलग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, अगर क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग इसकी बात करें तो उसके लिए वो सबसे अच्छा है। अगर आप ट्विटर में बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, नैरेटिव कैसे बढ़ रहे हैं, तो ग्रोक करके एक मॉडल है अपना, एक्स का है, एक्स के मतलब पुराना नाम जिसका ट्विटर था, एलन मस्क की कंपनी, उसके डेटा पे रिजल्ट देता है। तो ये सारे ट्रेनिंग डेटा से चूंकि पास्ट के किसी डेट पे है तो हो सकता है तत्कालिक कंटेम्प्रेरी जानकारी उतनी अच्छे से ना दे पाए, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड जानकारी चाहिए तो ग्रोक इज अ गुड AI मॉडल।
2: जितनी बात अभी आपने और हमने करी उससे एक बात जो समझ में आ रही है मोटी मोटी, वो ये कि जब भी आप AI का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका प्रश्न क्या है उस
3: जी,
2: है ना, जैसा आपका प्रश्न होगा उसी तरह का उत्तर वहां से आएगा। दूसरा, जो जानकारी वो दे रहा है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में कोई बीमार है और आप उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन या वो जो पर्चा होता है डॉक्टर ने, या कोई रिपोर्ट आप उस पर अपलोड कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से भी जो आप प्रश्न पूछेंगे वो आपको उत्तर दे देगा, मैं ठीक कह रहा
3: हूं? जी, इसमें केवियट है, मैंने कहा ना चैट GPT से आप बीमारी का इलाज नहीं पूछ रहे
2: जी,
3: उसमें संभावना है कि हो सकता है गलत दे, लेकिन जो नोटबुक LM है जो एक टूल मैंने बताया था वहां पे आप जो PDF अपलोड करोगे वो उन PDF से ही अपना जवाब देगा, वो इंटरनेट में नहीं जाएगा सर्च करने, या वो अपने डेटाबेस से खुद का ज्ञान नहीं प्रस्तुत करेगा, वो उसी PDF के आधार पर जवाब देगा जो आपने अपलोड किया, तो इस आधार पर वो बता सकता है।
2: कहने का मतलब एक ही कम्युनिकेशन है जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, एक जो व्यक्ति इधर बैठा है जो प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा AI टूल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा और फिर AI ने जो उसका जवाब दिया, दोनों सूरत में महत्वता ये आ रही है कि प्रश्न आपका उतना सटीक हो जैसा आपका प्रश्न वैसा उत्तर वाली बात होगी
3: जी,
2: और दूसरी अति महत्वपूर्ण बात यह कि वो आपको जो भी उत्तर देता है
3: जी,
2: आपको अपने विवेक के साथ उसको क्रॉस चेक भी करना है, जो का तो मतलब जैसे कि आपने कहा कि वो कोई आपको इलाज तो बता नहीं रहा बीमारी का, वो आपको आपकी रिपोर्ट का एनालाइज करके दे रहा है
3: जी,
2: क्या ठीक कह रहा हूं?
3: हाँ, नोटबुक LM से जो हम लोड कर रहे हैं वो हमारी रिपोर्ट को एनालाइज करके हमको दे रहा है, चैट जीपीटी से जो पूछ रहे हैं वो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट पे बेसिस पे जवाब दे रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग शब्द है। तो जहां पे इंटरनेट से या उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में, वहां पे हम लोग ये देखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग डेटा सेट क्या था, कैसा था, उसमें बायस तो नहीं थे। हाँ। या उसके आउटपुट को चेक करना पड़ता है कि ये कितने सही दे रहा है कितने गलत दे रहा है, इससे कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है। आपने केसेस सुने होंगे कि वहां पे लोग जो है उनको सुसाइड के लिए इनकरेज कर लिया, या किसी ने ऐसे लार्ज लैंग्वेज, चूंकि उनका ट्रेनिंग डेटा सेट तो वास्ट है, अब कोई इनसे उदाहरण के लिए ये भी पूछ सकता है कि बम कैसे बनाना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ऐसे फिल्टर लगाने पड़ते हैं इन सोशल,
2: मतलब हर चीज का उपयोग गलत भी हो रहा है।
3: लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली कंपनियां ये बार बार ऐसे फिल्टर लगाती है ताकि उन मॉडल्स का गलत उपयोग ना हो सके। हाँ। लेकिन इस चीज पे हमें भी एज ए यूजर और हमें भी एज अ गवर्नमेंट भी चेक करना पड़ेगा कि इनका ट्रेनिंग डेटा सेट और इनका अप्लाइड यूजर केसेस सिनेरियो ये सही दृष्टि से हो। लेकिन जहां पे ट्रेनिंग डेटा सेट सीमित है, मतलब जैसे नोटबुक एलएम किया, या आपने बोला कि भाई

0: केस
1: का क्या है, दूसरा फिर उत्तर वो आपको क्या दे रहा है, दोनों बातों में जो इंसान इस पे काम कर रहा है उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है,
0: विवेक का इस्तेमाल करना है। और एआई के बारे में जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है,
1: हाँ,
0: जो मेरा उद्देश्य रहता है, जो मैं अलग अलग जगह था, वो यही बताता हूँ कि भाई ये टूल बहुत जबरदस्त है, इससे आप जो प्रश्न पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। लेकिन हर टूल की एक सीमाएं रहती है, वो सीमाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो लिमिटेशंस, वो चैलेंज, वो वर्स्ट केस सिनेरियो, सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम जिस उद्देश्य से यूज करना चाह रहे हैं ठीक उसी उद्देश्य से उसका उपयोग कर पाए, अन्यथा वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
1: एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अभी सबसे बड़ा वो कौन सा सेक्टर है जहां आईटी का यूज हो रहा है और अगले 5 या 10 साल में उसमें ज्यादा होने वाला है, क्या है?
0: ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब एआई के बारे में रिसर्च चालू हुई थी तो आपको पता है एआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को ऑब्सोलीट करना है, मतलब बिफोर द टेक्नोलॉजी बिकेम मेनस्ट्रीम 2022 के पहले।
1: से मतलब क्या है, ऑब्सोलीट, हाँ, करना है।
0: मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे हर किसी ने जब स्कूल में कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा तो बड़ा सिंपल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जब एक्सप्लेन करते हैं स्कूल में तो ये रहता है कि एक सीपीयू रहता है डब्बा, कुछ इनपुट डिवाइसेस रहते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं। इनपुट डिवाइस से एरो जाता था सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वहां से वो एरो जाता था आउटपुट डिवाइसेस में। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस हो गए, आउटपुट में स्क्रीन और स्पीकर हो गए। तो ये बेसिक डायग्राम ऑलमोस्ट हर किसी ने जिसने आईटी या कंप्यूटर साइंस स्कूल में पढ़ा है सबको पता होगा। अब सीपीयू इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करता था, इसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती थी। आपको ध्यान होगा आज से 10, 20, 30 साल पहले इंडिया में जब कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन आया, हम लोग जब सॉफ्ट पावर बने, बीपीओ रिवॉल्यूशन आया, वो सब भारतीय प्रोग्रामर्स के दम पे हुआ। तो सीपीयू को इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए कंप्यूटर को, सीपीयू को प्रोग्राम किया जाता था अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। आप ये मानिए सीपीयू में

0: कैसे कैसे ट्रेन करना है। फिर अनसुपरवाइज लर्निंग आया, डीप लर्निंग आया, न्यूरल नेटवर्क आया, कुल मिला के हमने कंप्यूटर को दे दिया डेटा, ये डेटा है, यू टेक योर ओन टाइम। ये जो एनवीडिया के जीपीयू है, हाई हमने आपको बिजली दे दी, हमने आपको जीपीयू दे दिए, अब कंप्यूटर को बोल दिया भैया आप इस पूरे डेटा से खुद ही इन्फ्रेंसिस करके यू स्टार्ट टू ट्रेन योर ओन वर्ल्ड। बीच बीच में हम ह्यूमन इंटरवेंशन, हम लोग आउटपुट देखते जाएंगे, प्रोग्रेस देखते जाएंगे और उस बेसिस पे इवेल्युएट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो उसका ट्रेनिंग डेटा सेट है वो हम लोग ने कंप्यूटर को दे दिया और प्रोग्रामिंग पार्ट से हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तो अब क्या परिस्थिति बन गई है, रॉ डेटा सेट। और यही रीजन है कि डेटा हैज बिकेम द न्यू ऑयल, ऐसा क्यों कहते हैं, जो पिछले 100 सालों में युद्ध पेट्रोल के लिए हुए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए हुए, वो अब डेटा के लिए हो रहे हैं। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनेगा, और कंप्यूटर इंटेलिजेंट बनेगा उसके यूज के सिनेरियो, जितना इंटेलिजेंट बनेगा उतना आप उपयोग कर पाएंगे। तो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग करने का जो प्रक्रिया था वो धीरे धीरे अब हट रही है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का ही है। आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि गूगल के हेड ने, सुंदर पिचाई ने कह चुका है, अमेजन के हेड ने कह चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड ने कह चुका है कि एटलीस्ट 50% जो कोडिंग थी वो अब एआई की मदद से ये सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर 50% कोडिंग का काम, और कोडिंग क्या होती है, ताकि कंप्यूटर को यूजेबल बनाया जा सके, जो इंडस्ट्री है, जो इफेक्ट होने वाली है वो यही है कि प्रोग्रामर्स का डोमेन था वो अब सीमित होता जाएगा। प्लस हम लोग कंप्यूटर्स को यूज करते थे लेकिन कंप्यूटर्स में जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उन्हीं को यूज करते थे। हम लोग यूज कर रहे थे लेकिन हमारे पास ये, आप मान लीजिए कोई ऑडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वीडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये फीचर मेरे काम का नहीं है, थोड़ा और बेहतर हो सकता है, आपके पास ये सुविधा नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल बैरियर था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और जो कमर्शियल प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर थे उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे उसकी कोडिंग, क्योंकि अपन को पता नहीं था। लेकिन कोडिंग हट जाने से हम लोग भी, अब जैसे आपको अपना वेब पेज बनाना है, आप चैट जीपीटी पे जाके बोलिए मेरे को अपना, ये मेरा रिज्यूमे है पीडीएफ में, मैंने अटैच कर दिया, आप एक वेब पेज की स्क्रिप्ट बना के दे दो, चैट जीपीटी आपको 10 सेकंड में एक बढ़िया वेब पेज की स्क्रिप्ट दे देगा। आप इंग्लिश में बोलते जा रहे हो कि भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, और वो आपकी इंग्लिश को समझ के उस वेब पेज की स्क्रिप्ट में चेंज कर रहा है। तो एक तरह से तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का काम ऑटोमेट हो रहा है, दूसरी तरह आपके पास ये सुविधा हो गई कि आपको अब प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर्स को अपने हिसाब से यूज करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबसे पावरफुल है। जब कंप्यूटर्स पहली बार आए थे 1970 के दशक में, तब कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए रहता था। मेरे ख्याल से 1995 में जब विंडोज 95 आया, तब जाके वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का दौर आया, जब अपन माउस या कीबोर्ड से क्लिक कर सकते थे। उससे पहले आपको याद होगा एमएस डॉस रहता था, टाइप करके अपन प्रॉम्प्ट करके खोलते थे, तो उसमें भी टेक्निकल बैरियर था। 95 के बाद सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गए, 2010 के बाद आईफोन के बाद सारे टच स्क्रीन फोन आ गए। आज एक बच्चा भी 2.5 साल का है, उसको भी यूट्यूब खोल के अपना वो लाल टमाटर वाला गाना खोलना आता है, इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस हो गया। तो एंट्री बैरियर है वो चेंज होता गया। एआई जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का एंट्री बैरियर भी खत्म कर देगा, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड वेब पेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ट्वीक कर पाएंगे। मुझे लगता है ये सबसे प्रोमिनेंट यूज है, और इसी यूज के कारण ही ये पूरी फील्ड आगे हुई थी। ये जो बाकी यूज हम देखते हैं, गिबली आर्ट, इमेज जनरेशन, ये तो साइड वाले टेक अवेज हैं। जो मेन यूज है, जो मोस्ट इम्पैक्टफुल डोमेन है, वो यही है।
1: आपने कहा कि जैसे कोडिंग वर्कर, तो क्या कोडिंग में जो जनरेशन काम कर रही है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आप खुद इंजीनियर हैं, पढ़ा भी रहे हैं अब तो एक बड़े हिंदुस्तान के इतने बड़े संस्थान में, तो क्या इंजीनियर्स का, कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में?
0: बिल्कुल, कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में है, क्योंकि मैंने बताया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज 50% ऑफ द कोड एआई से बना रही हैं। तो या तो आपको अपना स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो आपको अपने कोडिंग स्किल्स को एआई को ही बेहतर बनाने पे, या एआई के नए नए फील्ड्स में उपयोग खोजने में लगाने पड़ेंगे, और या आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 50% कोड हो रहा था, अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो 50%, मैंने बोला ना रिपीटेड टास्क, ये बिल्कुल वही उदाहरण हो गया कि मैं अभी भी डिजिटाइज कर रहा हूँ, है ना, नक्शों को लैंड यूज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि एआई ये काम करके दे रहा है, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसे कुछ लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो चाहेंगे कि नहीं कंप्यूटर से नहीं, मेरे से ही वो रोड का डिजिटाइजेशन करवाए। तो ये सोचना बड़े बेमानी होगा कि हम जो 50% ऑटोमेटेड कोड हो रहा है जनरेशन, उसी के दर पे रह सकते हैं। तो हाँ, उन इंजीनियर्स वो अपने स्किल्स को ज़्यादा बेहतर उपयोग में लगा सकते हैं अगर वो चाहे तो।
1: तो आईटी या सीएस में ब्रांच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं,
0: हाँ,
1: ये चुनौती उन्हीं के लिए है?
0: बिल्कुल है,
1: या बाकियों के लिए?
0: बाकियों के लिए भी है, बाकियों के लिए भी है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहने वाला। हाँ, कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं और आप हो गए, हम, चलिए मैंने तो मेरी एक करियर ऐसी ट्रैजेक्टरी में गया, ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे टेक्नोलॉजी सही समय पे इनके बारे में पता चलता गया, और मेरे को एक पीयर ग्रुप मिला जिससे मैंने थोड़ा बहुत सीख भी लिया। लेकिन आईटी और कंप्यूटर, आईटी तो खैर ऑब्सोलीट हो गई, अब आईटी की उतनी ब्रांच नहीं, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों को ये समझना चाहिए कि वही उन्हीं के फील्ड से ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं, तो उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब उनको दूसरों के लिए तो एआई के उपयोग को सुगम बनाना ही है, और अगर वो ऐसा कर लेते दे विल मेक अ वेरी गुड करियर आउट ऑफ इट, लेकिन खुद को बचाने के लिए भी, ताकि वो लेवल से बाकी लोग से आगे रह सके, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बेहतरी से लेवरेज कर सके, इस चीज़ को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशन उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छे से तरीके से कोई नहीं समझ सकता है। हम लोग तो बाहर ही है, मैंने बताया ना मैं भी आर्किटेक्चर प्लानिंग से गया हूँ, वही लोग के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, तो वो अगर इस चीज़ को समझेंगे दे विल बी अहेड ऑफ द कर्व।
1: हाल ही में देश की इतनी बड़ी संस्थान TCS ने तकरीबन 10 या 12 हज़ार
0: जी
1: काम करने वाले को हटाया है
0: जी,
1: क्या ये इसी का असर
0: है? हो सकता है, देखिए ग्लोबल कंपनीज में बिजनेस रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता रहती है, जैसे अब TCS कहीं बाहर के प्रोजेक्ट ले रही है, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट ले रही है अगर उस कंपनी के पास खुद ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो 50% ऑफ द कोड खुद जनरेट कर सकते हैं, तो वो अपना मैन पावर या वो अपना बिजनेस कम करेंगे, इसके कारण ले ऑफ हो सकता है। पहले वाले टेक्नोलॉजिकल वेव्स में जो ले ऑफ हुए थे वो निचले स्तर के होते थे, AI के बाद निचला और ऊपर वाला कोई स्तर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि नहीं मेरा जॉब तो सेफ है, मैं तो सबसे ऊपर बैठा हूँ। देखिए जेसन हुआंग करके एनवीडिया के फाउंडर हैं, एनवीडिया मतलब जो GPU बनाती है
1: जी,
0: GPU बोले तो कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का दिमाग, बिना GPU के AI रेवोल्यूशन संभव नहीं हो सकता, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। उनका बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं AI आपको जॉब से रिप्लेस नहीं करेगा, समबडी यूजिंग AI वुड रिप्लेस यू फ्रॉम योर जॉब, मेरे से बेहतर मैं एक प्राध्यापक हूँ, मेरे को रिप्लेस वो करेगा जो AI को बेहतर तरीके से यूज करेगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो। आपको वो दूसरा व्यक्ति रिप्लेस कर सकता है जिसको 5 AI टूल्स के बारे में पता है, तो वो आपका काम बहुत कम समय में कर सकता है। तो AI रिप्लेस नहीं करने वाला कोई भी जॉब, और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री हर सेक्टर में ये जॉब रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन जो रिप्लेस कर रहा है वो कोई व्यक्ति ही होगा जो AI को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहा है।
1: ठीक है, जब आपने कहा कि बेहतर तरीके से यूज कर पाए, तो एक बात और बताइए कि लोग AI को सीखे कहाँ से?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चीज में और AI के बारे में बताना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा होगा कि यार इलॉन मस्क बोलता है कि AI वुड बी द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग विच विल हैपन टू द ह्यूमैनिटी, तो उसका जो AI के प्रति दृष्टिकोण रहता है वो थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, वो डरता भी है, वो बोलता है संभल के रहने की भी जरूरत है और फायदे भी देखता है। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है वो AI के अच्छी चीजें बताते हैं, जैसे सुंदर पिचाई कहते हैं कि जिस प्रकार आग ने, चक्के ने और बिजली ने या इंटरनेट ने हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया, AI उससे 1000 गुना ज्यादा तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, तो सिर्फ एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस विषय के विशेषज्ञ लोगों में भी मतानुभेद है कि भाई कोई इसको नेगेटिव देख रहा है, कोई डर रहा है, कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बैलेंस व्यू देने की कोशिश कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका एडवांसमेंट, जिसका प्रोग्रेशन कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब 2022 में ChatGPT का पहला वर्जन आया 2.5, उसके एक साल बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया, उसके 6 महीने बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया। तो कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, क्योंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव ही मशीन्स की वर्किंग को एफिशिएंट बनाना है, और मशीन्स एफिशिएंट होके कैसे विकसित होंगी इस पे चेक हम लोग बीच बीच में उसके आउटपुट को टेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे हाँ अगले 6 महीने में ये चेंज होगा। इससे पहले वाले जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आए उस टाइम पे लोगों का परसेप्शन एक रहता था कि हाँ ठीक है अगला जो चेंज आएगा, अगला पड़ाव आएगा, अगला ब्रेक थ्रू आएगा, उसमें लेट्स से 1 साल लगेगा या 1 महीना लगेगा। लेकिन यहाँ पे तकनीक इतने तेजी से इवॉल्व हो रही है, ब्रेक थ्रू कल भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, हो सकता है नहीं आए। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है टुवर्ड्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, फेसबुक में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आमने सामने बिठा दिया और बोला कि आप दोनों आपस में बात करके सीखो, मतलब जो ऑटोनोमस बॉट रहते हैं जिनसे बात करते हैं। चालू हुआ और उसका वीडियो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, दोनों ने बात करनी चालू की और मेरे ख्याल से थोड़ी देर बात की और फिर परिचय तो हो ही गया था कि बोला मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये अंग्रेजी तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, विच मे नॉट बी दैट एफिशिएंट, सो वाई आर वी वेस्टिंग आर टाइम, वाई नॉट हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने जो मोर एफिशिएंट मोड ऑफ टॉकिंग है उस पर शिफ्ट जाए, और फिर वो अपने बीप और फ्रीक्वेंसीज में बात करने लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया, ये वीडियो है आप देखिएगा। तो आप देखिए मशीन्स ने हमारी भाषा में बात करना चालू की और कुछ समय के बाद उनको मशीन्स को लगने लगा कि भाई ये तो बड़ा इनएफिशिएंट मोड है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या बीप्स में बात कर लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। इस प्रकार के जो चीजें हैं ये इसकी ग्रोथ को अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, और इसलिए सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंटली AI की ही मदद से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चेक रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं बच्चे लोग से बहुत बात करता हूँ, असाइनमेंट में जैसे उनको रिपोर्ट दी जाती थी, पहले रिपोर्ट बनाना जब मैं पढ़ रहा था, रिपोर्ट बनाना वॉज एक्चुअली अ वेरी स्किलफुल एक्सरसाइज। हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, तब तो इंटरनेट भी उतना नहीं था, लाइब्रेरी में जाते थे, चार पुस्तक पढ़ते थे, फिर उसको लिखते थे, फिर उसको समराइज करते थे, फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद गूगल रिजल्ट और ये सब यूज़ करने से थोड़ा लाइब्रेरी जाने की जो पीड़ा थी वो कम हो गई। आज आपको चैट जीपीटी पे मैं तो कहता हूँ कि आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं, आपको जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसकी एक फोटो खींचिए और अपलोड कर दिए बिना कुछ कहे, वो इमेज से रीड करके आपको बढ़िया एक रिपोर्ट बना के दे देगा। तो मैं बच्चों का जब असाइनमेंट चेक करता हूँ तो अक्सर उनसे पूछता हूँ कि भाई ये प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दिख रही है, अब व्यक्ति को मैं जानता हूँ उसके स्तर का काम नहीं है तो उसको बुला के पूछता हूँ भाई कैसे, तो मुझे बताता सर ये टूल आया है, ये प्रेजेंटेशन अपने आप बता देता है, ये रिपोर्ट है ये बहुत अच्छा बना देता है। तो कहने का मतलब यह है कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज। अगर मैं बोल दूं कि नहीं बच्चे लोग से मैं क्यों बात करूं, बच्चे लोग नेचुरली उनको कम समय में ज्यादा काम करना है तो वो इन टूल से अवेयर रहते हैं। तो मेरे प्राइमरी सोर्स वो है, एक बार उनसे टूल पूछ लिया फिर चैट जीपीटी की मदद से उस टूल के बारे में और जानकारी लेके सीख लिया। लेकिन इस विषय में अपडेटेड रहने के लिए हमें इन्हीं टूल्स का मदद करके आगे ले जाना पड़ेगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके आजू बाजू जो बहुत ज़्यादा इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, आपके विषय के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, उससे बातचीत की जाए, संवाद किया जाए, उसके पॉडकास्ट देखें। लेकिन मोर और लेस मैंने कहा ना, लर्न अनलर्न और रीलर्न, ये जो अनलर्निंग और रीलर्निंग करनी है इसके लिए भी हमको इसी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
1: काफ़ी वृहद विषय है, हमने सोचा था ये शुरू तो दो अक्षरों से हो रहा था, मतलब अंग्रेजी की वर्णमाला से AI केवल निकल के आया था लेकिन ये चलता जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा इस पर और भी आगे बात करें। लेकिन फिर भी हम मुझे लगता है कि जब हम हमारे श्रोता इसे सुनेंगे तो आज तक जो उनकी सीमित ज्ञान था AI को लेके, संभवतः उसमें वृद्धि जरूर होगी। आपने इसको काफ़ी बेहतर तरीके से, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं और देश के इतने बड़े संस्थान में पढ़ाते हैं, आप स्वयं भी वहाँ से पढ़े हैं, और आपकी बातचीत में वो काफ़ी बेहतर तरीके से निकल के आ रहा था। चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी हमने इसकी बेहतरी अच्छाइयों में बात करी, क्या इसकी कोई खामियां ड्रॉबैक्स भी हैं जिस पर आप रोशनी डालना चाहते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसकी ड्रॉबैक पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जो हॉलीवुड की तस्वीरों में देखते हैं कि टर्मिनेटर में जैसे मशीनें बंदूक लेके लड़ने आ जाएंगी, AI के दुष्परिणाम ऐसे नहीं होंगे। हो सकता है आज से ये भी संभव हो कि मशीनों के पास संज्ञान आ जाए, वो लड़ने आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल 100-200 साल में तो ऐसा नहीं हो रहा। जो इसकी चैलेंजेस हैं, जो इसकी चुनौतियां हैं, वो ज़्यादा वास्तविक हैं। सबसे पहले चुनौती तो ये है कि चूंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्विंग है तो इसकी जो लिमिटेशन है, जो चुनौतियां हैं, वो भी इवॉल्विंग उसी दर से हो रही है। जैसे मैंने बताया चैट जीपीटी भी यूज़ करते हैं तो उसका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है, या उसमें कैसे बायसेज है, या उसके जो आउटपुट है वो सेफ है कि नहीं, सही है कि नहीं। चैट जीपीटी नाम ले रहा हूँ एक ब्रांड का क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन जितने भी AI मॉडल्स हैं इंक्लूडिंग नोटबुक LLM, आप अपनी PDF अपलोड कर रहे हैं लेकिन अगर आपको PDF के बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है वो अपने एंड पे जानकारी गलत देते, तो ऐसा संभव है। सबसे पहले तो यह है कि जो मॉडल काम कर रहा है उसकी सीमाएं और उनकी क्षमताओं की लिमिटेशंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एनीथिंग जनरेटेड बाई AI इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट, वो हमेशा सही बोले ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इंडिविजुअल तकनीक के टूल्स की सीमाएं क्षमताएं, जैसे आप बोलते हैं कि भाई फिल्टर वाली फोटो है तो स्वाभाविक है आपको पता है फिल्टर वाली फोटो है, तो इस चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा कि जो जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं वो हो सकता है थोड़ा अलग दिखे, या आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है तो आने वाले समय में तो अब इतने रियलिस्टिक वो हो सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति है भी कि उसकी एक कैरिकेचर है, मतलब आपको लग रहा है कैमरे के सामने व्यक्ति बैठा है लेकिन वो नहीं है,
1: वास्तविकता
0: नहीं। तो ये सारे केवीएट अपन को ध्यान देने पड़ेंगे। इसके अलावा AI की मदद से, ये तो हो गया इंडिविजुअल यूज के सिनेरियो, गवर्नेंस या लॉ एंड ऑर्डर या सोसाइटल लेवल पे जो इसके दुष्परिणाम है उनके प्रति भी हमें सचेत रहना पड़ेगा। फेक न्यूज जो बोलते हैं, आज सोशल मीडिया न्यूज का एक बड़ा प्रामाणिक माध्यम माना जाता है, जैसे फेक न्यूज आपको बनानी है तो पहले आप हर किसी व्यक्ति को, एक आदमी 5 अकाउंट को या 10 या 25 या 50 अकाउंट को वो कंट्रोल करता था, आज की डेट में सिंगल प्रॉम्प्ट से आप मेरे ख्याल से एक फेक न्यूज के 1000 पॉइंट ऑफ ओरिजिन बना सकते हैं। तो फेक न्यूज का दुष्परिणाम, ये AI का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है सोसाइटल लेवल पे। मैं अक्सर अपने क्लास में एक उदाहरण देता हूँ, फर्ज करिए मैं अभी आपसे बात करके यहाँ से घर जाऊँगा और शाम तक आपके WhatsApp के इनबॉक्स में एक वीडियो क्लिप आती है जिसको कहते हैं ना, जो अनएथिकल या न्यूडिटी बढ़ाने वाली, और आप देखते हैं उस वीडियो क्लिप में कि जो व्यक्ति है वो मेरे जैसा दिख रहा है, उसकी आवाज़ मेरे जैसी है और मैं आपके पास फ़ोन करके बोलता हूँ या मैं आपके पास आता हूँ कि भाई ये व्यक्ति मैं नहीं हूँ, तो क्या अपना लीगल सिस्टम, और ये संभव है किसी के लिए भी, ये मैं अपना उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं सामने वाले का नहीं दे सकता, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि किशोर कुमार अरिजीत सिंह के गाने गा रहा है उसकी आवाज में, किशोर कुमार 90 में नहीं रहे, अरिजीत सिंह अभी आए हैं, लेकिन बहुत रियलिस्टिकली उसकी आवाज़ लग रही है। तो ये जो डीप फेक वाली बात है, ये एक बहुत प्रेसिंग इशू है जो AI के साथ आने वाला है। आज की डेट में इतने टूल्स ऐसे आ गए हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जो अपना साइबर स्कैमिंग होती है, डिजिटल अरेस्ट, उसमें या आपके पास फोन आया, हाँ साइबर अरेस्ट, आपके पास फोन आया, बोला आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और अगली आवाज ने जो जो आपने सुनी वो बिल्कुल रियलिस्टिकली अपने बच्चे, ये वाली सारी चीजें भी AI के दुष्परिणाम। तो ये चैलेंजेस हैं जिनके हिसाब से आज के गवर्नेंस सेटअप को, सोसाइटी को, लॉ एंड ऑर्डर को इक्विप रहना पड़ेगा। तो ये सारे कैवियट्स हैं, बदलती टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, तो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उसके यूज को रेगुलेट करना, वो अपने आप में चुनौती है, और इंडिविजुअली उस टेक्नोलॉजी से हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं या हमारा करियर कैसे प्रभावित हो रहा है। भाई हम अगर नहीं सीख पाएंगे, कोई दूसरा इस टेक्नोलॉजी को सीख के हमसे ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। ये सारी चुनौतियों के प्रति सचेत रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना, तभी हम इसका समुचित उपयोग कर पाएंगे।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया, हमें हमारा प्रयास था कि ये हमारे सुनने वालों तक ये पहुँचे, और संभवतः ज़रूर ज़रूर ये काफ़ी बेहतर आप तक इसकी जानकारी पहुंची होगी। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि AI जिस तेज़ी से लोगों के बीच में दस्तक दे चुका है, हम इस पे समय समय पर आप तक जानकारी को और अपडेट करते रहें। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु, जिसमें आज हमने बात की AI पर। आज का जो कार्यक्रम था, इसमें मोटा मोटा हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास करा। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति, और सुनते रहिए आपका अपना FM 90.8 MHz रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद अदिति, नमस्कार।
3: आज रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं, संक्षिप्त तौर पे अगर बात करना चाहें तो किस आयु से बच्चे तैयारी कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस में आने की, किस तरह की तैयारी कर सकते हैं?
4: अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी तो हम घर में बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पे सबसे अच्छे तो माता पिता ही कर सकते हैं, पर अगर एक प्रशिक्षण की बात करें तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक स्कूल्स होते हैं जिनको हम सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं। ये जो सैनिक स्कूल्स होते हैं, ये बच्चों को खासकर जो है मेंटली एंड फिजिकली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए तैयार करते हैं। इसमें जो है बच्चों का एडमिशन जो है 6th class से होता है, और इस समय जो है हमारे देश में ऐसे 33 सैनिक स्कूल्स हैं, और युवाओं में जो एक जोश है, उत्साह है, उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि 100 और नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। ये जो सैनिक स्कूल हैं, ये एक अलग कैटेगरी है, इसमें 18 स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो सैनिक स्कूल हैं, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर होता है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है फंड्स देता है और सर्विंग ऑफिसर्स प्रोवाइड करता है ये सैनिक स्कूल में, जो कि अपॉइंटमेंट्स में होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपना लैंड यानी कि ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ प्रोवाइड करता है। सैनिक स्कूल्स जो होते हैं वो CBSE का करिकुलम फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ कैसे आर्मी में ज्वाइन करना है उसी के लिए बच्चों को फिजिकली और मेंटली तैयार करते हैं। तो जिस तरह से एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, उसके लिए उनको शुरू से जो है वो प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका एडमिशन जो है क्लास 6th में जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होता है, एंड क्लास 9th में जो है बॉयज़ के लिए होता है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और रेजिडेंशियल्स होते हैं, मतलब कि ये इसमें जो है बोर्डिंग होता है, सब लोग बच्चे वहीं रह के पढ़ाई करते हैं। सारे के सारे सैनिक स्कूल में जो ये बच्चे पढ़ते हैं, ये NCC जूनियर विंग में ज्वाइन करते हैं, और इनके सबके पास NCC B सर्टिफिकेट होता है जब ये वहाँ से पास आउट होते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें तो इनका जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। जैसे मैंने बताया कि 33 सैनिक स्कूल जो हैं वो पुराने हैं, जिसमें कि बच्चों को क्लास 6 और क्लास 9 में लिया जाता है, और ये जो नए 18 सैनिक स्कूल जो अप्रूव हुए हैं फिलहाल सिर्फ क्लास 6 से बच्चों को वो ले रहे हैं। ये जो नए वाले स्कूल्स हैं इनका जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स हैं उसमें पार्टनरशिप करके जो है ये स्कूल्स को सैनिक स्कूल्स के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक नई स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है। लेकिन जो दोनों कैटेगरी के स्कूल हैं यानी कि पुराने वाले जो थे और ये जो नए स्कूल्स हैं ये सभी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं, और जो इनका एडमिशन है वो रिटर्न टेस्ट के ऊपर बेस होता है, और रिटर्न टेस्ट के बाद काउंसलिंग, मेडिकल फिटनेस, इन सब के पश्चात जो है मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें कि सिलेक्शन के बाद जो है बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका जो एज है यानी कि उम्र जो है वो 10 और 12 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 10 साल से बच्चे को बड़ा होना चाहिए और 12 साल से कम होना चाहिए क्लास 6 के एडमिशन के लिए। ये जो कट ऑफ डेट इसकी उम्र की मानी जाती है वो 31 मार्च मानी जाती है जिस साल में वो सेशन शुरू हो रहा है, तो उनकी उम्र 31 मार्च को 12 साल से कम होनी चाहिए और 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से जो क्लास 9th में जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनकी एज जो है 13 साल और 15 साल के बीच में होनी चाहिए। जो लड़कियों का एडमिशन होता है वो क्लास 6 में है, और 9th में जो एडमिशन है वो भी लड़कों के लिए है। इसमें जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑनलाइन सबमिशन जो है अक्टूबर में शुरू हो जाता है, दिसंबर और जनवरी में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जो हमारे 33 सैनिक स्कूल्स हैं अगर उन्हें देखते हैं तो तकरीबन 2600 बॉयज़ की वैकेंसीज आती हैं और 325 से 350 जो है गर्ल्स की वैकेंसीज हैं, जो कि क्लास 6 के लिए है। क्लास 9th में जो वैकेंसीज होती हैं वो फिक्स नहीं है, वो वहाँ पे जितनी उस समय की वैकेंसीज अवेलेबल हैं उसके ऊपर ही उनको लिया जाता है। इसमें जो है सीट्स का रिजर्वेशन भी होता है, देन डिफेंस सर्विस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन और स्टेट डोमिसाइल, ये अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं जिसके द्वारा बच्चों का इसमें जो है रिजर्वेशन कोटा भी होता है।
3: इसके अलावा और कुछ विवरण है जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
4: सैनिक स्कूल के अलावा हमारे देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं।
3: जी,
4: ये जो मिलिट्री स्कूल्स हैं ये हिंदुस्तान में मतलब सबसे पुराने पब्लिक स्कूल्स इनको हम कह सकते हैं
3: जी।
4: और इनकी स्थापना जो है मतलब 1925 में हुई थी। तो 5 जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं वो एक जैल में है डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में, 2 जो है राजस्थान में है अजमेर और धौलपुर में, और 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है बेलगांव और बैंगलोर कर्नाटका में है। ये स्कूल्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं
3: जी।
4: इसमें भी जो है देखिए बेसिक एम यही है कि बच्चों को NDA और दूसरे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए तैयार करना, और इसमें भी एडमिशन जो होता है बच्चों का वो क्लास 6 और क्लास 9 में होता है, और उसके लिए जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया जाता है। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है
3: जी।
4: ये रिटर्न टेस्ट में होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है और मेडिकल फिटनेस कंडक्ट करी जाती है। देन उसके बाद जैसे कि प्रोसीजर होता है कि मेरिट बनती है, मेरिट के बाद जो है बच्चों का एडमिशन इसमें होता है। अगेन इसमें जो बच्चों की एज होती है वो 6ठी कक्षा में जाने के लिए एलिजिबिलिटी है कि 10 और 11 के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए, और जो 9th में जो बच्चे जाते हैं उनकी 13 से 14 के बीच में उम्र होनी चाहिए। ये 1 जुलाई को सेशन का जो होता है उसका ही कट ऑफ माना जाता है, और जाहिर है कि बच्चा अब 6th क्लास में जा रहा है तो 5th क्लास वो पास कर चुका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, या उस समय वो बच्चा 5th क्लास में जो पढ़ रहे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं वो भी इसमें अपीयर कर सकते हैं। एंड अगर वो अपने एग्जाम में 5th क्लास क्लियर कर जाते हैं और इसमें इनके क्लियरेंस मिलता है तो वो 6th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल मतलब प्रोसीजर होता है। जनरली जैसे बताया कि मैंने दिसंबर में इसका एग्जाम्स होते हैं, और इसका लास्ट डेट जो सबमिशन होता है फॉर्म्स वगैरह का वो सितंबर ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। जो भी माता पिता अपने बच्चों को इन स्कूल्स में डालना चाहते हैं वो सितंबर ऑनवर्ड्स या उससे पहले से जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें देख सकते हैं, इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो वेबसाइट्स हैं, सब स्कूल्स की वेबसाइट्स हैं, अगर आप सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी टाइप करेंगे तो भी आएगी, उसमें उनके ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं, तो उससे आपको काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। एंड ये स्कूल्स का मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और इन स्कूल्स ने बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं देश को दिए हैं एंड काफ़ी अच्छे स्कूल्स में इनकी गिनती होती है।
3: तो सैनिक स्कूलों की तुलना में कर्नल साहब इनमें प्रतियोगिता का जो स्तर है वो भी ज़्यादा कठिन रहता होगा।
4: जी, क्योंकि ये सिर्फ 5 ही स्कूल हैं और इस कारण से जो है थोड़ा सा जो है सैनिक स्कूल से ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट इज समथिंग लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट में होते हैं, फिर IIT होता है, तो IIT जो है कम है जी, तो वैसे ये भी है। लेकिन एम अगर हम देखेंगे तो सबका एक ही होता है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पे डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए तैयार करना। और किसी कारण से अगर वो डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकते हैं तब भी वो एक देश के लिए एक अनुशासित नागरिक बनते हैं और हर फील्ड में जहां वो जाते हैं किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छा जो है उनका योगदान रहता है। अदिति जी, मैं आपको एक और स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है। वैसे हम इसको बोलते कॉलेज हैं लेकिन ये जो है स्कूल है। इसकी स्थापना जो है मार्च 1922 में हुई थी और उसको समय प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहा जाता था। आगे चल के जो है इसी का नाम जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हुआ। ये एक NDA के लिए और दूसरी डिफेंस एकेडमीज में जाने के लिए एक फीडर इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करता है। इसको हम नर्सरी ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। अगेन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें जो है CBSE के थ्रू करिकुलम फॉलो होता है और साइंस स्ट्रीम में ही होता है। इसमें साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी और जुलाई में, और ये जो एडमिशन है सिर्फ क्लास 8 से शुरू होते हैं। इसमें जैसे जिसको एडमिशन लेना होता है उस बच्चे की जो उम्र है 11.5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 13 साल से कम होनी चाहिए। वही सेम है कि बच्चे ने जो है 7th क्लास जो है पास करी होनी चाहिए। और इसका भी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है। सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज होता है और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको फिर वाइवा वॉयस के लिए बुलाया जाता है। वाइवा वॉयस में क्लियर होने के बाद फिर इनका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट बनती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इसकी सिर्फ हर टर्म में सिर्फ 25 सीट्स होती हैं,
3: यानी ये और कठिन
4: है। और इसमें जो है स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं।
3: कनक साहब, आपने ये बोला था कि इसमें सिर्फ विज्ञान स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जाते हैं, तो इस पर थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो विषयों का चुनाव होता है वो कक्षा 10 के बाद होता है।
4: हाँ, ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि इसमें जो 9th से 12th में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ ये साइंस स्ट्रीम में ही पढ़ाते हैं।
3: अच्छा।
4: मतलब कि कोई बच्चा 6th क्लास में 7th क्लास में सोचता है कि मैं आगे चल के कॉमर्स लूंगा तो वो इसमें
3: यहाँ संभव नहीं,
4: है। उसको वहाँ पे साइंस ही पढ़नी पड़ेगी। ये जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज अभी बॉयज के लिए है। इसमें 25 सीट्स होती हैं, ये स्टेट वाइज अलॉट होती हैं, तो स्टेट के थ्रू जो है जाते हैं। और जाहिर है कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा और टफ होता भी है। और जो इनके एलुमनाई हैं जो यहाँ से निकले हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक इस कॉलेज ने 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं, 2 चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ से निकले हैं और बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल ऑफिसर्स जो हैं, सिविल डिग्निटरीज जो हैं, इस कॉलेज के एलुमनाई हैं।
3: कर्नल साहब, सैनिक स्कूल से मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या यह स्कूल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनके अभिभावक आर्म्ड फोर्सेस में है, कि भारत के सभी नागरिकों के बच्चे इन स्कूलों में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं?
4: अदिति, ये स्कूल सबके लिए ओपन रहते हैं और इसमें हर बच्चा जो है, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। पहले ये सिर्फ बॉयज के लिए हुआ करता था लेकिन अब जो है ये गर्ल्स के लिए भी जो है ओपन है, तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं।
3: और अगर मोटे तौर पे पूछा जाए तो आर्मी में या किसी भी सेना में एंट्री के लिए मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है?
4: जैसे अभी स्कूल के बाद जो नेक्स्ट लेवल की एंट्री होती है उसको हम NDA बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। इसमें जो एंट्री होती है वो 17 साल तक बच्चा जो है जा सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में जो ऑफिसर्स के लिए जो है कैंडिडेट्स को लेती है, और ये 12वीं में पढ़ने वाले और उसके बाद 12वीं पास कर चुके जो है बच्चे हैं एग्जाम में बैठ सकते हैं। लड़कियां भी जो है इसमें अप्लाई कर सकती हैं।
3: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू अदिति। जय हिंद श्रोताओं।
5: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए यानी सपनों को पंख देने वाली संस्था के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले कुछ प्रकरणों में दादू और रुचि ने देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों की प्रेरक कहानियां जानी। लंबी यात्रा के बाद अब दोनों अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन ज्ञान की यात्रा तो अभी भी जारी है ना?
2: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक खबर है।
1: नमस्ते दादू।
2: हाँ हाँ हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गई कॉलेज से? कैसी रही आज की पढ़ाई?
1: बहुत अच्छी रही दादू, लेकिन आप कौन सी खबर को इतनी ध्यान से पढ़ रहे हैं?
2: अरे बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ भारत के विमानन क्षेत्र से जुड़ी, ये एक आर्टिकल है, यही पढ़ रहा हूँ मैं।
1: विमानन क्षेत्र मतलब हवाई जहाजों की दुनिया?
2: हाँ हाँ बेटा, एक मिनट बस। हाँ बेटा, केवल हवाई जहाज नहीं बल्कि उन संस्थाओं की दुनिया जो भारत को आकाश में नई ऊंचाइयां देने का काम कर रही है।
1: दादू, जब भी मैं आकाश में उड़ते हुए विमान देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है।
2: मुझे देखकर तुम्हारे मन में कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। अखबार रख देता हूँ एक मिनट। चलो हाँ बेटा, पूछो सवाल पूछो।
1: दादू, इतना भारी विमान आखिर उड़ता कैसे है और उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी?
2: लगता है आज की कहानी फिर से शुरू होने वाली है।
1: वो तो होने वाली है दादू, अब जल्दी से बताइए ना, आज हम किस संस्थान के बारे में जानेंगे?
2: तो आज हम जानेंगे यही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की कहानी। एक ऐसी संस्था की कहानी जिसने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को नई दिशा दी।
1: वाह दादू, यानी आज की कहानी आकाश से जुड़ी है।
2: हाँ बेटा, आज हम धातुओं की दुनिया से निकलकर उड़ान की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं।
1: दादू, वो देखिए, छत पर बैठे कबूतर एक साथ उड़ गए।
2: हाँ बेटा, प्रकृति का ये दृश्य जितना सुंदर है उतना ही प्रेरणादायक भी है।
1: अच्छा दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या इंसान ने उड़ने का विचार पक्षियों को देख कर ही सीखा था?
2: काफी हद तक, हजारों वर्षों से मनुष्य पक्षियों को उड़ते देखता रहा और उसके मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा जागती रही।
1: मतलब उड़ान का सपना बहुत पुराना है।
2: बहुत पुराना बेटा। पुराने ग्रंथों, कथाओं और लोक कथाओं में उड़ने वाले रथों और आकाश यात्राओं का उल्लेख इन सब में मिलता है। लेकिन सपना देखना और उसे वास्तविकता में बदलना दो अलग बातें हैं।
1: फिर दादू, इंसान ने ये सपना भला कैसे पूरा किया?
2: इसके लिए वैज्ञानिकों, अभियंताओं और आविष्कारकों ने वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने पक्षियों की उड़ान को समझा, हवा की गति को समझा और फिर ऐसे यंत्र विकसित किए जो हवा में उड़ सके।
1: यानी विमान केवल मशीन नहीं है बल्कि सदियों पुराने एक सपने की पूर्ति है।
2: बहुत सुंदर कहा तुमने।
1: लेकिन दादू, पक्षी तो अपने पंखों से उड़ते हैं, फिर ये विमान आखिर कैसे उड़ता है?
2: ये प्रश्न दुनिया के लाखों बच्चों के मन में आता है। विमान के पंखों का आकार ऐसा बनाया जाता है कि जब वो तेज गति से आगे बढ़ता है तो हवा का दबाव उसके ऊपर और नीचे अलग अलग हो जाता है
1: और उसी से वह ऊपर उठता होगा।
2: बिल्कुल, इसे ही उड़ान का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इसे समझना आसान है जबकि इसे व्यवहार में सफल बनाना बहुत कठिन होता है बेटा।
1: वो भला क्यों?
2: वो भला ऐसे बेटा, क्योंकि विमान को केवल उड़ना नहीं होता, सुरक्षित भी उड़ना होता है ना। उसे तेज हवा, बारिश, ऊंचाई और अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
1: अब समझ में आया कि विमान बनाना इतना कठिन काम क्यों है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, क्या हर देश अपना विमान बना सकता है?
2: नहीं नहीं बेटा, विमान निर्माण दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक माना जाता है।
1: मतलब इसके लिए बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव चाहिए होगा?
2: बिल्कुल चाहिए। विमान बनाने के लिए वायु गतिकी, धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सामग्री विज्ञान और अनेक अन्य क्षेत्रों का ज्ञान एक साथ काम करता है।
1: यानी ये कई विज्ञानों का संगम होगा।
2: बिल्कुल है बेटा।
1: अच्छा दादू, जब विमान बनाना इतना कठिन है तो भारत ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे की थी?
2: बेटा स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये महसूस किया कि यदि हमें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपनी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी।
1: और इसमें विमानन तकनीक भी शामिल थी।
2: बिल्कुल, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण था। किसी भी देश की वायुसेना उसकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार होता है बेटा।
1: तो क्या इसी सोच ने ADA के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया?
2: हाँ बेटा, जैसे जैसे भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने का लक्ष्य तय किया, वैसे वैसे एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो इस विशाल कार्यक्रम का नेतृत्व कर सके।
1: और तब ADA की स्थापना हुई होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, वर्ष 1984 में बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात ADA की स्थापना की गई।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
2: भारत के हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और उसे तकनीकी दिशा प्रदान करना।
1: यानी ADA का जन्म केवल एक संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय सपने के रूप में हुआ था।
2: सही कहा बेटा, ये उस सपने का हिस्सा था जिसमें भारत अपने लिए आधुनिक लड़ाकू विमान स्वयं विकसित करना चाहता था।
1: दादू, क्या ये वही कार्यक्रम था जिससे आगे चलकर तेजस विमान बना?
2: हाँ बेटा, तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, अभियंताओं, तकनीशियनों और परीक्षण पायलटों की वर्षों की मेहनत, आत्मविश्वास, अनुसंधान, धैर्य और नवाचार की कहानी भी है।
1: दादू, जब ADA की स्थापना हुई होगी तब क्या किसी ने सोचा होगा कि एक दिन भारत अपना आधुनिक लड़ाकू विमान विकसित करेगा?
2: सपना बड़ा था बेटा, चुनौतियाँ उससे भी बड़ी थी, लेकिन संकल्प उतना ही मजबूत था।
1: दादू, अब तो मुझे तेजस की पूरी कहानी जानना है आपसे।
2: तो तैयार हो जाओ, अब हम जानेंगे कि कागज पर बने एक विचार ने कैसे आकाश में उड़ान भरी और भारत की विमानन यात्रा का नया अध्याय लिखा।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है, लेकिन किसी लड़ाकू विमान की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है?
2: दिलचस्प प्रश्न है बेटी। किसी भी विमान की शुरुआत कारखाने से नहीं बल्कि विचार से होती है। विचार से? हाँ बेटा, सबसे पहले ये तय किया जाता है कि विमान को क्या क्या कार्य करने होंगे, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकेगा, उसकी गति कैसी होगी, वो कितना भार ले जा सकेगा और उसकी युद्ध क्षमता कैसी होगी।
1: मतलब पहले उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार की जाती होगी?
2: हाँ बेटा बिल्कुल, उसके बाद वैज्ञानिक और अभियंता मिलकर प्रारंभिक डिजाइन तैयार करते हैं।
1: दादू, क्या आज भी विमान केवल कागज पर डिजाइन किए जाते हैं?
2: नहीं बेटा, आज आधुनिक संगणक प्रणालियाँ इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: वो भला कैसे?
2: ADA ने अत्याधुनिक संगणन सुविधाएं विकसित की। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर आधारित डिजाइन, विश्लेषण और सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग किया।
1: सिमुलेशन मतलब?
2: मान लो किसी विमान को वास्तव में बनाने से पहले उसके व्यवहार को कंप्यूटर पर परखा जाए, ये देखा जाए कि उड़ान के दौरान वो कैसा प्रदर्शन करेगा।
1: अरे वाह, यानी पहले आभासी दुनिया में परीक्षण और फिर वास्तविक दुनिया में?
2: हाँ बेटा बिल्कुल।
1: दादू, लेकिन वैज्ञानिक कैसे जान पाते हैं कि हवा में विमान का व्यवहार कैसा होगा?
2: इसके लिए विंड टनल परीक्षण किए जाते हैं।
1: विंड टनल, ये क्या होते हैं?
2: ये बेटा एक विशेष सुविधा होती है जहाँ नियंत्रित गति से हवा प्रवाहित की जाती है।
1: और उसमें विमान को उड़ाया जाता है?
2: पूरे विमान को नहीं बल्कि उसके मॉडल का परीक्षण किया जाता है बेटा, ताकि ये देखा जा सके कि हवा उसके चारों ओर कैसे बह रही है।
1: सच में दादू?
2: इससे वैज्ञानिक ये समझते हैं कि डिजाइन कितना प्रभावी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है।
1: मतलब विमान की पहली परीक्षा आकाश में नहीं प्रयोगशाला में होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा।
1: दादू, ADA की सुविधाओं में एक नाम आपने बताया था आयरन वर्ड, ये सुनकर तो किसी विज्ञान कथा की याद आती है मुझे।
2: हाँ, नाम सचमुच रोचक है बेटा।
1: तो बताइए ना, क्या है ये?
2: आयरन बर्ड वास्तव में एक परीक्षण व्यवस्था होती है बेटा। इसमें विमान की विभिन्न प्रणालियों को जमीन पर ही जोड़कर उनकी कार्य क्षमता की जांच की जाती है।
1: यानी विमान उड़ने से पहले उसकी कई प्रणालियां जमीन पर परखी जाती हैं?
2: हाँ बेटा, इससे संभावित समस्याओं का पता पहले ही चल जाता है।
1: मतलब सुरक्षा की शुरुआत उड़ान से पहले ही हो जाती है?
2: बिल्कुल,
1: दादू, जब इतने वर्षों की मेहनत के बाद कोई विमान पहली बार उड़ान भरता होगा तब कैसा माहौल होता होगा?
2: कल्पना करो बेटा, वर्षों तक वैज्ञानिकों ने काम किया, अभियंताओं ने डिजाइन तैयार किए, तकनीशियनों ने अनगिनत घंटे लगाए, परीक्षण किए गए,
1: और फिर वो दिन आता है
2: जब विमान पहली बार रनवे पर दौड़ता है,
1: और उस समय सबकी निगाहें उसी पर होती होंगी।
2: बिल्कुल, क्योंकि उस क्षण में केवल एक मशीन नहीं बल्कि वर्षों का परिश्रम और आशाएं उड़ान भर रही होती हैं बेटा।
1: दादू, मुझे सुनकर कितना रोमांच हो रहा है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, एक विमान का नाम तेजस भी तो था, वो भला कैसे रखा गया?
2: तेजस संस्कृत का शब्द है बेटा, जिसका अर्थ है तेज, ऊर्जा, प्रकाश और शक्ति।
1: तो ये नाम वास्तव में विमान की भावना को दर्शाता है।
2: हाँ, और ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि भारतीय विज्ञान और आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया है।
1: अब समझ में आ रहा है कि तेजस की चर्चा होते ही लोगों की आंखों में गर्व क्यों दिखाई देता है।
2: क्योंकि ये उस क्षमता का प्रतीक है जिसे भारत ने अपने वैज्ञानिकों और अभियंताओं के बल

0: हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तो उसकी चमक और गति दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाली वैज्ञानिक दुनिया हमें दिखाई नहीं देती।
1: हाँ बेटा, किसी भी आधुनिक विमान के पीछे हजारों गणनाएं, लाखों आंकड़े छिपे होते हैं।
0: क्या ADA में भी ऐसी सुविधाएं हैं?
1: हाँ हाँ, ADA ने समय के साथ अत्याधुनिक संगणन केंद्र विकसित किए हैं, जहाँ जटिल डिजाइनों का विश्लेषण किया जाता है।
0: मतलब वैज्ञानिक कंप्यूटरों की सहायता से विमान के व्यवहार का अध्ययन करते हैं।
1: हाँ, पहले जिन गणनाओं में महीनों लग जाते थे, आज उन्हें शक्तिशाली कंप्यूटर बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं।
0: यानी आधुनिक विमान निर्माण में कंप्यूटर भी उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे इंजीनियर्स।
1: सही कहा बेटा, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं।
0: दादू, आजकल वर्चुअल रियलिटी की बहुत चर्चा होती है, क्या विमान निर्माण में भी इसका उपयोग होता है?
1: हाँ हाँ बेटा, वर्चुअल रियलिटी वैज्ञानिकों और अभियंताओं को विमान के विभिन्न भागों को त्रिआयामी रूप में देखने और समझने में सहायता करती है।
0: यानी विमान बनने से पहले ही उसके भीतर घूमकर देखा जा सकता है?
1: हाँ हाँ, इससे डिजाइन संबंधी समस्याओं को पहले से ही पहचानना आसान हो जाता है।
0: तो ये समय और संसाधन दोनों की बचत करता होगा।
1: हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: दादू,
1: हाँ,
0: अब मुझे लग रहा है कि विमान निर्माण केवल धातुओं और इंजनों की कहानी नहीं है।
1: आधुनिक विमानन में सॉफ्टवेयर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा।
0: वो कैसे?
1: ADA ने विभिन्न प्रकार के विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, जिनका उपयोग डिजाइन, विश्लेषण, निर्माण, उड़ान अनुकरण और परीक्षणों में किया जाता है।
0: यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रेखाएं आगे चलकर वास्तविक विमान का रूप ले लेती हैं।
1: हाँ, कई बार एक छोटी सी गणना भी पूरे विमान के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है बेटा।
0: दादू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि विमान निर्माण में गणित और विज्ञान कितना जरूरी है। सही कहा था आपने कि ADA का काम केवल तेजस तक ही सीमित नहीं है।
1: हाँ बेटा, विज्ञान की यात्रा कभी रुकती नहीं है।
0: तो अब आगे क्या?
1: आगे बेटा, तेजस के अनुभव और सीख के आधार पर और अधिक उन्नत विमान विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है।
0: तो क्या ये तेजस का नया रूप लेगा?
1: इसे तुम अगली पीढ़ी की प्रगति कह सकती हो बेटा। हर नई परियोजना पिछली उपलब्धियों पर आधारित होती है।
0: यानी हर सफलता अगले लक्ष्य का आधार बन जाती है।
1: एकदम सही।
0: दादू, क्या भविष्य में विमानों की दुनिया और भी बदल जाएगी?
1: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले समय में विमान अधिक उन्नत, अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से और भी परिष्कृत होंगे।
0: तो क्या अब हमारा भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है?
1: हाँ, इसी उद्देश्य से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई परियोजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है।
0: मतलब ADA केवल आज की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी तैयारी कर रही है।
1: हाँ बेटा, यही किसी दूरदर्शी संस्था की पहचान होती है।
0: दादू, आज की कहानी सुनकर मेरे मन में एक नया विचार आया है।
1: वो क्या बेटा?
0: वो ये कि जब मैं अगली बार आकाश में कोई विमान देखूंगी ना, तो केवल उसकी गति नहीं देखूंगी, मैं उसके पीछे छिपे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को भी याद करूंगी।
1: हाँ बेटा, और यही इस कहानी का उद्देश्य है।
0: दादू, लोग अक्सर उड़ते हुए विमानों को देखते हैं, लेकिन उसे उड़ाने वाले ज्ञान को नहीं देखते।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात पकड़ी। लगता है कि आज की कहानी ने तुम्हें फिर एक नई सीख दे दी है।
0: दादू, एक बात बताइए ना।
1: हाँ।
0: आपने BEML, मिधानी और कई अन्य संस्थानों की कहानियाँ सुनाई है मुझे, लेकिन विमान बनाने की बात आते ही हर कोई इसे बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों मानता है? क्या ये कार या रेलगाड़ी बनाने से भी अधिक कठिन है?
1: बहुत कठिन है बेटा। सोचो, रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है और कार सड़क पर, लेकिन विमान को हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ना होता है।
0: और वहाँ तो कोई सड़क भी नहीं होती।
1: हाँ, विमान को अपने संतुलन, दिशा और गति का नियंत्रण स्वयं बनाए रखना पड़ता है।
0: मतलब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है दादू।
1: हाँ बेटा, यही कारण है कि विमान निर्माण में अत्यंत सूक्ष्मता और सावधानी की आवश्यकता होती है।
0: दादू, आधुनिक लड़ाकू विमानों के बारे में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, फ्लाई बाय वायर। ये क्या होता है?
1: बेटा, पहले के विमानों में पायलट के नियंत्रण सीधे यांत्रिक प्रणालियों से जुड़े होते थे, लेकिन आधुनिक विमानों में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: कैसे?
1: देखो बेटा, जब पायलट कोई नियंत्रण देता है तो कंप्यूटर उस संकेत को समझकर विमान की विभिन्न प्रणालियों तक पहुंचाता है।
0: यानी कंप्यूटर पायलट का सहयोगी बन जाता है।
1: हाँ, इससे विमान अधिक स्थिर और नियंत्रित रहता है।
0: तो तेजस में भी ऐसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया?
1: हाँ बेटा, यही कारण है कि तेजस भारत की तकनीक क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।
0: दादू, लड़ाकू विमान को मजबूत भी होना चाहिए और तेज भी, तो दोनों बातें एक साथ कैसे संभव होती हैं?
1: यही तो अभियंताओं की सबसे बड़ी चुनौती होती है।
0: कैसे?
1: यदि विमान बहुत भारी होगा तो उसकी गति और दक्षता प्रभावित होगी, यदि बहुत हल्का होगा तो मजबूती कम हो सकती है।
0: तो फिर समाधान क्या है?
1: देखो बेटा, विशेष सामग्रियों और उन्नत डिजाइन का उपयोग।
0: मतलब यहाँ मिधानी जैसी संस्थाओं का योगदान भी जुड़ जाता होगा?
1: हाँ, देखो कैसे देश की विभिन्न संस्थाएं मिलकर एक बड़े लक्ष्य को पूरा करती हैं।
0: दादू, जब कोई नया विमान पहली बार उड़ता है तब उसे कौन उड़ाता है?
1: परीक्षण पायलट।
0: क्या ये सामान्य उड़ान से अलग होता है?
1: हाँ बेटा, परीक्षण उड़ानों में विमान के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पायलटों को अत्यंत प्रशिक्षित और अनुभवी होना पड़ता है।
0: यानी वे केवल पायलट नहीं बल्कि उड़ान के वैज्ञानिक भी होते हैं।
1: ये सही कहा बेटा तुमने।
0: और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुधार किए जाते होंगे।
1: हाँ बेटा, विमान विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
0: और ADA ने इन सब को दिशा दी है।
1: बिल्कुल दी है।
0: दादू, आपने कहा था कि तेजस के बाद भी ADA की यात्रा जारी है, तो अब उसका अगला बड़ा सपना क्या है?
1: देखो बेटा, हर उपलब्धि एक नए लक्ष्य का मार्ग खोलती है। आज ADA भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और अधिक उन्नत विमानों की दिशा में कार्य कर रही है।
0: क्या उनमें से कोई विशेष परियोजना है?
1: हाँ हाँ, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट अर्थात AMCA।
0: वाह, नाम सुनकर ही लग रहा है दादू कि ये कोई अत्याधुनिक विमान होगा।
1: इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक उन्नत लड़ाकू विमान विकसित करना है बेटा।
0: मतलब विज्ञान और तकनीक की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि।
1: हाँ, विमानन विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए भविष्य के विमानों में नई सामग्रियां, आधुनिक प्रणालियां और उन्नत क्षमताएं शामिल की जाती हैं।
0: तो AMCA केवल एक विमान नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है।
1: हाँ बेटा, ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें देश केवल वर्तमान की नहीं आने वाले दशकों की आवश्यकताओं की भी तैयारी करता है।
0: दादू, अब तक हम वायुसेना के विमानों की बात कर रहे थे, लेकिन नौसेना का क्या?
1: नौसेना की आवश्यकताएं अलग होती हैं बेटा।
0: कैसे दादू?
1: देखो, समुद्र में विमान वाहक पोत पर काम करना सामान्य हवाई अड्डे पर काम करने से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।
0: क्यों?
1: क्योंकि जहाज लगातार गतिशील रहता है, समुद्री हवाएं, सीमित स्थान और विशेष परिचालन आवश्यकताएं होती हैं।
0: तो दादू, नौसेना के लिए अलग प्रकार के विमान चाहिए होते?
1: हाँ बेटा, इसी दिशा में TEDBF अर्थात ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जैसी अवधारणाओं पर कार्य किया जा रहा है।
0: मतलब ऐसा विमान जो समुद्र में तैनात विमान वाहक पोत से उड़ान भर सके।
1: हाँ, ये दर्शाता है कि भारत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
0: दादू, ADA की स्थापना बेंगलुरु में ही क्यों की गई?
1: क्योंकि बेंगलुरु लंबे समय से भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी और विमानन गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
0: मतलब वहाँ केवल एक संस्था नहीं है?
1: हाँ, वहाँ अनेक वैज्ञानिक संस्थान है बेटा, अनुसंधान केंद्र हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं और विमानन से जुड़े संगठन कार्य करते हैं।
0: यानी अलग अलग विशेषज्ञ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
1: हाँ, इसे ही कभी कभी वैज्ञानिक या तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।
0: जैसे एक बगीचे में अलग अलग पौधे मिलकर पूरा वातावरण बनाते हैं।
1: हाँ हाँ बेटा, ये उदाहरण बहुत सुंदर है।
0: दादू, तो बेंगलुरु केवल एक शहर नहीं बल्कि विचारों और नवाचारों का भी संगम है।
1: हाँ बेटा।
0: दादू, आपने बताया था कि ADA का संबंध रक्षा अनुसंधान से भी है।
1: ADA रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO से जुड़ी हुई है।
0: तो क्या दोनों मिलकर काम करते हैं?
1: हाँ हाँ बेटा, किसी भी बड़ी परियोजना में अनेक संस्थाएं अपना अपना योगदान देती हैं।
0: मतलब कोई संस्था डिजाइन में योगदान देती है, कोई परीक्षण में और कोई अनुसंधान में।
1: हाँ, आधुनिक तकनीक इतनी जटिल होती है कि इसमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है बच्चे।
0: यानी सफलता का श्रेय केवल एक संस्था को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता होगा दादू।
1: हाँ बेटा, पूरी टीम को जाता है।
0: ये कार्यक्रम सुनने वाले बहुत से बच्चे और युवा भी होंगे जो हमें सुन रहे होंगे दादू।
1: होंगे ही।
0: अच्छा ये बताइए कि यदि कोई छात्र विमान निर्माण या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
1: अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, उसे जानना है, समझना है, तो सबसे पहले जिज्ञासु बनिए।
0: जिज्ञासु?
1: हर वैज्ञानिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है।
0: जैसे मेरे प्रश्न?
1: हाँ बेटा, विज्ञान में प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाता है।
0: और फिर?
1: गणित विज्ञान, अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मेहनत करनी होती है।
0: यानी आज का जिज्ञासु विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक बन सकता है?
1: क्यों नहीं बन सकता। देश की हर बड़ी उपलब्धि कभी किसी विद्यार्थी के सपने के रूप में ही शुरू हुई थी बेटा।
0: तो हो सकता है दादू कि आज ये कार्यक्रम सुन रहा कोई बच्चा भविष्य में किसी नए विमान का डिजाइन तैयार करे?
1: बिल्कुल तैयार करेगा बेटा, और शायद वो भारत की अगली बड़ी तकनीकी उपलब्धि का हिस्सा भी बने।
0: दादू, अब मैं एक बार फिर वही प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मैंने मिधानी के बारे में पूछा था।
1: पूछो पूछो बेटा पूछो।
0: वो ये दादू कि यदि ADA जैसी संस्था ना होती तो क्या फर्क पड़ता?
1: बहुत बड़ा फर्क पड़ता बेटा।
0: कैसे?
1: कल्पना करो, यदि किसी देश के पास अपनी विमानन डिजाइन क्षमता ना हो तो उसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए बाहरी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
0: मतलब केवल विमान खरीदना ही पर्याप्त नहीं होता?
1: नहीं नहीं बेटा, तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान क्षमता और डिजाइन कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।
0: और ADA ने भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ाया?
1: हाँ बेटा, इसने केवल परियोजनाओं का नेतृत्व नहीं किया बल्कि देश में विमानन अनुसंधान और विकास की क्षमता को भी बहुत मजबूत किया है।
0: यानी ये संस्था केवल विमान नहीं बनाती बल्कि ज्ञान भी विकसित करती है।
1: हाँ, और यही किसी भी विकसित राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है।
0: दादू, आज मैंने जाना कि उड़ान केवल पंखों की कहानी नहीं होती।
1: तो फिर किसकी कहानी होती है?
0: दादू, ये विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, साहस और सामूहिक प्रयास की कहानी होती है।
1: लगता है आज की चर्चा का सार तुम्हें मिल गया बच्चे।
0: हाँ दादाजी, और ADA की कहानी बताती है कि जब कोई देश बड़े बड़े सपने देखने का साहस करता है ना, तो वे सपने एक दिन आकाश में उड़ान भी भरते हैं।
1: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही भारत की वैज्ञानिक यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है।
0: प्रिय श्रोताओं, आज के संक में हमने जाना कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA केवल लड़ाकू विमानों के विकास का संस्थान नहीं है बल्कि भारत की वैज्ञानिक दूरदृष्टि, आत्मनिर्भरता और नवाचार का एक सशक्त प्रतीक है। तेजस से लेकर AMCA और TEDBF जैसी भविष्य की परियोजनाओं तक ADA ने भारत को स्वदेशी विमान डिजाइन और विकास की दिशा में नई पहचान दी है।
1: और यदि आप भी विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी या अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं तो अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत के किसी नए विमान, किसी नई तकनीक या किसी नए वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे आपका भी योगदान हो। इसी प्रेरक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
0: अगले अंक में हम जानेंगे कि कैसे भारत के सैन्य उपग्रह धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर रहकर हमारी सीमाओं की निगरानी करते हैं, सुरक्षित संचार उपलब्ध कराते हैं और देश की सुरक्षा को नई शक्ति प्रदान करते हैं। श्रोताओं, सुनते रहिए रेडियो नाटक देश के संस्थान। आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना।
1: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नीमा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
2: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उन जन नायकों से मिलाएं जिन्होंने अपने पौरुष और पराक्रम से समय की धार को बदल दिया और इतिहास में दर्ज करवा लिया अपना नाम स्वर्णाक्षरों में। आइए इसी तारतम्य में आज बात करते हैं स्वामी कुमारनंद जी की, जिनका जन्म बर्मा के रंगून शहर में हुआ था और 29 जनवरी 1971 को दिल्ली में इनका निधन हुआ था।
2: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ में जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की और संपन्नता को त्याग कर अपना सर्वस्व कुर्बान कर जन जन में चेतना का शंख फूंका, उन महान देशभक्तों की श्रृंखला में स्वामी कुमार नंद का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। रंगून शहर के कमिश्नर एन के नाग के घर जन्मे स्वामी कुमार नंद का असली नाम विजेंद्र कुमार नाग था। इनके परिवार का संबंध श्री रविन्द्रनाथ टैगोर एवं प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त से था। प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु स्वामी जी के मामा लगते थे।
1: स्वामी कुमार नंद जी की प्रारंभिक शिक्षा बर्मा में हुई और उच्च शिक्षा ढाका और कलकत्ता में संपन्न हुई। नेशनल कॉलेज से बीए करने के बाद एक अनहोनी घटना घटी। तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट एलन पर सन 1907 में किसी क्रांतिकारी ने गवालन स्टेशन पर गोली चला दी थी। यद्यपि इस कांड का कभी खुलासा नहीं हो सका, लेकिन जो लोग उसमें शक के घेरे में आए थे उनमें स्वामी जी का नाम भी था। कलकत्ता के जिला मजिस्ट्रेट जो एक अंग्रेज थे, उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वामी जी के पिता से बात की और स्वामी जी को क्रांतिकारियों के चंगुल से निकालने के लिए सरकार के खर्च पर ICS की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव रखा गया।
2: स्वामी कुमार नंद जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपने तो सारा जीवन अंग्रेजों की गुलामी करने में बिता दिया, हमें गुलामी नहीं करनी है। भारत अंग्रेजों की दास्ता में बंधा है। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। जब तक भारत गुलाम है मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। आजन्म कुंवारा रहकर देश सेवा में जीवन अर्पण कर दूंगा। जब ये बात रवींद्रनाथ टैगोर जी को मालूम पड़ी तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्हें बंगाल के क्रांतिकारियों के त्याग और निष्ठा पर गर्व हुआ।

0: स्वामी कुमारनंद जब अपने पिताजी के साथ पुरी गए, तब स्वामी सत्यानंद नाम के सन्यासी से आपकी भेंट हुई। वे ही स्वामी कुमारनंद के प्रथम गुरु सिद्ध हुए। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने नौजवानों को देशभक्ति से प्रेरित किया। उसका भी स्वामी कुमारनंद पे अत्यधिक प्रभाव पड़ा। स्वामी कुमारनंद अनेक भाषाओं के विद्वान थे। चीनी भाषा का भी उनको ज्ञान था। सन 1910 के नवंबर में वे चीन गए। चीनी क्रांति के समय वे चीन में थे और जब भारत लौट कर आए तो कलकत्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल तक कैद में रखकर यातनाएं दी गईं। फिर वे रिहा हुए।
1: स्वामी जी का जीवन कभी भी खतरों से खाली नहीं रहा। ढाका के एक मकान पर पुलिस ने छापा मारा। वहां पिस्तौल, कारतूस व डायनामाइट और बम बनाने का सामान पकड़ा गया। 4 नौजवान गिरफ्तार हो गए और स्वामी जी वहां से भागकर कलकत्ता आ गए। चित्तरंजन दास की सलाह से उन्होंने कलकत्ता छोड़ा और सन्यासी का वेश बदलकर कन्याकुमारी आ गए। तभी से उन्होंने अपना नाम द्विजेंद्र कुमार से बदलकर स्वामी कुमारनंद रख लिया। सन 1920 में चित्तरंजन दास के आग्रह पर ही स्वामी जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वैसे तो स्वामी कुमारनंद जी का राजनैतिक जीवन सन 1907 से ही आरंभ हो गया था। कलकत्ते में उनका परिचय पुरानी कृष्ण मिल ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी से हुआ। साथ में खरवा के राव गोपाल सिंह भी थे। इतिहास साक्षी है कि राव गोपाल दास सिंह खरवा विजय सिंह पथिक के महान सहयोगी रहे और सेठ दामोदर दास राठी ने अनेक क्रांतिकारियों की भरपूर सहायता की।
0: स्वामी कुमारनंद साम्यवादी विचारों के होते हुए भी कांग्रेस के साथ बने रहे। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब सन 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के समय बाबा सोहन सिंह जोश और कॉमरेड मुजफ्फर अहमद ने कांग्रेस से अलग होने का प्रस्ताव रखा तो स्वामी कुमारनंद ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि अभी कांग्रेस छोड़ने का समय नहीं है। काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में स्वामी जी ने बटुकेश्वर दत्त को जिस प्रकार बचाकर भगाया और पुलिस के अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट से बुरी तरह भिड़ पड़े, ये उनके साहसिक कार्य का एक जीता जागता उदाहरण है।

0: वैसे तो स्वामी कुमारानंद के विचार क्रांतिकारी व साम्यवादी थे और ब्यावर के मजदूर आंदोलन के प्राण माने जाते थे। फिर भी उनका व्यवहार कांग्रेस के नेताओं और विशेषकर रियासतों के नेताओं के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण था। अधिकतर नेता स्वामी जी के रियासतों में जन आंदोलन चलाने पर विचार विमर्श करते और कभी कभी स्वामी जी के साथ ही ठहरते।
1: क्रांतिकारी विचारों के होने के कारण और अंग्रेजों के कट्टर विरोधी होने से रात्रि में वे जब नींद में होते तो कई बार वे भयंकर रूप से दांत किटकिटाते हुए गुस्से में बड़बड़ाते, इन अंग्रेजों को मार डालो, भारत से भगा दो। तब नींद से जागने पर पूछते तो कहते, क्या हुआ, मैं तो गहरी नींद में सोया था। उनका आत्मबल बहुत तेज था और वे साहसी भी थे। उनके अनुसार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी कभी मीलों लंबी दौड़ लगाकर भाग निकलते, कभी जंगलों में और खंडहरों में भटकते रहते। न खाने पीने की सुध, न रुकने का ठिकाना, मगर क्रांतिकार्य की मशाल न बुझे, यही कोशिश रहती थी। स्वामी कुमारानंद जीवन भर कुंवारे रहे। वे सादा जीवन, उच्च आदर्श के धनी थे।
0: स्वामी जी 1962 में विधानसभा के सदस्य रहे और राजपूताना मध्य भारत ट्रेड यूनियन के वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे। स्वामी कुमारानंद का जीवन त्याग, तपस्या व आजादी के आंदोलनों में जेलों की यातनाएं सहने में बीता। उनका आदर प्रत्येक विचारधारा के राजनेता व आम नागरिक करते थे। वे सदा उनके आगे नतमस्तक रहते थे। 29 दिसंबर 1971 के दिन नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में इस महान क्रांतिकारी देशभक्त का पेट की बीमारी से निधन हो गया। स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा के निधन पर पंडित सुंदरलाल ने कहा था कि अजेय स्वातंत्र योद्धा, एक महान तपस्वी, त्याग की मूर्ति व साहसिक देशभक्त के देहावसान से भारत को अपार क्षति हुई है। ऐसे महान देशभक्त को हमारा सादर नमन।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की। गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जन गर्जे में से।
3: अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग आप सुन सकते हैं विविध भारती के भोपाल इंदौर और जबलपुर केंद्रों से हर रविवार सुबह 9:30 बजे और मध्य प्रदेश स्थित आकाशवाणी के अन्य केंद्रों से हर गुरुवार सुबह 8:30 बजे से।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं रासलीला समारोह के सातवें दिन की रेडियो रिपोर्ट।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, आपके साथ मैं हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां 29 अगस्त से 4 सितंबर तक रासलीला समारोह का आयोजन किया गया। आइए चलते हैं इस समारोह के सातवें दिन में। यह है तृप्ति शाक्य और साथियों की प्रस्तुति।
2: बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।

बैठे कि यह जीवन ये तेरे हवाले, किसके हवाले, किसके हवाले, मेरे हवाले मत करिएगा, कुछ नहीं होगा, करना है तो कान्हा के हवाले कर दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे कैसे जीवन में चमत्कार होंगे। उसके हवाले किया सबने, सबने किया तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर।

0: कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
1: ये थी रेडियो रिपोर्ट रासलीला समारोह के सातवें दिन की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। श्रोताओं, पिछले भाग में यानी चतुर्थ सर्ग के अंतिम भाग में हमने कर्ण की दानवीरता की पराकाष्ठा को महसूस किया। जीवन कितने ही संघर्षों से क्यों ना घिरा हुआ हो, लेकिन मनुष्य को अपनी नैतिकता और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। दिनकर जी का ये रथ सिर्फ कर्ण के जीवन की महानता का रथ नहीं हांक रहा, यह हमें ऐसा मनुष्य बनने की ओर प्रेरित करता है जो कभी कितनी भी विषम परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, मनुष्यत्व और मानवता के लिए अपना हृदय विशाल रखे। दिनकर जी का विश्वास था कि संसार को केवल शस्त्र नहीं बदलते, विचार भी बदलते हैं। इसलिए वे कलम को भी उतना ही शक्तिशाली मानते थे जितनी तलवार। आइए उनके इसी ओजस्वी विश्वास को उनकी अमर पंक्तियों में सुनते हैं।
2: दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार? अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण, देश क्या कभी मरेगा मारे? एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हर दम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार?
1: मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि कर्ण के इस प्रसंग के बाद हमने राष्ट्रकवि दिनकर जी की कलम या तलवार जैसी कविता क्यों चुनी। इसका कारण अत्यंत सरल है। कर्ण ने अपने जीवन से जो आदर्श स्थापित किए, दिनकर जी ने उन्हीं आदर्शों को अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। कर्ण ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। दिनकर जी कहते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके जागृत विचार हैं। एक ने जीवन से संदेश दिया, दूसरे ने उस संदेश को शब्दों का अमर रूप दिया। यही कारण है कि ये कविता इस प्रसंग के बाद और भी सार्थक हो उठती है। कर्ण ने छल के सामने भी धर्म नहीं छोड़ा और दिनकर जी ने अन्याय के सामने सत्य लिखना नहीं छोड़ा। कर्ण के हाथ में धनुष था, दिनकर जी के हाथ में कलम, किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही था, मनुष्य के भीतर साहस, स्वाभिमान और धर्म की ज्योति जलाए रखना। इसलिए यह कविता केवल एक रचना नहीं, बल्कि कर्ण के व्यक्तित्व को दिनकर जी की लेखनी से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है।
2: आइए तो अब चलते हैं उस सर्ग की ओर जहां रण तैयार है, जीवन का, स्वार्थों का, प्रेम का, ममता का और प्रतिज्ञाओं का। चलते हैं रश्मि रथी के पंचम सर्ग की ओर। माँ से आरंभ हुआ यह सर्ग, ममता का अमर विधान, आंसू बनकर बोल उठी है वर्षों से मौन जुबान। दिनकर ने शब्द नहीं लिखे, धड़कनों का इतिहास लिखा, पंचम सर्ग में माँ के मन का सबसे गहरा विश्वास लिखा।
1: माँ शब्द से आरंभ हुआ यह करुणा का दिव्य प्रसंग, जहां वात्सल्य स्वयं रचता है नियति का अमिट सत्संग। दिनकर की लेखनी में आज जननी का तप जाग उठा, युग युग से संचित मात्र हृदय का मौन विलाप बोल उठा, मौन विलाप बोल उठा, मां ये केवल एक संबोधन नहीं, सृष्टि का सबसे पहला संगीत है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो संसार की भाषा नहीं जानता, किंतु मां की धड़कनों की भाषा पहचानता है। उसकी आंखें खुलने से पहले वो मां की ममता में संसार का पहला स्पर्श पा चुका होता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर प्रत्येक घर में स्वयं नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने मां की रचना की। मां केवल जीवन नहीं देती, वो जीवन को अर्थ देती है। इसके आंचल में सुरक्षा है, उसकी आंखों में आशीर्वाद है और उसके मौन में वो करुणा है जिसे शब्द कभी पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। किंतु रश्मि रथी के कर्ण के जीवन में मां एक ऐसी अधूरी कथा है जिसका प्रत्येक पृष्ठ आंसुओं से लिखा गया है। कर्ण ने जन्म तो मां की कोख से लिया, पर बचपन उसकी गोद में नहीं बीता। उसने मां का दूध नहीं मांगा, मां की उंगली पकड़कर चलना नहीं सीखा, मां की लोरी सुनकर सोना नहीं जाना। उसके जीवन में मां एक स्मृति नहीं, एक रिक्तता थी, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उसे वर्षों तक नहीं मिला। संसार उसे सूत पुत्र कहकर पुकारता रहा, पर उसके भीतर कहीं एक बालक हर दिन ये पूछता रहा, मेरी मां कौन है? ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है, क्योंकि मनुष्य अपने नाम के बिना जी सकता है, अपने वैभव के बिना जी सकता है, पर अपनी मां की पहचान के बिना उसका अस्तित्व भीतर से कहीं अधूरा रह जाता है। मानो कर्ण कह रहे हैं,
3: हे मौन बहती गंगे और हे मेरे तात सूर्य देव, तनिक ठहरो और देखो, आज इस तट पर इतिहास का सबसे बड़ा कौतुक रचा गया है, जिसे संसार ने केवल सूत पुत्र कहकर पुकारा, जिसके माथे पर हर कदम पर धुतकार का तिलक लगाया गया। आज वही कर्ण स्वयं अपने ही वजूद के सामने एक अनसुलझा प्रश्न बनकर खड़ा है, एक अनसुलझा प्रश्न बनकर खड़ा है।
2: ममता और धर्म जीवन के दो ऐसे निष्ठुर किनारे जो जब आमने सामने आ खड़े हों तो बड़े बड़े पाषाण हृदय भी भीतर तक कांप उठते हैं। आज नियति के इसी जलते हुए दोराहे पर विकल, व्याकुल और असहाय सी खड़ी है मां कुंती। वे आज केवल पांडवों की राजमाता नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी विवश जननी हैं जिनके सीने में आंसुओं का एक समंदर और बरसों से दबा एक मौन तूफान आज बांध तोड़कर उमड़ रहा है। उनका अंतस अपने ही बोए बबूल के कांटों से लहूलुहान है और आंखें उस आदि पुत्र की एक झलक पाने को तरस रही है। आइए हम भी पूरे मनोयोग से सुनते हैं कि आज इतिहास के इस सबसे शांत और स्तब्ध क्षण में मां कुंती के हृदय की वह गहरी वेदना हमसे क्या कहना चाहती है।
4: समय बीत गया, ऋतुएं बदलती रही, राजमहल बदलते रहे, जीवन आगे बढ़ता रहा, किंतु एक मां का हृदय कभी आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे भीतर एक रिक्तता वर्षों से मौन बैठी है। जब भी किसी मां को अपने पुत्र को गले लगाते देखती हूँ तो मेरी आत्मा मुझसे पूछती है, क्या ममता भी कभी अपराधिनी हो सकती है? शायद संसार मेरे मौन को नहीं समझ पाया, पर एक माँ अपने ही हृदय के न्यायालय से कभी मुक्त नहीं हो सकती। किंतु आज मैं स्वयं से एक प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या मैं सचमुच माँ हूँ जिसने अपनी ही कोख के अंश को जन्म लेते ही अपनी बाहों से दूर कर दिया? क्या उसे माँ कहलाने का अधिकार है जिस शिशु को अपनी छाती से लगाकर जीवन देना था, उसे मैंने नदी की लहरों के भरोसे छोड़ दिया, जिसकी पहली मुस्कान मेरी आंखों में बसनी थी, जिसके पहले आंसू मेरे आंचल में सूखने थे, उसका संपूर्ण बचपन मेरी ममता से वंचित रह गया। संसार ने उसे अनेक नाम दिए, पर वो अभागा एक नाम कभी न सुन सका, जिसे सुनने का अधिकार उसे जन्म से प्राप्त था। पुत्र, पुत्र।
2: ममता का स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता, वह समय के साथ वृद्ध नहीं होती, परिस्थितियों से हारती नहीं और दूरी से कम नहीं होती। यदि कभी भूल हो भी जाए, यदि कभी जीवन किसी विवशता के कारण माँ को उसकी संतान से दूर भी कर दे, तब भी उसके हृदय में प्रेम का स्रोत सूखता नहीं। कुंती का जीवन इसी शाश्वत सत्य का प्रतीक है। वर्षों तक मौन रहने वाली माँ जब कर्ण के सामने आने का साहस जुटाती है, तब वह किसी महारानी के रूप में नहीं आती, वह केवल एक अपराध बोध से भरी माँ होती है। उस क्षण राजसत्ता, कुल, प्रतिष्ठा और इतिहास सब कुछ पीछे छूट जाते हैं, केवल एक माँ का कांपता हुआ हृदय शेष रह जाता है, जो अपने खोए हुए पुत्र को एक बार, सिर्फ एक बार पुत्र कहकर पुकारना चाहता है। श्रोताओं, आइए आरंभ करते हैं दिनकर जी की इस महान काव्य गाथा रश्मि रथी से पंचम सर्ग में लिपटे कर्ण और माता कुंती के प्रेम, करुणा, दुख, विषाद से भरा ये काव्य पाठ।
1: आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी, संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग वंचित हो जाएगा, जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा, कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे।
2: सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम नहीं क्या यह संयोग घटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा।
4: एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा, दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी, हे राम निरावृत किए बिना व्रीडा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिल जग से हो रहे विमन है, तब भी उनसे कहूं करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे, यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भाव ज्ञानी, तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं, लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी, मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है, क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू।
2: चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से, सामने तपन को देख तनिक घबराकर सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचाकर उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए तन में रविका प्रीतम तेज जगता था दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले यादो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की हो सजा रही आरती विभा मंडल की अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर मैं नाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर सुत की शोभा को देख मोद में फूली कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली भरकर ममता पय से निष्पलक नयन को वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को।
1: श्रोताओं, ये दृश्य केवल महाभारत की कथा नहीं, एक मां के हृदय की गहन वेदना का चित्र है। युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, परंतु कुंती का मन मानो पहले ही रणभूमि बन गया है। एक ही कोख के लाल, एक ओर अर्जुन, दूसरी ओर कर्ण। सोचिए उस मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी जिसकी ममता दो दिशाओं में खिंच रही है। दिनकर जी ने इस क्षण को इतनी संवेदनशीलता से उकेरा है कि लगता है मानो कुंती के नयन केवल आंसू नहीं, वर्षों से दबा हुआ मातृत्व बहा रहे हों।
2: गंगा का वह एकांत तट जहां सांध्य बेला की मध्यम मध्यम लाली धीरे धीरे अंधकार की गोद में सिमट रही है, लहरों का एक शांत मौन संगीत गूंज रहा है और उस निस्तब्धता के बीच सूर्य पुत्र कर्ण अचल खड़ा अस्ताचल की ओर बढ़ते अपने तात सूर्य देव को निहार रहा है। वह इस बात से सर्वथा अनजान है कि प्रकृति आज उसके जीवन का सबसे बड़ा कौतुक रचने जा रही है। तभी दूर वृक्षों की ओट से पत्तों की सरसराहट के पीछे छिपकर राजमाता कुंती अपने उस आदि पुत्र को निहार रही हैं। बरसों पहले जिस नन्हे सुकुमार को लोक लाज के भय से भारी मन से गंगा की लहरों में बहा दिया था, आज उसे एक महायोद्धा के रूप में सामने देखकर उनका मात्र हृदय छटपटा उठता है। उस क्षण एक माँ की आंखें केवल उसे देखती नहीं हैं, वे तो अपने भीतर उमड़ते सदियों के अकेलेपन अपराध बोध और रोके हुए वात्सल्य को दूर से ही अपने उस त्यागे हुए पुत्र पर लुटा रहे हैं। हृदय में ग्लानी और ममता का ऐसा द्वंद है जो शब्दों से परे है। आइए श्रोताओं, अब अपनी चेतना को समेटकर हम बढ़ते हैं आगे इतिहास के उसी अत्यंत भावुक मर्मस्पर्शी और ऐतिहासिक क्षण की ओर जहां गंगा के इस पावन तट पर एक विवश माँ और एक महात्यागी पुत्र का वह अद्भुत मिलन होने वाला है जिसने नियति की दिशा ही बदल दी। आइए पूरे मनोयोग से सुनते हैं पंचम सर्ग के इस भाग दो का यह दिव्य काव्य पाठ।
1: आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला।
3: पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं। हैं आप कौन, किस लिए यहां आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है, सूना औघट ये घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रव्या आप अकेली नारी हैं कौन देवी? कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं?
1: सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा, विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से,
4: रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण शर से, राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है, जिस तरह तीन पुत्रों को मैंने पाया तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया, पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था, एतेव हाय अपने दुदमुहे तनय से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से, बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योशिता कुमारी, है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को, उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का, मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को, संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक ना मुझे कसाला, ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी, पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ, कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू, मेरे ही सुत मेरे सुत को हाय मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे, यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा, जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी यह व्यथा समग्र भुवन को, भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी ना हीरा तुझको जिस संशय से, उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और ना अधिक डरूंगी, थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं, वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है, बाजी तो मैं हार चुकी कब की ही, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही, तुष्टक ना आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने।
1: मित्रों पांचवें सर्ग का यह प्रसंग केवल कर्ण और कुंती का संवाद नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सत्य समय और संबंधों के सबसे कठिन प्रश्नों का सामना है। दिनकर जी ने यहां किसी युद्ध का वर्णन नहीं किया, बल्कि उस युद्ध की पीड़ा को चित्रित किया है जो मनुष्य के भीतर चलता है। एक ओर कर्ण है जिनका जीवन अपमान संघर्ष और आत्मसम्मान की अग्नि में तपकर कुंदन बना है, दूसरी ओर कुंती हैं जिनकी ममता वर्षों तक समाज की कठोर मर्यादाओं के पीछे कैद रही। जब दोनों आमने सामने आते हैं तब शब्दों से अधिक मौन बोलता है और संवादों से अधिक आंसू अपना अर्थ कहते हैं।
2: कर्ण का पहला परिचय ही उनके चरित्र की महानता का प्रमाण है। वे सामने खड़ी स्त्री को नहीं पहचानते, फिर भी विनम्रता से कहते हैं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। इस एक वाक्य में कर्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित है। देखिए ना, जन्म देने वाली माँ सामने खड़ी है, लेकिन कर्ण अपने पालन पोषण का ऋण नहीं भूलते। वे स्वयं को राधा का पुत्र ही कहते हैं। दिनकर जी यहाँ संदेश देते हैं कि मनुष्य का गौरव केवल जन्म से नहीं बल्कि संस्कारों और कृतज्ञता से निर्मित होता है। इसके बाद कुंती का धैर्य टूट जाता है। वर्षों से हृदय में दबा हुआ सत्य अश्रुओं के साथ बाहर आता है। जब वे कहती हैं कि राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, तब यह केवल जन्म का रहस्य नहीं खुलता बल्कि एक माँ के जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप भी सामने आता है। कुंती स्वीकार करती हैं कि उन्होंने समाज के भय से अपने नवजात पुत्र को त्याग दिया था। दिनकर जी ने यहाँ उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रश्न उठाया है, जहाँ एक अविवाहित माँ के लिए सम्मान से अधिक लोक लाज का भय था। कुंती का अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये उस व्यवस्था की विवशता भी थी जिसने इसे मातृत्व से बड़ा सामाजिक भय बना दिया। कुंती जब अपने अपराध का कारण बताती हैं, तब उनका स्वर किसी महारानी का नहीं बल्कि एक असहाय स्त्री का हो जाता है। वे स्वीकार करती हैं कि नारी के लिए समाज का निर्णय कितना कठोर होता है। यही कारण है कि इस प्रसंग में पाठक कुंती को दोष देने से पहले उनकी विवशता को समझने लगते हैं। दिनकर जी किसी पात्र का न्याय नहीं करते, वे केवल मनुष्य की पीड़ा को हमारे सामने रखते हैं।
1: इसके बाद कुंती की प्रार्थना कथा को और अधिक मार्मिक बना देती है। वे कर्ण से राज्य नहीं मांगती, अपने लिए सम्मान नहीं मांगती, केवल इतना चाहती हैं कि उनके पुत्र एक दूसरे का रक्त ना बहाएं। ये एक मां की अंतिम इच्छा है, किंतु इस प्रार्थना के पीछे वर्षों का अपराध बोध भी छिपा है। उन्हें लगता है कि यदि आज भी वे मौन रही तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगी। इस पूरे प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां विजय या पराजय का प्रश्न नहीं है। यहां हर पात्र अपने अपने सत्य के साथ खड़ा है। कर्ण का सत्य कर्तव्य और कृतज्ञता है, कुंती का सत्य ममता और पश्चाताप है, रश्मिरथी का यह अंश हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भर नहीं पाता, केवल स्वीकार करना ही उनका उपचार बनता है। यही कारण है कि पंचम सर्ग का यह प्रसंग हिंदी साहित्य के सबसे करुण और मानवीय संवादों में गिना जाता है। यहां दिनकर जी ने यह सिद्ध कर दिया कि तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध से कहीं अधिक भीषण युद्ध मनुष्य के हृदय में लड़े जाते हैं। आंसू, पश्चाताप, कर्तव्य, ममता और धर्म, इन सभी भावों का ऐसा अद्भुत समन्वय विरले ही किसी काव्य में देखने को मिलता है। इसलिए यह प्रसंग केवल कर्ण और कुंती की कथा नहीं बल्कि मानव हृदय की शाश्वत संवेदनाओं का अमर दस्तावेज बन जाता है।
2: तो श्रोताओं, इसी भावपूर्ण मोड़ पर आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर विराम लेता है। अगले भाग में हम पंचम सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ और चर्चा सुनेंगे। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन किया दीपक नेमा ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
5: मैं अदिति
6: और मैं दीपक नेमा।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर लेती है विराम। आप सभी से हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए
1: नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम काफी गुंजन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक ले आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।